किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म आराधना का ये गीत है। और अब आइए सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म सरस्वती चंद्र का ये गीत है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: डाउनलोड करिए।

मुनीम जी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में। अगला गीत आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हम चोली।

श्रोताओं, ये था फिल्म हमजोली का गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। आइए अब सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले की आवाज़ में। फिल्म का नाम है सौदागर।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आपने

ट्यून किया है आकाशवाणी का चाय भाषा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाय भाषा। और अब श्रोताओं, ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़।

फिल्म नूरजहाँ का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। और अब आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी का ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे जीवन साथी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मोहब्बत इसको कहते हैं।

मोहब्बत इसको कहते हैं। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। और अब श्रोताओं आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है लवर्स।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में फिल्म लवर्स का ये गीत। और अब अगला गीत सुनने से पहले आइए बात करते हैं उनकी, जिनकी बदौलत आज हम जो है आज़ाद मुल्क में सांस ले पा रहे हैं। श्रोताओं, हमारे भारतीय सेना के वीर जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तिरंगे की शान के लिए डटे रहते हैं। उनका साहस, उनका त्याग और उनका बलिदान देश के हर नागरिक के लिए गर्व की बात है। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर करने वाले सभी वीर शहीदों को हम हृदय से नमन करते हैं। तो श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत जो समर्पित है भारत माता के उन वीर सपूतों के नाम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म लीडर का गीत मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में। इसी के साथ ही हमारा आज का जोहार चायबासा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चायबासा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं, यानी वक्त हो गया है समाचारों का। समाचारों के लिए हमारा अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत

0: 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एक तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4-लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का 4th संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
3: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।

0: with clearly defined milestones and timelines.
1: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
2: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्तिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
3: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: जी विशाल, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
5: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और

0: मयूरभंज, केंदुझर और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है, मौसम सुहावना हो गया है, कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज की सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत, कहा जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, सीआईडी को सौंपी गई जांच। यूपीएससी जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नवभारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए सीएम जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और एफआईएच हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्सलवेन में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet approves 4 multi-tracking railway projects covering 8 districts of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. Cabinet also clears 4 laning of Muzaffarpur Sitamarhi Sonbarsa section of NH-22 in Bihar. Union Home Minister Amit Shah to chair Southern Zonal Council meeting at Kovalam in Tamil Nadu this morning. 4th round of India-Singapore Ministerial Roundtable to be held in Singapore today. Bangladesh to go to polls today to elect a new president. US President Donald Trump declares economic warfare against Iran, threatens economic punishment for any country helping Tehran. And Indian women's team to take on England in their final Pool D match of AFIH Hockey World Cup in Amstelveen this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 5 projects worth over 13,000 crore rupees, including 4 railway and 1 highway project. Briefing media after the meeting in New Delhi yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Union Cabinet has cleared 4 multi-tracking projects of railways covering 8 districts across 4 states of West Bengal, Odisha, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He said with total estimated cost of 9,450 crore rupees, the projects are scheduled for completion by 2030-31.
4: Five major decisions have been taken. The first 4 projects are related to the railways, while the 5th is a highway project. The first 4 railway projects include the quadrupling of the Howrah-Chennai main railway route and the quadrupling of the Cuttack-Paradip railway line. The 5th project is the construction of a 4-lane highway from Muzaffarpur via Sitamarhi to Sonbarsa. These projects, with a total cost of 13,041 crore rupees, were approved by the cabinet today.
5: Total 13,041 crore rupees ke projects cabinet ne approve kiye.
3: Mr. Vaishnaw informed that the cabinet has also approved the upgradation of the

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। रांची में 26वें दिन छात्र आंदोलन स्थगित, छात्रों ने निकाली आभार यात्रा, नौकरी गंवाने वाले छात्रों ने निकाला आक्रोश मार्च। जेपीएससी जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 3 याचिका दायर, सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक, खान एवं खनन कानून को लेकर आंदोलन की बनेगी रणनीति। एचईसी की स्थिति सुधारने के लिए रांची दौरे पर केंद्रीय संसदीय कमेटी की टीम, आज प्लांट निरीक्षण और प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में 26 दिनों से चल रहा जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाएं रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश के बाद समाप्त हो गया है। हालांकि इस फैसले से पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों में नाराजगी है और उन्होंने विरोध

0: भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। छात्रों ने फिलहाल आंदोलन समाप्त कर अगले 60 दिनों तक जांच की प्रक्रिया पर नजर रखने का फैसला किया है, लेकिन प्रभावित कर्मचारियों के विरोध और सीबीआई जांच की मांग के बीच झारखंड की भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के बाद रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह जीत सामूहिक संघर्ष का परिणाम है।
2: धांधली नहीं चलेगा, पेपर लीक नहीं चलेगा, फिर भी नहीं चलेगा। झारखंड का उदाहरण है, अब कोई धांधली नहीं। 16 दिन भूख हड़ताल, 24 दिन का सत्याग्रह, 44 दिन का संघर्ष, 22 परीक्षा रद्द, 6 परीक्षा स्थगित।
1: जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द किए जाने के विरुद्ध झारखंड हाई कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सोनम कुमारी, अवधेश कुमार एवं अन्य की ओर से अलग अलग याचिकाएं दायर कर नियुक्ति रद्द करने के सरकार के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। आज अदालत में इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा रद्द करने के सरकार के फैसले से उनकी नियुक्ति पर संकट उत्पन्न हो गया है।
3: याचिका में हमने यही बताया है कि पहले तो हमारे एग्जाम पे कोई एलिगेशन नहीं था, एक था जिसका कोर्ट केस चल रहा है, वो मामला अभी कोर्ट के अंडर है, तो फिर इस तरह से आर्बिट्ररी डिसीजन लेना तो बिल्कुल गलत बात हुई ना। हमारी आखिर क्या गलती है? हम लोग 3 स्टेज एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, तो फिर सरकार आखिर किस रीजन से हम लोगों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जांच पड़ताल के इस तरह से निकाल सकती है?
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के संबंध में लिए गए निर्णय के बाद राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा है कि सरकार सभी छात्रों के साथ न्याय की पक्षधर है। जिन परीक्षाओं में गड़बड़ी की बातें सामने आई, वे परीक्षाएं रद्द हुई या संदिग्ध परीक्षाओं की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
4: मेरा यह मानना है कि यह देश, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था अंततः न्यायपालिका के निर्णयों पर चलती है। निश्चित रूप से सरकार के लिए गए निर्णयों की न्यायिक समीक्षा होगी और जो भी न्यायाधीश आएंगे वो सारे पक्षों के हितों में होंगे और सरकार भी उनका पूर्ण रूपेण अनुपालन करेगी।
1: इधर भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने सीआईडी जांच और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।
5: सरकार एक सिरे से एग्जामिनेशन को रद्द कर दी। मेरा और छात्रों का यही सोच था कि ये जांच सीबीआई से हो, जो छात्र सेटिंग करके एग्जाम पास किया उसका दूध का दूध पानी हो, ना कि आप सभी मामलों को उलझा कर छात्रों का भविष्य को लटकाना और अटकाना चाहते हैं। यही सीआईडी की मंशा पहले भी थी और भविष्य में यही होगा।
1: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल एवं रद्द की गई परीक्षाओं में अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए 8 मांग मुख्यमंत्री से किया है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के हरमो स्थित सोहराय भवन में आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित केंद्रीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक होगी। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में खान एवं खनन कानून के विरोध में आंदोलन को लेकर रणनीति बनेगी। झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने रामगढ़ जिले का दौरा किया। समिति की सभापति डॉ. नीरा यादव की अध्यक्षता में परिसदन में आयोजित बैठक में सदस्य सुरेश बैठा और रोशन लाल चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। जिला प्रशासन की ओर से उप विकास आयुक्त, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय वरीय अधिकारियों ने समिति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने जिले की

बुनियादी समस्याओं और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं पर बिंदुवार चर्चा की और कई आवश्यक निर्देश दिए। आर्थिक संकट से जूझ रहे हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड HEC की स्थिति सुधारने के उद्देश्य से केंद्रीय संसदीय कमेटी की 6 सदस्यीय टीम रांची के दौरे पर है। टीम का नेतृत्व सांसद तिरुचि शिवा कर रहे हैं। इसमें 4 सांसदों के अलावा HEC के निदेशक, अध्यक्ष और भेल के ज्वाइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। आज HEC प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। रांची जिला में RTE अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% आरक्षित सीटों पर निःशुल्क नामांकन के लिए दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी संपन्न हुई। उप विकास आयुक्त संजय भगत की अध्यक्षता में हुई इस प्रक्रिया में 35 विद्यालयों के लिए 89 बच्चों का चयन किया गया, जबकि कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिला प्रशासन ने सभी चयनित बच्चों को बिना किसी शुल्क के कक्षा 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने और संबंधित स्कूलों को एक सप्ताह में नामांकन पूरा करने का निर्देश दिया है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होने से आज से झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम साफ होने की संभावना है। और अब अखबारों की सुर्खियां। नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, इस खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने लिखा है, नियुक्तियां रद्द करने का विरोध, हाईकोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल, आज सुनवाई। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नौकरी से निकाले गए अफसर धरने पर, आक्रोश मार्च निकाला। प्रभात खबर की सुर्खी है, आंदोलन स्थगित कर लौटे छात्र, यात्रा निकालकर जताया आभार। हिंदुस्तान ने लिखा है, छात्र आंदोलन स्थगित, आभार यात्रा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, रांची में 26वें दिन छात्र आंदोलन स्थगित, छात्रों ने निकाली आभार यात्रा, नौकरी गंवाने वाले छात्रों ने निकाला आक्रोश मार्च। JPSC JSSC की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में 3 याचिका दायर, सुनवाई आज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक, खान एवं खनन कानून को लेकर आंदोलन की बनेगी रणनीति। HEC की स्थिति सुधारने के लिए रांची दौरे पर केंद्रीय संसदीय कमेटी की टीम, आज प्लांट निरीक्षण और प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक। और बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र हुआ कमजोर, आज से रांची समेत राज्य के कई जिलों में मौसम साफ होने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8:43 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए आनंद लेते हैं खोरठा लोक गीतों का। कलाकार हैं अनिता कुमारी और साथी।

श्रोताओं, इसी के साथ ही हमारा आज का लोकगीतों का कार्यक्रम माटी की महक अब यहीं समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आप आनंद ले रहे थे खोरठा लोकगीतों का। कलाकार थे अनीता कुमारी और साथी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक गीतों का कार्यक्रम माटी की महक। इस कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे थे खोरठा लोक गीतों का अनीता कुमारी और साथियों के स्वरों में। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले आप सभी श्रोताओं को मेरा यानी उदयपान का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे कार्यक्रम भी आप लगातार सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज सद्भावना दिवस है, ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। श्रोताओं, सद्भावना दिवस भारत में यानी हमारे देश में प्रत्येक वर्ष आज के दिन यानी 20 अगस्त को मनाया जाता है। इसे समरसता दिवस तथा राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से भी जाना जाता है। श्रोताओं, ये महत्वपूर्ण दिवस भारत के दिवंगत भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की स्मृति में मनाया जाता है। राजीव गांधी सरकार का एकमात्र मिशन दूसरों के लिए अच्छी भावना रखना था। भारत के सभी धर्मों के बीच सामुदायिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, शांति, प्यार और लगाव को लोगों में बढ़ावा देने के लिए ये दिवस हर साल 20 अगस्त को जो है मनाया जाता है। श्रोताओं, अब आइए बात करते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। उनका जन्म 20 अगस्त यानी आज के दिन सन 1944 को मुंबई में हुआ था। उनकी जयंती को देश में सद्भावना दिवस और अक्षय ऊर्जा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वर्ष 1991 के आम चुनाव के प्रचार के दौरान तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एक विस्फोट की घटना

में उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध इतिहासकार और शिक्षाविद रामशरण शर्मा जी की। आइए उनके बारे में जानते हैं। श्रोताओं, रामशरण शर्मा जी का जन्म 26 नवंबर 1919 को बिहार के बेगूसराय ज़िले के बरौनी गांव के एक निर्धन परिवार में हुआ था। ये इलाका समृद्ध खेती के साथ साथ भारतीय जो है सामंतवाद के विरोध संघर्ष के लिए भी जाना जाता था। श्रोताओं, इसे लोग बिहार का लेनिनग्राद कहते थे। रामशरण शर्मा जी की घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी।

पटना कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने इंटरमीडिएट से लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं में 6 वर्षों तक अध्ययन किया और वर्ष 1943 में इतिहास में एमए की डिग्री प्राप्त की। राम शरण शर्मा जी ने पीएचडी की उपाधि लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ के प्रोफेसर आर्थर लेविनिन बेशम के अधीन पूर्ण की थी। श्रोताओं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए राम शरण शर्मा जी ने अपनी पहली किताब विश्व साहित्य की भूमिका हिंदी में लिखी। एक नई दृष्टि के बावजूद यह पुस्तक छात्रोपयोगी ही अधिक थी। वास्तविक ख्याति और इतिहासकार के रूप में मान्यता उन्हें तब मिली जब वे सन 1954 से 1956 के दौरान अध्ययन अवकाश लेकर लंदन के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में गए और लंदन विश्वविद्यालय से ही 1956 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इतिहास के जाने माने लेखक रामशरण शर्मा जी ने 15 भाषाओं में 100 से भी अधिक किताबें लिखीं। श्रोता, उनकी लिखी गई प्राचीन इतिहास की किताबें देश की उच्च शिक्षा में काफ़ी अहमियत रखती हैं। प्राचीन इतिहास से जोड़कर हर समसामयिक घटनाओं को जोड़कर देखने में शर्मा जी को महारत हासिल थी। रामशरण शर्मा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़कर छात्र संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। श्रोताओं, रामशरण शर्मा एक ऐसे पहले भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने पुरातात्विक अनुसंधानों से प्राप्त साक्ष्यों को अपने लेखन का आधार बनाया और वैदिक और अन्य प्राचीन ग्रंथों और भाषा विज्ञान की स्थापनाओं से उसे यथासंभव संपुष्ट करने की कोशिश की। सन 1969 में उन्हें नेहरू फेलोशिप मिली थी। पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रमुख बनने के बाद रामशरण शर्मा जी ने 1970 के दशक में दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के डीन के रूप में काम किया। वे 1972 से 1977 तक भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। रामशरण शर्मा जी ने टोरंटो विश्वविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया। वे लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में एक सीनियर फेलो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नेशनल फेलो और 1975 में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। श्रोताओं, इतिहासकार रामशरण शर्मा जी के घर के दरवाजे किसी भी जिज्ञासु या ज्ञान पिपासु के लिए सदैव खुले रहते थे। वे स्वयं भी लोगों से मिलने जुलने, उनसे बात करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। सुबह टहलने के लिए भी ज़रा देर से जाते थे। किसी पार्क या कोई सुनसान जगह के बजाय वे भीड़ भाड़ वाली सड़कों का चयन करते थे, जहाँ वो घूमते टहलते लोगों से बातचीत भी करते रहते थे। श्रोताओं, एक इतिहासकार और शिक्षाविद के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले रामशरण शर्मा जी का निधन 20 अगस्त यानी आज ही के दिन सन 2011 को पटना बिहार में हुआ। अपने तरह की सोच वाले इतिहासकारों को बढ़ावा देने, वैदिक परंपराओं को अनदेखा करने वाले, हिंदी के बजाय अंग्रेजी में अपने लेखन कार्य को अंजाम देने सहित कई जो है उन पर लोगों ने उनके बारे में कहा, लेकिन इस सत्य से किसी का कोई इनकार नहीं कर सकता कि वे भारत के उन इतिहासकारों में से एक थे जिन्होंने इतिहासकारों को खुद नए तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से सोचना सिखाया। श्रोताओं, आप आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से सुन रहे हैं कार्यक्रम विविधा, और अब आइए बात करते हैं गोपीनाथ मोहंती जी के बारे में, जो उड़िया भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। श्रोता, उनका जन्म 20 अप्रैल सन 1914 को उड़ीसा के एक छोटे से ग्राम नागबली में हुआ था, जो महानदी के किनारे अवस्थित है। श्रोताओं, इनके पिता सूर्यनाथ मोहंती एक विलक्षण व्यक्ति थे। गोपीनाथ मोहंती को अपने पिता का साथ अधिक समय तक नहीं मिला।

जब गोपीनाथ मात्र 12 वर्ष की अवस्था के ही थे, तभी पिता ने उन्हें अनाथ छोड़कर जो है वो चल बसे। लेकिन वे बालक गोपीनाथ की प्रकृति और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि को उतने समय में ही दिशा रूप दे गए। श्रोताओं, जब तक उनके पिता जीवित रहे, गोपीनाथ मोहंती जी की स्कूल की पढ़ाई सोनपुर में चली। पिता की मृत्यु के बाद वे भाई के पास पटना चले गए। श्रोताओं, गोपीनाथ मोहंती ने सन 1923 में उस समय गांव छोड़ दिया था जब पिता नौकरी के लिए सोनपुर चले गए थे। उसके बाद वे थोड़े थोड़े दिनों के लिए कभी कभार ही गांव आया करते थे, किंतु नागबली और आसपास के ग्रामीण परिवेश में बिताया हुआ छुटपन का काल उनकी चेतना पर सदा के लिए अंकित हो गया था, जो उनके उपन्यासों के लिए एक अद्भुत ढांचा प्रस्तुत करता रहा। इसी काल की एक अन्य बड़ी देन ये हुई कि ग्रामीण और कुलीन दोनों समाजों में उठने बैठने के फलस्वरूप उनकी भाषा का विपुल भंडार ही नहीं बढ़ा, बल्कि उसमें बोलचाल की रंगत और मुहावरेदार छटा भी आ गई। श्रोताओं, सन 1930 से 1938 के बीच का समय गोपीनाथ मोहंती जी के लेखन जीवन का निर्माण काल माना जा सकता है। तीन प्रभावों की छाप उन पर पड़ रही थी, दो पश्चिम के और एक भारत का। मार्क्स व रूसी क्रांति और फ्रॉयड पश्चिम के प्रभाव थे तथा महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन भारत का प्रभाव था। गोपीनाथ मोहंती गंभीर व व्यापक अध्ययन में लगे रहते थे। श्रोताओं, वे साहित्यिक विधा रूप में नए नए प्रयोग किया करते और प्रचलित रूमानी अभिरुचियों का खुला विरोध करते थे। गोपीनाथ मोहंती जी ने सन 1936 में एकाग्र भाव से लिखना प्रारंभ किया और 2 वर्ष उनके प्रथम उपन्यास मन गहिरर चास को पूरा करने में लगे। श्रोताओं, गोपी बाबू, जी हाँ, गोपीनाथ मोहंती जी की 3 रचनाओं ने सबसे अधिक ख्याति अर्जित की, प्रजा, अमृतर संतान और माटी मटाल। प्रजा में कोरापुट जिले की एक छोटी सी निर्धन आदिवासी बस्ती का छवि अंकन किया गया है, जो पूरे कबीले का विवरण देने के लिए वहाँ के एक परिवार को माध्यम बनाया गया है, जिसे प्रतिकूल परिस्थितियों का भंवर जाल घूम घूम कर तब तक घेरता रहता है जब तक कि वह विनष्ट नहीं हो जाता। दूसरा है अमृतर संतान। श्रोताओं, इस उपन्यास का दृश्य चित्र अधिक विस्तृत है, इसका गठन भी जटिल है, पर यहाँ भी एक ही परिवार को कथा केंद्र बनाया गया है और घटना स्थल भी एक ही ग्राम है, लेकिन आदिवासियों की जिस कोंढ जाति को यहाँ लिया गया है वह बहुत प्राचीन और जनसंख्या में बड़ी भी है और अपनी एक नियत जीवन प्रणाली वाली है, इसलिए कथा सूत्र स्वभावतः चिंतन प्रधान हो गया है। माटी मटाल। 3,20,000 शब्दों का ये उपन्यास उड़िया भाषा का संभवतः सबसे लंबा उपन्यास है, जिसे पूरा करने में लेखक को लगभग 10 वर्ष का समय लग गया। उड़िया ग्राम जीवन का इसे एक महाकाव्य माना जाता है। इतना विस्तृत और भाषा सौंदर्य युक्त कोई उपन्यास उड़िया में पहले नहीं लिखा गया था। विचित्र बात यह है कि कथानक के नाम पर केवल एक बाह्य रेखाकृति दी गई है और जो दो प्रमुख चरित्र हैं, नायक और नायिका, उन्हें अद्भुत रूप से अल्पभाषी बनाकर प्रस्तुत किया गया है। श्रोताओं, गोपीनाथ मोहंती जी के उपन्यास माटी मटाल के लिए उनको सन 1973 का ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा पद्म भूषण वर्ष 1981 में प्रदान किया गया। उड़िया साहित्य में विशेष योगदान करने वाले गोपीनाथ मोहंती जी का निधन 20 अगस्त 1991 में हुआ। श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಹಿ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम विविधा में. और अब आइए बात करते हैं राजेंद्र कुमार पचौरी जी के बारे में, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित

प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे। श्रोताओं, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी जी का जन्म भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर उत्तराखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में आज ही के दिन यानी 20 अगस्त सन 1940 को हुआ था। राजेंद्र पचौरी जी ने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी उत्तर प्रदेश से अपने करियर की शुरुआत की थी। यहाँ उन्होंने कई वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्य को बखूबी अंजाम दिया। पचौरी जब भारत लौटे तो उनका अनुभव भी उनके साथ था। भारत लौटकर पचौरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑफ कॉलेज हैदराबाद में बतौर सीनियर फैकल्टी मेंबर नियुक्त हुए। सन 1975 से 1979 तक वे वहीं कार्य करते रहे। श्रोताओं, वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज कॉलेज में रिसोर्स इकोनॉमिक्स विभाग के वे विजिटिंग प्रोफेसर रहे। रिसोर्स सिस्टम इंस्टीट्यूट ईस्ट वेस्ट सेंटर अमेरिका में सीनियर विजिटिंग फेलो रहे। विश्व बैंक वॉशिंगटन डीसी में विजिटिंग रिसर्च फेलो रहे। राजेंद्र पचौरी सन 1994 से 1999 तक इस कार्य से जुड़े रहे। सन 2000 में पचौरी येल यूनिवर्सिटी अमेरिका के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट स्टडीज़ में बतौर फेलो जुड़े। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजेंद्र पचौरी इंटरनेशनल सोलर एनर्जी सोसाइटी ISES तथा वर्ल्ड रिसोर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज़ के बतौर मेंबर जुड़े रहे। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स IAEE वॉशिंगटन DC में पचौरी जी ने पहले प्रेसिडेंट तथा बाद में चेयरमैन का पदभार संभाला। राजेंद्र पचौरी सन 1992 से एशियन एनर्जी इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट भी रहे। भारत सरकार ने पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए राजेंद्र पचौरी जी को सन 2001 में पद्म विभूषण से नवाजा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वारोलिना स्टेट विश्वविद्यालय में MS और PhD की उपाधि लेने वाले राजेंद्र पचौरी जी के ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र के कार्यों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने सन 1994 से 1999 तक उन्हें अपना सलाहकार नियुक्त किया था। यही नहीं, उनको 14 जुलाई 2006 को जब फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर नई दिल्ली में कुछ चुनिंदा लोगों के साथ सम्मानित किया गया था, तब भारत में फ्रांस के राजदूत डी गिरार्ड ने कहा कि आप केवल विज्ञानी ही नहीं बल्कि एक जिंदा दिल इंसान भी हैं। श्रोताओं, भारत सरकार की अनेक समितियों में भी राजेंद्र पचौरी जी की सहभागिता रही। बतौर सदस्य राजेंद्र पचौरी ऊर्जा के क्षेत्र में दक्षता रखने वाले पैनल में शामिल हो गए। ये पैनल ऊर्जा मंत्रालय ने गठित किया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली विजन कोर प्लानिंग ग्रुप, भारत सरकार के एडवाइजरी बोर्ड ऑन एनर्जी, नेशनल इन्वायरमेंटल काउंसिल तथा ऑयल इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग ग्रुप के मेंबर भी पचौरी रहे। ट्राइरिम साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में उन्हें शामिल किया गया था। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी वे सन 1985 से सदस्य रहे। श्रोताओं, सन 1987 से इंडिया हैबिटेट सेंटर की गवर्निंग काउंसिल का मेंबर होने के साथ ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज के कोर्ट ऑफ गवर्नर्स के भी वे सदस्य रहे। राजेंद्र पचौरी जी को सन 1999 में को दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे हेरिटेज फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन 2001 में उन्हें जो है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का सदस्य बनाया गया। 10 दिसंबर 2007 को नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय उनकी विनम्रता दर्शनीय थी। राजेंद्र पचौरी जी ने IPCC के लिए नोबेल पुरस्कार ग्रहण करते हुए कहा था कि इस पुरस्कार से मिलने वाले जलवायु परिवर्तन की ज्वलंत समस्या की ओर समूचे विश्व का ध्यान आकृष्ट होगा। श्रोताओं, डॉक्टर राजेंद्र पचौरी जी का निधन 13 फरवरी 2020 को हुआ। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के संस्थापक और पूर्व प्रमुख रहे राजेंद्र पचौरी जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ।

तो श्रोताओं, अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी जी के बारे में। और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही हमारा आज का विविधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। फिल्म संगीत के कार्यक्रम रस रंजन में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म अप्रैल फूल के इस गीत से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अप्रैल फूल फिल्म का ये गीत। और अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रोताओं, वो गीत हमने लिया है फिल्म धर्मात्मा से। इस गीत को गाया है मुकेश और कंचन ने।

0: और अब श्रोताओं इस गीत के बाद आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार।

0: विज्ञापनों के माध्यम से
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, इस संदेश के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रस रंजन में। और आइए सुनते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म कस्मे वादे का ये गीत है।

0: क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।
1: पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निःशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471366697, टोल फ्री नंबर 1-4-9-9 या 1-800-345-4060 पर।
0: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिनपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र FM के 101.7 MHz पर और अपने रेडियो दोस्त उदय पान के साथ इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। और अब प्रस्तुत है अगला गीत SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है साजन।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके?
2: ना, पहले बचत।
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: और अब श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म सड़क का गीत अनुराधा पौडवाल, बबला मेहता और कुमार शानू की आवाजों में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सड़क का गीत अनुराधा पौडवाल, बबला मेहता और कुमार सानू की आवाज़ों में। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, जो आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत है। उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है तेरे नाम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रस रंजन। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर, और अब प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
1: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
1: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है
2: जी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का,
2: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
1: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कूट कुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलउदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
1: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
1: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
1: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
2: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
1: जी हाँ, ये तो है।
2: तो क्यों ना आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
1: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
2: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
1: वाह क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
2: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सबके जीवन की कहानी है।
2: जी
1: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
2: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपानुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
1: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
2: जी
1: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
2: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बे

0: चारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
1: श्रोताओ, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
0: जी,
1: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
0: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
1: जी हाँ श्रोताओ, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी,
0: जी
1: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
0: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
1: श्रोताओ, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
0: जी
1: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है, तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं।
0: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
1: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
0: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था, वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
1: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
0: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलहाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओ, आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी
1: हेलन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और तालवाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी जल चक्र पर कवि

0: सोनी जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का, अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई?
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी सोनी जल्दी सोनी शाम को रेडियो सुन रही थी।
4: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी। इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है। अरे आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
2: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, किस पर?
2: किस पर?
0: पानी पर।
2: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
2: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?

0: अच
1: हाँ ये बात तो है,
2: पानी की समस्या तो है,
3: हम तो परेशान हो गए हैं।
0: तो बच्चों इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
4: जल चक्र?
0: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
5: तो चलो शुरू करें।
0: चलो झुमकी।
5: ठीक है तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
6: सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया, आगे जोड़ो झुमरू जी और वो भी ताल में।
0: हाँ हाँ जोड़ता हूँ मैं, ये लो बात ध्यान से मेरी सुन लो।
6: आहा,
0: नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
6: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए, जब लद गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल। तालियां।
0: रिमझिम रिमझिम वर्षा आई, चहुं ओर हरियाली छाई, झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
6: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
0: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
6: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का जल चक्र यूं चलता जाता, सभी बोलेंगे जल चक्र यूं चलता जाता।
0: बच्चों कैसा लगा भाषा का ये खेल?
4: बहुत अच्छा।
7: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
8: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
9: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
10: ये मारा। हरा दिया, हरा दिया।
11: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
9: जी,
11: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
9: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
11: ये कैसी अजीब बात है?
9: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
11: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
9: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
11: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
9: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
11: अच्छा
9: हाँ, और क्या, तो सुनाइए ना, जल्दी सुनाइए।

0: बेटा सुनाता हूँ।
1: अरे सोचने तो दो,
0: जल्दी
1: सोचिए। किसकी कहानी सुनाऊं? देखो वो
0: अरे जीवन काका।
1: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
2: बाबूजी हाँ, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
1: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ
2: जी,
1: यहाँ लेट जाओ
2: जी।
1: लग रहा है बुखार। अरे बेटे तनु
0: जी,
1: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
0: जी अभी लाई।
1: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो
2: जी।
1: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
2: जी।
1: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो
2: जी। जी जी जी।
1: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
0: जी जी जी नाना जी।
1: हाँ ला बेटा ला। जीवन
2: जी
1: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही कहानी सुनाइए ना।
1: सुनो
2: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
2: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
2: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया, वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
2: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहाँ एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस
2: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
2: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
2: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे, एकदम अलग आकार था।
2: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
2: जी,
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उठते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
2: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
2: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में

0: कई जगह मुड़ी हुई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
1: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
0: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
1: जी,
0: जिसे बुखार होता
1: जी,
0: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
1: जी।
0: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
1: फिर
0: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
1: जी।
0: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
1: अच्छा।
0: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
1: लेकिन बुखार?
0: ओहो बेटा, बताता हूँ बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
1: जी।
0: तो बेटा, तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
1: जी,
0: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
1: जी।
0: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
1: अच्छा।
0: और बुखार का अनुमान लगा लेते। लेकिन एक बात।
1: क्या?
0: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
1: जी,
0: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
1: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती, रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
0: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
1: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
0: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
1: हाँ जी।
0: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
1: जी
0: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
1: जी।
0: समझ गई ना
1: जी।
0: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
1: जी,
0: और तापमान नापने के लिए उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा।
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं
1: जी,
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा
1: जी,
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं
1: जी,
0: बोल कर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम

0: की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से बोल रहे हैं FM के 101.7 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 10:29 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं और आइए अब सुनते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है जोहार रांची।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुबह की साथी प्रतीक्षा पांडे
0: और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो सखी आरती
1: और हम दोनों आ गए हैं आपसे कहने जोहार रांची।
0: स्वागत है आप सभी का, अपने श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं और आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम जोहार रांची में। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सफर का। आज यानी 20 अगस्त की सुबह रांची का मौसम बहुत ही शानदार है, कमाल का मौसम है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, हालांकि बारिश थमी है। चूंकि देखिए ये चक्रवात का असर था तो चक्रवात का असर कम हुआ है, तो बारिश भी यहाँ थम गई है और अब न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और ये मौसम विभाग के अनुसार ये कहा गया है कि बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, ये संभावना है। हालांकि हवा में नमी रहेगी इसलिए ठंडक का एहसास तो आपको होता रहेगा। और प्रतीक्षा अभी आ रही होंगी स्टूडियो तो आपको भी ये महसूस हुआ होगा कि मौसम बदला तो है लेकिन और सुहावना
1: हो गया है बिल्कुल, और हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। तो दोस्तों बिल्कुल अपने हाथ में थाम लीजिए अदरक वाली चाय का कड़क प्याला और शुरू करते हैं इस सुहाने मौसम का मजा लेते हैं और शुरुआत करते हैं इस भीगे भीगे खूबसूरत गाने के साथ।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
0: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जोहार रांची और आपके साथ हैं आपकी रेडियो से की प्रतीक्षा और आरती। तो प्रतीक्षा, हम बारिश मौसम, सुहाने मौसम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम इतिहास की भी बातें करने वाले हैं।
5: बिल्कुल सही कहा आरती, और इस बरसाती सुबह के बाद चलते हैं सीधे इतिहास के पन्नों की ओर और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन।
4: बिल्कुल,
5: आज का दिन यानी 20 अगस्त की तारीख इतिहास के पन्नों में कई बड़ी घटनाओं की साक्षी है, और आज ही के दिन

0: 1944 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जन्म हुआ था, जिसे पूरा देश सद्भावना दिवस के रूप में मनाता है।
1: बिल्कुल। और बॉलीवुड की बात करें, यानी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, तो आज सरबजीत और हाईवे फेम वर्सटाइल एक्टर रणदीप हुड्डा का भी जन्मदिन है। और हाँ हाँ प्रतीक्षा,
0: और साथ ही एक्ट्रेस अमृता पुरी का भी जन्मदिन है। तो हमारी तरफ से दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमारे श्रोताओं को जिनका आज जन्मदिन है, आप सभी को भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: यानी हमारी तरफ से ढेर सारा हैप्पी वाला बर्थडे है। और देखिए, देश दुनिया में देखे तो 1828 में आज ही के दिन राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में, यानी उस वक्त कलकत्ता हुआ करता था, उन्होंने उस वक्त आज ही के दिन ब्रह्म समाज का पहला सत्र आयोजित किया था।
0: बिल्कुल। और 1897 में आज ही के दिन डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया फैलाने वाले एनोफिलीज मच्छर की खोज की थी, इसलिए आज का दिन वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
1: मॉस्किटो डे भी मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो इतिहास के नियादों के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं संगीत के अगले पड़ाव की ओर, क्योंकि हमारा ये सफर सुरीला भी तो होना चाहिए और मौसम के अनुसार भी।

0: वाह आंटी, ये झमाझम बारिश और ये प्यारा सा गाना, इस मौसम में शायरी तो अपने आप ही जुबान पर आ जाती है, क्यों?
1: बिल्कुल प्रतीक्षा, और हमारी ओर से इस भीगे सुबह के लिए बारिश से भीगती शायरी आपके लिए हम अर्ज करना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए। तो एक बार फिर से कहिए इरशाद, फिर मैं
0: इरशाद।
1: देखिए, बूंदे बारिश की जमीन पर कुछ इस कदर गिरती हैं, बूंदें बारिश की जमीन पर कुछ इस कदर गिरती हैं जैसे सूखी मिट्टी से कोई पुरानी हसरत मिलती है। चाहत तो बस इतनी सी है कि इस भीगे मौसम में एक चाय का कप हो और साथ तुम बैठे हो।
0: वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इस मौसम में अपनों के साथ बैठकर चाय पीने का अलग ही मजा है। तो चलिए चाय हाथ में लेते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा मीठा सा गाना।
1: बिल्कुल।

0: आरती चाय और चाय का गाना मजा आ गया, लेकिन आरती रोमांटिक शायरी तो ठीक है, पर उन लोगों का क्या जिन्हें इस बारिश में बाइक चलाकर दफ्तर जाना है।
1: ओहो, ये कितनी बड़ी बात कह दी प्रतीक्षा। तो मुझे लगता है कि उनके दर्द के लिए आपके पास कुछ शायरी अगर है तो इरशाद।
0: बिल्कुल, तो पेश है उनके भी दर्द के लिए एक मजेदार शायरी। तो अर्ज किया है, बारिश की बूंदों में रोमांस ढूंढने वालों, बारिश की बूंदों में रोमांस ढूंढने वालों, जरा होश में आओ। छत पर सुखाने डाले थे जो कपड़े, दौड़कर पहले वो उठा लाओ। इश्क में भीगना तो फिर भी आसान है साहब, पर बाइक चलाते हुए मुंह पर पड़ती बूंदों से भी तो कोई हमें बचाओ।
1: वाह वाह वाह वाह प्रतीक्षा, ये तो हर बाइक चलाने वालों की सच्ची कहानी बताई है।
0: बिल्कुल, इसीलिए रेनकोट पहनकर ही घर से निकलें और अपने फोन के लिए फोन कवर यानी कि वाटरप्रूफ कवर भी रखें, ताकि आपका फोन सुरक्षित रहे और गाड़ियां थोड़ी धीमी रफ्तार से चलाएं। और साथ साथ सुने ये प्यारा सा सुरीला गाना जो हम आपके लिए लेकर आए।

0: आरती, बहुत ही खूबसूरत ये गाना था। और जब हमने बाइक की बात कर ली और थोड़ा बाहर निकल ही गए, तो थोड़ा और बाहर निकल जाते हैं और चलते हैं जमशेदपुर से लगभग 10-15 किलोमीटर दूर स्थित दलमा वन्य जीव अभयारण्य में। ये अभयारण्य आरती 195 वर्ग किलोमीटर में दलमा की पहाड़ियों में फैला हुआ है और ये प्रसिद्ध है एशियाई हाथियों के लिए। उनका प्राकृतिक आवास है और साथ में बहुत सारे ट्रैकिंग की व्यवस्था भी है यहाँ पर, तो आपको यहाँ जरूर जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और देखिए, बारिश का मौसम, यूं तो झारखंड अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए जाना ही जाता है, लेकिन जब बारिश आती है ना प्रतीक्षा, तो इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। और झारखंड की खूबसूरती देखने तो दूर दूर से लोग आते हैं भाई, विदेशों से लोग आते हैं। यहाँ के झरने, हरी भरी पहाड़ियाँ और घाटियाँ सबसे ज्यादा लोगों को आकर्षित करती हैं, पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। और इस वक्त तो बारिश जितनी हो रही है ना, उस वजह से यहाँ जितने जलप्रपात हैं, फॉल्स हैं, वो उफान पर हैं। आप हुंडरू फॉल, दशम फॉल, जोन्हा, पतरातु घाटी, नेतरहाट, यहाँ कहीं भी घूमने चले जाइए, आपको एक अलग नजारा दिखेगा झारखंड का। हम और भी बातें करेंगे झारखंड की खूबसूरती की, लेकिन साथ ही साथ ये सुरीला सफर भी तो चलता रहना चाहिए। सुनिए ये सुरीला नगमा।

0: तो प्रतीक्षा, हम घूमने निकले हैं, अब कहाँ कहाँ घूम रहे हैं ये बताएं आप।
1: बिल्कुल, अगर घूमने की हम बात कर रहे हैं और साथ में गानों का ये सुरीला सफर भी हो और पतरातु वैली की बात ना करें तो बात अधूरी सी रहेगी। रांची से पतरातु की ओर जाने वाली सड़क अपने घुमावदार रास्तों और हरी भरी घाटियों के लिए जानी जाती है आरती, और यहाँ की वादियों का नजारा विशेषकर शाम को और बारिश के मौसम में बहुत ही शानदार है। घुमावदार सड़कें और पतरातु डैम में नौकायान, मतलब गजब का एहसास होता है। लेकिन शाम के समय सनसेट व्यू का आनंद लेना ना भूलें और सावधानी जरूर बरतें, और साथ में सुने ये प्यारा सा गीत हमारे साथ।

0: तो अपने श्रोताओं के साथ और प्रतीक्षा मैं यानी आरती, हम भी चलते चलते पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पे। लेकिन इन सब के बीच प्रतीक्षा, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा संक्रमित बीमारियों के शिकार भी होते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: मैं अभी सोच ही रही थी कि आरती अभी तक तुमने बीमारियों की बात क्यों नहीं की, और अभी तक सिर्फ हम घूम रहे हैं, खा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, लेकिन बीमारियां भी हैं जो आती हैं, दस्तक देती हैं इस मौसम में। तो भाई श्रोताओं, हम ये सलाह देंगे कि आप बीमार होकर गाना ना सुने, सेहतमंद रहें इसलिए उबला या फिल्टर का पानी पिए, क्योंकि इस मौसम में पानी से होने वाली बीमारियां बहुत फैलती हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, और पानी को हमेशा उबाल कर पिए। साथ ही साथ ताज़ा और गर्म खाना खाएं, बासी और खुला या बाहर का स्ट्रीट फूड खाने से बचें, घर का बना हल्का भोजन करें क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और आप एनर्जी से भर उठेंगे।
0: लेकिन प्रतीक्षा, इसके साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप खुद को हाइड्रेट रखें।

0: यानी
1: बिल्कुल
0: पानी खूब पिए। कहते हैं ना कि पानी जितना ज्यादा आप पियेंगे आपका शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा, तो पानी पीना बिल्कुल कम ना करें, पानी पीते रहें।
1: बिल्कुल
0: इससे आप हाइड्रेट रहेंगे और आप तंदुरुस्त भी रहेंगे। और दूसरी चीज ये कि देखिए बारिश का मौसम है, ये बहुत नामुमकिन है कि आप भीग नहीं सकते अगर
1: बिल्कुल
0: आप निकल
1: भीगना
0: रहे
1: तो
0: हैं बाहर,
1: हाँ
0: तो
1: तो
0: भीगना तो पड़ेगा, लेकिन अगर संभव हो तो भीगने से बचिए। रेनकोट का इस्तेमाल जरूर करिए, अगर थोड़ी बहुत बारिश में आप कहीं छुप कर बचना चाहते हैं तो वहां आप बच सकते हैं, लेकिन भीगने से परहेज करें। साथ ही साथ हाइजीन यानी स्वच्छता का
1: हाँ
0: ख्याल
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: बिल्कुल
0: जरूरी
1: बहुत
0: है
1: जरूरी
0: प्रतीक्षा। मुझे लगता है कि अगर संक्रामक बीमारियां फैलती हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि आप स्वच्छता का
1: स्वच्छता
0: ख्याल
1: ख्याल
0: रखें,
1: रखें।
0: अपने हाथ हमेशा अच्छे से धुले। कुछ भी खाना खा रहे हैं, अगर आप बाहर भी खा रहे हैं तो हाथ धुले बिना खाना ना खाएं। खाना
1: बिल्कुल
0: खाने से पहले हाथ जरूर धुले। साफ सफाई का ध्यान रखें। अपने घर में जो आपके कूलर वगैरह होंगे ना, अगर उनमें पानी जमा है तो वो पानी जरूर बाहर फेंकें, साफ सफाई रखें, क्योंकि फिर देखिए साफ पानी में ही मलेरिया के मच्छर पनपते हैं, ये आपको भी पता है,
1: बिल्कुल
0: तो ये जरूर ध्यान रखें। दूसरी चीज ये कि गमले वगैरह भी आप देखिए, अगर उसमें पानी जमा है तो उसे निकाल कर बाहर करिए, इससे आप बीमारियों से बचेंगे। तो हाइजीन बहुत जरूरी
1: हाँ
0: है
1: बिल्कुल
0: प्रतीक्षा।
1: आरती। और अभी हम और भी बातें करेंगे स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन बहुत ज्यादा बातें भी करने से हमारे दर्शक बोलेंगे कि बस क्या बातें करते जा रहे हैं ये लोग। चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना, फिर और बातें आगे बढ़ाएंगे।

0: बिल्कुल, लम्हों की गुजारिश है कि हम पास आ जाएं, और हम आ भी गए हैं अपने श्रोताओं के पास और यूं ही आते रहते हैं। तो भाई, अब बातें जब हो रही हैं बारिश की और बारिश के मौसम में बचाव की, तो आप लोग अपनी डाइट का भी ध्यान रखें। अदरक तुलसी की चाय पिएं, साथ में हल्दी काली मिर्च और गुड़ के साथ काढ़ा बनाएं, वो भी पिएं, क्योंकि और खुद भी पिएं और अपने परिवार को भी पिलाएं, क्योंकि इस मौसम में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। साथ ही दर्शकों, माफ कीजिएगा श्रोताओं, आप जब भी कपड़े पहने तो उनको झाड़े बिना बिल्कुल ना पहने, क्योंकि कोई भी कीड़े मकोड़े हो सकते हैं ना आरती। और
1: बिल्कुल।
0: जूते पहने तो उसको भी अच्छे से झाड़ लें, क्योंकि कोई भी छुपकर वहां बैठा हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और कोशिश
1: और
0: करें,
1: देखिए, कुल मिलाकर ये चीज है ना कि बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं ना, उनको तो बिल्कुल बारिश के मौसम में जरूर उनका अनुसरण करें। और प्रतीक्षा जो भी कह रही थी अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने डाइट के लिए, वो इसलिए, और उसका सबसे सीधा और सरल समाधान है प्रतीक्षा, जो मुझे ऐसा लगता है वो है दादी माँ के नुस्खे।
0: बिल्कुल।
1: अब आज जेंजी वाले जो हैं वो, उन्हें हर चीज लगता है फटाफट फटाफट, तो ये जो फटाफट वाली चीजें हैं ना, ये आपके दादी माँ के नुस्खों में भी मिलेगा। आप देखिए, फटाफट हल्दी और अदरक वाले पानी को उबालिए और उसे छान कर आप पी लीजिए, आपका वो एंटीबायोटिक भी हो जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग करता है। साथ ही साथ बारिश के दिनों में विटामिन सी भी बहुत जरूरी
0: बिल्कुल
1: होता
0: बहुत
1: है,
0: जरूरी
1: तो
0: है।
1: विटामिन सी का सबसे जो नेचुरल और सबसे सरल स्रोत है वो है नींबू।
0: बिल्कुल
1: नींबू, क्योंकि देखिए संतरे वगैरह इस मौसम में कम मिलते हैं, तो आप नींबू अपने खाने पीने में इस्तेमाल करें। तो
0: बिल्कुल
1: सलाद आप जरूर खाएं, सलाद खाएंगे तो वो भी बेहतर है। और इसलिए ये कह रही थी कि जो काढ़ा है ना, दादी माँ ने जो काढ़ा
0: बनाकर दिया है
1: उनका,
0: हमें। बिल्कुल
1: वो हर जनरेशन के लिए फायदेमंद है, हर पीढ़ियों के लिए फायदेमंद है भाई। अब जेन जी हो, जेन अल्फा हो,
0: हाँ,
1: या फिर
0: बिल्कुल
1: कोई
0: बिल्कुल।
1: भी हो।
0: जैसे कि आप आरती बोल रही हैं कि जेन जी, तो जेन जी भी तो आजकल गोल्डन मिल्क के रूप में हल्दी दूध पीते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और लाते एक पीते हैं जिसमें कि काढ़ा जैसा ही स्वाद होता है और बहुत सारी चीजें उसमें हर्बल मिलाई जाती हैं, तो जेन जी भी वही पी रहे हैं, बस नाम अलग रख
1: नाम
0: दिया
1: बदल
0: है।
1: गया है। और
0: बिल्कुल
1: देखिए, मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी पीढ़ी हो, कोई भी जनरेशन हो, या वो जेन जी हो या फिर अब तो जेन अल्फा भी भाई
0: बिल्कुल
1: बहुत ये हो रहा है, लेकिन इन सबके बीच पता है दादी माँ के नुस्खे कभी पुराने नहीं होने वाले और ना ही वो आउटडेटेड होने वाले हैं। तो इसलिए अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना है ना इस बारिश के मौसम में, तो भाई श्रोताओं, आप सभी दादी माँ के नुस्खे तो जरूर अपनाएं।
0: बिल्कुल।

0: भाई देखिए, बारिश के मौसम को लेकर के हमने सब कुछ बताया है अपने श्रोताओं को प्रतीक्षा,
1: बिल्कुल
0: कि आप बारिश में भीगने से बचें, आप बारिश में आप अपना खान पान कैसे बदलेंगे और कैसे सेहतमंद रहेंगे।
2: बिल्कुल सारी चीजें हमने बता दी, और साथ ही साथ मुझे पता है कि हमारे श्रोता खुद भी अपना ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। और
0: तो जाते जाते हम एक और सुरीला नगमा उनको सुनाते हैं।
1: बिल्कुल

तो हम वादा करते हैं कि इसी तरह हम आते रहेंगे और साथ साथ मैं और आरती करते रहेंगे हमेशा। जोहार रांची।

546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और 16.5 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी रांची केंद्र है। आज आपके साथ है आपकी रेडियो सखी प्रतीक्षा पांडे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम आपकी पसंद का। तो कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: कटपड़े भारतीय सेना।
1: स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है आपकी पसंद। और आज हम आपके लिए ढेर सारे गीत लेकर आए हैं और साथ में आपकी पसंद के गीत हम सुनेंगे आपके नामों के साथ। पहला गीत जो हम लेकर आए हैं वो है फिल्म सुईधागा से। गायक है पेपोन और संगीत से सजाए है अनु मलिक ने और गीतकार वरुण ग्रोवर। और इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है गायत्री कुमारी, नंदिनी कुमारी, आस्था सिंह, रितेश सिंह, सुमेह सिंह, रिंकी सिंह और श्वेता सिंह ने खेल गांव रांची से। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर सुई धागा फिल्म का ये प्यारा सा गाना।

और इस प्यारे से गीत के बाद अगली फरमाइश हमें आई है फिल्म सिटी लाइट्स के एक गाने की, और गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, गीतकार रश्मि सिंह और संगीत से सजाया है जीत गांगुली ने। और इस गाने की फरमाइश हमें भेजी है प्राची मिश्रा, प्रिंस मिश्रा, अनवी मिश्रा, अनिकेत मिश्रा, अखिलेश मिश्रा, आकांक्षा मिश्रा और पूरे मिश्रा परिवार ने बूटी मोड़ रांची से। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं सिटी लाइट्स फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से बता दें कि कार्यक्रम है आपकी पसंद और मैं हूँ आपकी आज की हमसफर प्रतीक्षा पांडे आपके साथ। और अगला गीत जो हमने लिया है वो उसकी फरमाइश हमें भेजी है निभा सिंह, नीरा किशोर, गोलू, नीलू, रीता सिन्हा, निकिता देव, पिंकी सुनेजा और अंजू बर्वा ने रांची रातू रोड से। और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म तमाशा का एक प्यारा सा गीत। गीत गाया है मोहित चौहान ने, गीतकार इरशाद कामिल और संगीत से सजाया है AR रहमान ने। तो आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

और अगले गीत की फरमाइश हमें भेजी है सुखमणि कुमारी, ममता बेग, अंजलि तिर्की, सुनीता पूर्ति, रुदन प्रिया, कुमारी ममता रानी और दशरथ महली ने कोकर रांची से। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म लगान का एक प्यारा सा गीत। गीत को गाया है आशा भोसले और उदित नारायण ने। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और म्यूजिक तैयार किया है AR रहमान ने। आइए सुनते हैं लगान फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

तो ये था आज की आपकी पसंद का आखिरी नगमा, और इसी के साथ अपनी आज की सफर हम सफर प्रतीक्षा पांडे को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी रांची है और अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृहलक्ष्मी का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: बहनों नमस्कार। रोजाना की तरह आज भी हम हाजिर हैं आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम गिरी लक्ष्मी लेकर, और आज हम सभी सखियों के साथ हैं। मैं महजबीन और
1: मैं शिल्पी। तो बहनों स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार, और आज आपसे मिलने, ढेरों बातें करने और साथ साथ गीतों का खजाना लेकर आज हम दो सखियां आ गए हैं। जैसा कि महजबीन ने बताया कि मैं शिल्पी और ये महजबीन।
0: शिल्पी देखो ना, इधर किस दिन से लगातार बारिश ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं तेज बारिश, कहीं नदियां उफान पर, तो कहीं बाढ़ का ये स्थिति है जो बनी हुई है। बारिश के समय ये बातें आम होती है। बिल्कुल
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हम बारिश को देखकर कभी कभी बहुत खुश होते हैं जब ऐसा लगता है कि हमें गर्मी परेशान कर रही है।
0: हाँ।
1: लेकिन जब बारिश हमें कैद कर लेती है तो हम उससे भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बारिश के बारे में जो भी बातें हैं, चाहे अच्छी हो या बुरी, पसंद हो या ना हो, लेकिन भाई ये जो मौसम है बारिश का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इस मौसम में उछलने का, कूदने का, सजने का, सवरने का बहुत सारी चीजें हैं, खास करके हम महिलाओं के लिए, क्योंकि सावन का महीना बेहद खास होता है ना।
0: और जैसे कि तुमने कहा ना शिल्पी कि ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है, देखा जाए तो सही में बहुत ही प्यारा होता है। खाने का एक तरह तरह के पकवान बनाए आप, जो तुमने कहा कि सजने सवरने का, यानी कि सावन का जो तुम बात कर रही हो, और सही में बच्चे हो या किसी भी उम्र के लोग हो, सभी इस मौसम का जो है ना आनंद लेते हैं। लेकिन ये शिल्पी, जब हम किसी भी मौसम से परेशान होते हैं तो लगता है कि ये खास, काश ये मौसम चला जाता, ये वो मौसम आता, ये मौसम चला जाता, ये चीज़ होती है हमारे साथ। और जब हम गर्मी से ज़्यादा परेशान होते हैं ना, तो यही बारिश हम याद करते हैं। वर्षा ऋतु की शुरुआत होते ही इस मौसम से होने वाली परेशानियों पर हम तो जैसे कि एक नज़र डालें, अगर हम कहें तो परेशानी भी ना कहें, लेकिन हाँ, ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो थोड़ी दिक्कत होती है। और सबसे ज़रूरी बात ये है ना शिल्पी कि भीगने से इस मौसम में हमें बचना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में तो बारिश होती है, नमी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। तो आप अगर भीग गए हैं तो इस कुछ बातें हैं जो जिस पर हम नज़र डालेंगे कि हम इस मौसम में किस तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं।
1: और जैसा कि अभी हमने देखा कि रिमझिम रिमझिम फुहार हो रही है, लेकिन जब ये फुहार पड़ती है ना तो देखने में अच्छा लगता है, मौसम सुहाना लगता है, लेकिन जब आपके बालों पे गिरता है तो कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। और हम हमेशा इसी तरह की बारिश से भीगने के बाद तबीयत खराब हो जाती है। तो बहनों, कुछ छोटी मोटी सावधानियां अगर आप करेंगी तो निश्चित है कि आप तो स्वस्थ रहेंगी, साथ साथ आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, सारे लोग। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों से। तो बच्चे अगर स्कूल से आते हैं तो सबसे पहले आप देख लें कि उनके गीले जूते हैं कि नहीं। अगर गीले जूते हो गए हैं तो तुरंत आप उसके मोजे जो पहनते हैं उसको उतार दीजिए, और बाल गीले हो गए हैं तो उसके बाल को सॉफ्ट तौलिए से आप उसको पोंछ दीजिए। और बहुत सारी बीमारी हो सकती है, कहीं पानी का अगर जमाव हो गया, इसलिए पूरे शरीर को अच्छे से आप साफ कर दीजिए। और बच्चों को सबसे पहले आने के बाद हाथों की सफाई करें, यानी सबसे पहले जब आप खाने के लिए, बच्चे तो हड़बड़ाएंगे, लेकिन आप थोड़ी सावधानी से काम लें, क्योंकि उनके कपड़े बदलने के बाद उनके हैंड वॉश कर दें उनको, और चेहरे को बिना छूने से मना करें बार बार। कभी कभी ऐसा भी होता है मैजीबिन कि बच्चे ना बार बार चेहरे को छूते हैं।
0: हाँ,
1: तो इन सब, हाँ, तो छोटी छोटी बातें अगर हम घर में अपने बच्चों को इस मौसम में सिखाएंगे, जैसे नाखून है, नाखून को काट के रखना चाहिए, और छोटी छोटी सी आदतें हैं जो हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो निश्चित है कि बच्चे थोड़ी अगर सावधानी बरतेंगे तो बीमार भी कम पड़ेंगे।
0: और हाँ बहनों, एक बात और, इस मौसम में बीमारी का खतरा तो बढ़ जाता है, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि तरह तरह के बुखार के रूप में होते हैं जो बारिश के समय ज़्यादा होते हैं, बुखार ज़्यादा लगते हैं, जैसे कि मच्छरों का काटने से मलेरिया, डेंगू, इसके अलावा जोड़ों का ऐठन होता है, दर्द होता है इस पर भी, और दस्त की बीमारियाँ भी ज़्यादा होने लगती है। और इस तरह की

0: अगर उत्पन्न होती है तो पास के सरकारी अस्पताल से आप संपर्क जरूर करें, क्योंकि ये सब ना देखने में तो छोटे होते हैं लेकिन आगे चल के थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। तो मौसम, इस मौसम में, खासकर इस मौसम में आप सरकार जो सरकारी अस्पताल है उस पर वहाँ जरूर जाएं और अपनी अच्छे से इलाज कराएं।
1: बिल्कुल, और बहनों हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकारी अस्पताल जाने से पहले कुछ कुछ सावधानियां, जैसा कि मैजेवीर ने कहा कि मलेरिया डेंगू, तो इसके कारण हम सबको पता है कि हम बरसात होने से पहले आसपास अपने जो भी मच्छर पनपने के कारण है उसको हटा दें। बच्चे अगर शाम को खेलने के लिए निकलते हैं तो कोशिश करें कि जहां पानी का जमाव हो वहां पे न खेलें, और पूरे फुल आस्तीन के कपड़े आप पहनाएंगी तो निश्चित है कि छोटे छोटे अगर मच्छर होंगे तो बच्चे उससे बच जाएंगे। और कई तरह का ऐसी जो बातें हैं, जैसा कि मैजेवीर ने कही कि मौसम में पानी के कारण बीमारियां होती है, तो भाई अगर हम पानी का ख्याल रखेंगे तो बीमारियां नहीं होगी। घर में अगर फिल्टर है तो फिल्टर वाटर पिलाएं, और अगर नहीं तो आप पानी को उबाल करके सूती कपड़े से छान करके ठंडा होने के बाद बच्चों को पिलाएं। और सेहत की बात हम कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां तो होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी जो सावधानियां हैं ना वो हमारी बीमारी को टाल सकती है मैजेवीन, है ना।
0: और जैसे कि तुमने कहा कि बच्चों पर ज्यादा ध्यान दें, लेकिन यहाँ पे शिल्पी एक बात कहना है कि बुजुर्गों का भी ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, और बुजुर्गों के साथ साथ हम महिलाओं का
1: बिल्कुल
0: भी, क्योंकि सबसे जरूरी है कि महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहनों वर्षा ऋतु बहुत जरूरी है, और इस क्या अगर ये नहीं हो तो फिर अकाल पड़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो फसल के लिए यानी फसल का जो बोने का मौसम रहता है यही रहता है, और बंजर भूमि में जान आ जाती है। अगर हम ये कहें कि हम इस मौसम को हम पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप उसके जो फायदे हैं उसको भी आप गौर करें।
1: बिल्कुल मैजेवीन, और बंजर की आपने बात की ना तो भाई हमारे दिल में भी जो है ना हरियाली आ जाती है, है ना। तो ये तो बारिश सबको लुभाता है, चाहे बच्चे हों, छप छप खेलते हैं, हम बड़े उसका आनंद लेते हैं। और जैसा कि तुमने कहा खेती किसानी, तो भाई जो खेती करते हैं हमारे कृषि जो किसान हैं उनके चेहरे पे रौनक आ जाती है। हम भले ही परेशान हो जाते हैं बारिश को देखकर, है ना। अभी दो दिन पहले की बात है, ऐसा लगता था कि हमने घर में हम कैद हो गए,
0: बिल्कुल कैद,
1: लेकिन जब उनके चेहरे की खुशी अगर आप देखेंगी तो लगेगा कि नहीं ये किसान के लिए बहुत फायदेमंद है।
0: और शिल्पी यहाँ पे एक बात है कि मानसून का मौसम कई स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस मौसम में ध्यान बिल्कुल भी ना देखें। जैसा कि हम लोग ने शुरू में कहा कि आपको किस तरह से एहतियात बरतनी है, और बच्चों को बुजुर्गों आप खुद अपना ख्याल रखें, और ये भी ध्यान रखें कि इस मौसम में जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। तो हर तरह से आप यहाँ पे हमें ये कहना है कि आप अपना जो हाथों की सफाई है, अपने हाथों की सफाई पर पूरा ख्याल रखें, पूरा ध्यान दें कि इससे सबसे ज्यादा खतरा होता है हाथ से। आप बाहर से आ रहे पैर और हाथ को जरूर अच्छे से धोएं। और दूसरी बात है कि जैसा कि शिल्पी ने कहा कि अगर आप गीले हैं या भीग गए हैं तो आप वहां पे भी एकदम अपने आप को अच्छी तरह से तौलिया से सुखा लें, और इसके अलावा सुखाने के बाद थोड़े तो गरम चाय और पकौड़े का भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, यानी मैजेवीन का इशारा है बहनों कि मैजेवीन का कहना चाहती हैं कि चाय पकौड़े के साथ आप गीत यानी कि अपना रेडियो को जरूर खोलिए। हाँ। तो भाई आइए, आपके लिए एक सुंदर सा गीत लेकर हमने आया है, इसका आनंद लेते हैं।

अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: फिर से बहनों, फिर से स्वागत है आपका गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। और अभिषेक भी आगे प्रोग्राम में क्या लाई हो?
1: और मैसे भी जैसा कि सखियां जानती हैं कि हम बृहस्पतिवार को संजीवनी कार्यक्रम को लेकर आते हैं और इसके तहत स्वास्थ्य पर चर्चा होती है महिलाओं की। तो आज हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर श्वेता लाल और बताएंगी पीसीओडी पर खास बातें जिसका लाभ हमारी बहनों को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम के जरिए हमारी कोशिश होती है कि विभिन्न बीमारियों के बारे में हर तरह के विशेषज्ञों से हम आपकी बातचीत करवाएं और आपको जानकारी दें। तो आज भी हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या जो कि हो गई है, वो है पीसीओडी। तो पीसीओडी के कारण, बचाव और समाधान क्या है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्वेता लाल। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका।
3: नमस्ते
2: मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि पीसीओडी क्या है?
3: तो आजकल मुझे लगता है हर टीनेज लड़की को आइडिया है कि पीसीओडी। पहले हमें समझाना पड़ता था, आजकल लड़कियां आती हैं कि

0: मैडम जरा चेक कर लीजिए हमको पीसीओडी तो नहीं हो गया है।
1: कॉमन हो
0: तो
1: गया ये।
0: एकदम ही इतना कॉमन हो गया है कि मतलब आप कभी कभी मेरे को लगता है उनको मेरे से ज्यादा आइडिया है कि पीसीओडी क्या है।
1: जी जी जी
0: और अब तो ऐसा पता होगा कि अभी रिसेंटली उसका नाम चेंज करके पीमॉस कर दिया गया है, PMOS बन गया है पीसीओडी, क्योंकि
1: जी
0: शायद पीसीओडी के नाम से बहुत ज्यादा वो थी एंड पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है। तो पीसीओडी बेसिकली क्या है, पहले कॉन्सेप्ट ये था कि किसी के अंडेदानी में मल्टीपल छोटे छोटे अंडे बन रहे हैं और एक साथ ज्यादा अंडे बन रहे हैं जिस कारण से कोई एक ग्रो नहीं कर रहा है।
1: जी
0: अगर वो नहीं ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो फूटेगा नहीं और आपको पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे।
1: जी
0: और इल्यूजन ये था कि उस कारण से लोगों का वेट गेन और जितनी प्रॉब्लम्स होती थी, चेहरे पे बाल आना, जरा से ज्यादा मतलब किसी किसी का शुगर बढ़ जाता था, वेट गेन होना, कुछ इट वॉज अज्यूम्ड कि ये सारा कुछ ओवरी की प्रॉब्लम के कारण हो रहा है।
1: जी
0: ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा इस पे रिसर्च हुआ, इतने ज्यादा लोग भी हो गए पीसीओडी वाले, पीएमओएस वाले की बहुत हो गया। तो फिर समझ में आया कि एक्चुअली बात वो नहीं है, ये एक बेसिकली आपकी बॉडी में पॉली मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें आपके बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें बेसिकली इट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड रॉन्ग काइंड ऑफ फूड। तो उसमें ये समझ में आया कि इस कारण से वन ऑफ द फीचर्स इज जिसमें ओवरी पॉलिसिस्टिक हो जाए, और इस कारण से कुछ लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही, पता भी नहीं चल रहा है, कुछ का काफी वेट बढ़ जा रहा है, किसी किसी को चेहरे पे बाल आ रहे हैं और किसी किसी को बहुत पिंपल आ रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
1: तो बेसिकली ये हार्मोनल इशू जिसको हम बोल सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी महिला को पीसीओडी हो गया, वो इससे ग्रसित हो गई, तो उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे पता चलेगा कि शायद मेरे अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि मुझे परेशान कर रही हैं, तो वो कैसे अपने आप को तैयार करेगी या कैसे समझेगी कि वो किसी समस्या से पीड़ित हो रही है।
0: सबसे कॉमनली जो इसमें आता है औरतों के लिए सिम्टम, वो है कि उनकी जो साइकिल्स होती है, मतलब पीरियड्स बहुत लंबे लंबे 2 महीना 3 महीने पे आ रहे हैं या थोड़े आ रहे हैं, या उसके साथ साथ उनको दिखेगा कि उनके चेहरे पे, मतलब यंग लड़कियां आती हैं जब चेहरे पे बाल आ रहे हैं, या फिर उनको बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, या न्यूली मैरिड लड़कियों में प्रॉब्लम है कि वो आएंगे आपके पास कि मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा है, और जब आप टेस्ट कराओगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके एग्ज ही नहीं बन रहे हैं। तो ये बेसिकली कुछ कॉमन चीजों के साथ पीसीओडी के पेशेंट आते हैं जो मेनली पीरियड प्रॉब्लम लेके ही आते,
1: मतलब लगातार पीरियड प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो मैम इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका निदान क्या है, समाधान क्या है?
0: इसका एक ही निदान है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जिसका वो निदान है वो बहुत सिंपल है लेकिन उसी हिसाब से बहुत डिफिकल्ट भी है। इट इज ओनली एंड ओनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो इसमें जब हम बताते हैं तो ये बताते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपना वजन कम करना है। अब वजन कम करना इतना आसान नहीं है,
1: नहीं
0: क्या होता है जब आप किसी टीनेजर लड़की को ये बात बोलते हैं तो वो अपना कोई तरह का अजीब डाइट पिक करके डाइटिंग पे चली जाती है, उससे बॉडी में स्ट्रेस और बढ़ता है और पीसीओडी नहीं सॉल्व होता। पीसीओडी का जो तरीका है वो है डाइटिंग करना नहीं है, इट इज माइंडफुल ईटिंग। मतलब जब आप खाना खाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी मील में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो अमाउंट ऑफ फैट होना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ फाइबर होना चाहिए वो हो, और आपको कोई भी एक तरह की फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इनफैक्ट अब तो जो रिकमेंडेशन WHO या इसकी तरफ से हमारी बॉडी से आ रहा है वो ये है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, मतलब आपको अपने मसल्स को थोड़ा बिल्ड करना है, बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, मसल्स को बिल्ड
1: इंटरनल मतलब
0: मसल्स। यस, तो जो आपका मसल मास होता है वो एनर्जी यूज करता है। अगर अगर आप एक बार एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपका थोड़ा जो मसल बनता है वो दिन भर एनर्जी यूज करता है। तो एक तरह से आप दिन भर जिम में है। दीज आर द टू थिंग्स विच ग्रेजुअली, पीसीओडी को ठीक करने का एक दिन का कोई तरीका नहीं है, ये धीरे धीरे इसी से जो डिजीज है वो कंट्रोल होगी। उसके साथ हम लोग ऑब्वियसली पीरियड्स ठीक करने के लिए दवाइयां देते हैं, या जिनको बहुत पिंपल्स हो रहे हैं या चेहरे पे बाल आ रहे हैं उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम साथ साथ करते हैं, दैट इज देयर, बट मेनली यही ट्रीटमेंट है इसका, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन।
1: हाँ, यानी अपना खान पान और रूटीन सही रखिए तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैम एक सवाल और है कि क्या जो पीसीओडी की समस्या से ग्रसित हैं या जिनको हो चुका है उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए?
0: पीसीओडी वालों को कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, डिपेंड्स ऑन कितना हार्मोन उनका गड़बड़ है
1: जी।
0: और अलॉन्ग विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे अगर यंग लड़कियां हैं तो हम लोग आई रिकमेंड कि आप पहले एक साल डेढ़ साल अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई कीजिए, एंड एक बार आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया तो आपका ओव्यूलेशन या अंडा बनना अपने आप करेक्ट हो जाता है। जिनका नहीं होता है उनके लिए फिर IUI, IVF इस तरह के ट्रीटमेंट है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, मतलब रिलेटिवली इट इज इजी टू ट्रीट अगर थोड़ा सा आदमी एफर्ट लगाए।
1: बहुत ही अच्छी बात है।

0: और एक सवाल बहुत जरूरी, पीसीओडी का मेंटली और इमोशनली क्या फर्क पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे?
1: ये बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तभी मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये जो लड़कियां टीनेजर्स आती हैं आजकल पूछते हैं कि उनको क्या होता है, आजकल का जमाना है, लोग फोटो खींचते हैं अपलोड करते हैं, तो सबको अच्छा दिखना है और अच्छा दिखने के लिए तो फिर अपना वेट मेंटेन करना है। और पीसीओडी ऐसा चक्रव्यूह है कि एक बार शुरू होता है तो फिर एक बार आप पीसीओडी में फंसे तो वेट गेन होगा, फिर उससे पीसीओडी और खराब होगा, फिर वेट गेन होगा उससे पीसीओडी और खराब होगा। तो इसको इस कारण से वो लड़कियां बड़ी, मतलब जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचती हैं तब तक वो काफी कुछ भुगत चुकी होती हैं और परेशान होके वो आती हैं, तो उस वक्त उनको मेंटली काफी सपोर्ट की जरूरत होती है, ये बताने की जरूरत होती है कि ये छोटा तुम्हारा, इट इज नॉट अ स्प्रिंट, इट इज अ लॉन्ग मैराथन, आपको धीरे धीरे अपना बॉडी ठीक करना है और धीरे धीरे ये करेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट नहीं होता है, ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है, खाली कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग एफर्ट लगता
0: है। घूम फिर के बाद यही आती है कि आपको अपने आप को संतुलित रखना है और हर मामले में रखना है, चाहे वो ठीक है सोशल मीडिया का जमाना है, आपको अच्छा दिखना है तो अच्छे आप ऐसे भी दिख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रयासों से
1: एकदम
0: खूबसूरत नजर आ सकते हैं।
1: और एक चीज समझना जरूरी है कि एवरीथिंग इज नॉट अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस, है ना, तो मेंटल स्टेट भी अपना अच्छा रखना बहुत जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस लेंगे वो सब करेंगे तो वो भी आपकी लाइफ पे एडवर्स इफेक्ट करेगा। बट कई बार देखिएगा बहुत लड़कियां हैं जिनको पीसीओडी है, वो बहुत वेट नहीं कम कर पाती, बट अपना अगर एक्सरसाइज और डाइट ठीक रहती है तो उनकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है, तो उनके पीरियड्स ठीक हो जाते हैं। तो बेसिकली करना वही है
0: जी, करना कुछ नहीं है, करना अपने आप को फिट रखना और फाइन रखना और खुश रखना है। और मैम एक मैसेज जो हमारे आप श्रोता को देंगे, जो लिसनर अभी आपको,
1: मैं एक ही चीज बोलूंगी जो मैं बहुत ही क्रूट है, उसमें कई बार बहुत पेशेंट पूछे कचरा खाना बंद कर दो। तो कचरा जो वर्ड है इसका मतलब है जंक फूड, जिसको हम जंक एक्चुअली बोलते भी हैं। तो एक सिंपल तरीका है, लोग पूछते क्या ना खाएं, तो मैं कहती हूँ कि जो पैकेट से निकल रहा है वो मत खाइए। जो भी चीज पैकेट खोल के आप खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, केक खा रहे हो, जिसमें रिफाइंड शुगर एंड मैदा है, उतना भी अगर आप कम कर देते हैं, आपको मैं घर का दाल चावल कभी मना नहीं किया। घर का दाल चावल खाइए, घर की रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जो रोड साइड का कचरा होता है उसको खाना अगर कम कर देंगे तो काफी हद तक ये एंड और काफी मेडिकल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे।
0: बहुत ही अच्छी जानकारी मैम, बहुत ही सिंपल तरीके और बहुत ही साफ स्पष्ट तरीके से आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी है। हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता इससे जरूर लाभान्वित होंगे। हमारे कार्यक्रम में आप आई, इतनी अच्छी बातें हमसे आपने शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहने अभी सुन रही थी संजीवनी के तहत बातचीत, डॉक्टर श्वेता लाल थी हमारी आज मेहमान और उनसे बातचीत की थी सुनीता कुमारी पीसीओडी पर। और बहनों इसके साथ ही अब लेते हैं छोटा सा अंतराल, फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद।
2: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है
3: तो लेन देन
2: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
3: ओ
2: जैसे UPI से।
3: अच्छा
2: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
3: वो क्या है मम्मी जी?
2: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
3: हम भी ना मम्मी जी।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
5: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
8: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
9: बहनों फिर से स्वागत है गृह लक्ष्मी कार्यक्रम में। हमने बहुत सारी बातें की, जानकारी दी और अपने मेहमान से भी मिलवाया, तो अब अपनी बहन को हम सुनवाते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: तो बहनों हम भी तितली की तरह उड़ सकते हैं आकाश में।
1: हाँ, तो अब बहनों को हम क्यों ना एक जानकारी चलते चलते दे दे जननी सुरक्षा योजना के बारे में। बहनों, माँ बनना एक महिला के जीवन का बेहद महत्वपूर्ण और रोचक अनुभव है। इस सफर में उसे सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं सही पोषण मिले तो माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ रहता है। तो आइए हम जानते हैं कि जननी सुरक्षा योजना क्या है और इसका लाभ आप कैसे ले सकती हैं।
0: हाँ सखियों, यह योजना भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चलने वाला सुरक्षित मातृत्व योजना है और इसे 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्यगत यानी कि स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना और मातृ एवं नवजात जो दरें होती हैं मृत्यु की उसको कहीं ना कहीं से कम करना।
1: बहनों, इस योजना में मातृ और गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता दी जाती है। आशा कार्यकर्ता उन महिलाओं के बीच कड़ी का काम करती हैं और वो सहायता करती हैं, उनकी मदद करती है जहां उनको जरूरत होती है। सखियों, आज महिला आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो देखा जाए तो ये योजना काफी हद तक उनको मदद करती है। इस जो श्रेणी में आती हैं, जो भी पात्र श्रेणी में आती हैं और सरकारी स्वास्थ्य संस्था के में प्रसव कराती हैं या करती हैं जाकर के, तो इस योजना का लाभ उनको मिलता है।
0: बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं जो पात्रता है महिलाओं की उनको ही ये सुविधा मिलती है। बहनों, इसके तहत पात्रता को मिलने वाली राशि भी मिलती है कि राज्य तथा ग्रामीण

0: शहरी क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकती है बहनों, ये खास बातें हैं, है ना। तो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 मिलता है और शहरी में 1000 की राशि मिलती है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला हो, आपको पता चले, तो उसको उन्हें ये आप जानकारी दें, उन्हें लाभ मिलेगा।
1: शिल्पी, अब समय है कि हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करें। इस वादे के साथ की फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे महजबीन
0: और शिल्पी को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्म संगीत में। और हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के बाद, और इसके बाद हम आपको बताएंगे इस गाने के बारे में। तो पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गाना। और मौसम कोई भी हो, जब बॉलीवुड का कीड़ा काटता है तो हर तरफ से गाने ही गाने सुनाई देते हैं। और बस अपनी गाड़ियों की स्पीड बढ़ाइए और गाने को ट्यून कीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रांची। और कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद।

बिल्कुल दोस्तों, और आज के शो की शुरुआत हो चुकी है और कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत, और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा पांडे। तो भैया, उस जमाने में जब सोशल मीडिया नहीं था, सिर्फ चिट्ठियां हुआ करती थी, लेकिन एटीट्यूड तो गजब का था उस जमाने में। तो चलिए सुनते हैं 90s का एक सदाबहार गाना जो कि आज भी टॉप पर रहता है, और जब भी हम सुनते हैं इन गानों को तो हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, और जब हम अंताक्षरी खेलते हैं तो हमें नए गानों की जगह पुराने गाने ही हमेशा हमारे जबान पर आते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस एक

0: तो श्रोता मित्रों, इस प्यारे से गाने के बाद अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। तो मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, हम इसी तरह सुनते रहेंगे गाने आपकी पसंद के। और कार्यक्रम का नाम है फिल्म संगीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: படை பாரதிய சேனா.
1: तो इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं. कार्यक्रम का नाम है फिल्म संगीत और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रतीक्षा पांडे. तो भाई आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि फिल्म हिट तो गाना हिट, लेकिन बॉलीवुड में कई बार उल्टा भी होता है. फिल्म भले ही फ्लॉप हो गई हो लेकिन उसके गाने हमेशा रेडियो पर दिखाई देते हैं. और आज हम आपको ऐसा ही एक गाना सुनाएंगे जो बहुत फेवरेट है सभी का और सभी बहुत ज़्यादा सुनते हैं. तो आइए इस गाने को सुनते हैं आपके साथ हम भी.

जी हाँ दोस्तों, हम भी छोटी छोटी खुशियाँ लेकर आपके पास आते हैं और हंसते मुस्कुराते रहते हैं। हमारे एक श्रोता भी हमें बता रहे थे कि गाने जो हैं वो उनके लिए स्ट्रेस कम करने के काम करते हैं। उनको सिर दर्द हो, बुखार हो या कुछ भी हो, उनकी सारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो भाई इसी बात पर हम आपके लिए एक और प्यारा सा गाना बजाते हैं ताकि आपको अगर थोड़ा भी कुछ स्ट्रेस हो, कुछ भी परेशानी हो, तो वो आपकी परेशानी दूर हो जाए। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, पर घबराइए मत, फिल्मी गानों का यह कारवां फिर से इसी तरह चलता रहेगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे, और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी एक फिल्म की तरह है, इसमें ड्रामा भी होगा, सस्पेंस भी होगा, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा खुशियों के बजाते रहिए। और आपकी पसंद कार्यक्रम में हम फिर से आपसे मिलेंगे फिल्म संगीत लेकर, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। और इसी के साथ दीजिए मुझे आज्ञा, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी रांची है और अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने वाले हैं और ये वक्त है हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों का। समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय

और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडेम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Various ministries are attending the meeting. Discussions are underway on broad issues, including strengthening interstate cooperation, internal security, economic growth, industrial investment, education, and healthcare. Union Minister for Environment, Forest and Climate Change Bhupendra Yadav today said under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India is committed to making its BRICS presidency people-centric and guided by the spirit of humanity first. In a social media post sharing his article written in an English daily, Mr. Yadav said India has focused on promoting sustainable lifestyles based on the principles of Mission Life, along with afforestation, forest fire management, disaster resilience, and people-centric climate adaptation rooted in traditional knowledge. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman today met Singapore Prime Minister Lawrence Wong in Singapore. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, and Minister of State for Electronics and Information Technology Jitin Prasad were also present during the meeting. In a social media post, the Finance Ministry said the leaders reviewed the progress in implementing the roadmap for the comprehensive strategic partnership and discussed ways to further strengthen bilateral cooperation in areas including economic cooperation, digitalization, connectivity, skill development, and sustainability. India has delivered medicines and medical consumables to a government hospital in Kabul, reaffirming its long-standing health partnership with the people of Afghanistan. The Ministry of External Affairs said in a social media post that the assistance reflects India's continued commitment to supporting the healthcare needs of the friendly people of Afghanistan. In Keralam, red alert has been declared in all coastal districts of the state until this evening. The alert warns of potential waterlogging and sea attacks in coastal areas. Waves up to 1.8 meters high are expected until 5:30 p.m. today. It is also advised to completely avoid trips to beaches and recreational activities in the sea. In badminton, India's women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. And with that, we end this news bulletin.
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से. ये आकाशवाणी रांची है. 1:10 होने वाले हैं और अब वक्त है प्रादेशिक समाचार का.
2: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार. नमस्कार. प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी. पहले मुख्य समाचार. झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन के बाहर नौकरी गंवाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जारी. हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई. पूर्व सिंहभूम जिले को बड़ी उपलब्धि. शिक्षा प्रदर्शन में झारखंड में हासिल किया प्रथम स्थान. झारखंड में डूबने से होने वाली मौतों पर लगेगी रोक. राज्य स्तरीय कार्यशाला में 90 दिनों की कार्य योजना पर बनी सहमति. संवेदनशील स्थान होंगे चिन्हित. देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर लूट कांड का खुलासा. बिहार से 5 अपराधी गिरफ्तार. और बोकारो में शुरू हुई एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता. देश भर से जुटे तीरंदाज. जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने में खेलो इंडिया की सराहना की. और अब समाचार विस्तार से. झारखंड सरकार की ओर से 22 प्रतियोगी परीक्षाएं रद्द किए जाने के बाद इन परीक्षाओं के जरिए नियुक्त अफसरों की सेवाओं पर संकट खड़ा हो गया है. सीजीएल नियुक्ति रद्द होने से नौकरी से हटाए गए अधिकारी आज भी प्रोजेक्ट भवन के सामने धरने पर बैठे हैं. उन्होंने कल प्रोजेक्ट भवन से हटिया चौक तक आक्रोश मार्च निकाला. उन्होंने पूरे मामले की जाँच की मांग की है. साथ ही सरकार के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है जिस पर आज सुनवाई होनी है. सफल अभ्यर्थियों ने पूरी परीक्षा को रद्द करने के फैसले को उनके भविष्य पर संकट बताया.
3: देखिए अभी तो हम लोग आंदोलन करेंगे, रात में एक फरमान जारी होता है 12 बजे कि आप लोगों की परीक्षा रद्द कर दी गई है, मगर सरकार को ये सोचनी चाहिए कि ना जाने कितनी रातें हम लोगों ने जाग करके इस एग्जाम के लिए पढ़ा था, तब जा करके हमने इसमें सफलता पाई। मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर किसी का एक उंगली अगर खराब हो जाता है किसी इन्फेक्शन की वजह से कुछ भी हो, तो वो आप उंगली काट के हटाएंगे या फिर पूरी बॉडी को ही हटा देंगे?

0: अच्छा तो आप नहीं करेंगे?
1: 17 तारीख तक हमारा नौकरी था, 18 तारीख को नोटिफिकेशन आता है कि सारे एग्जाम रद्द हो गई है। पहले तो सीजीएल में जांच हो रहा था, हम लोग को उम्मीद था कि सीजीएल में जांच हो, कुछ उसका कार्यवाही हो और जो सही बच्चे हैं उनको न्याय मिले, लेकिन देख रहे हैं तो न्याय क्या, सारा ही एग्जाम कैंसिल हो गया।
2: झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में पूर्वी सिंहभूम जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन परफॉर्मेंस रिव्यू की अगस्त 2026 की 15वीं मासिक रिपोर्ट में पूर्वी सिंहभूम ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। जिले ने लर्निंग आउटकम विद्यालय, अनुश्रवण, पर्यवेक्षण और गुणवत्तापूर्ण डेटा रिपोर्टिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। रांची विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग और झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद के संयुक्त तत्वावधान में 21 और 22 अगस्त को श्रोडिंगर समीकरण के 100 वर्ष पूरे होने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आरयू के आर्यभट्ट सभागार में किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 300 भौतिकी व अभियांत्रिक प्राध्यापक और रिसर्च स्कॉलर जुटेंगे तथा विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के उभरते आयामों पर 100 से अधिक शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। दुमका के सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर 5 सत्र 2023-27 का परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा की तिथि एक साथ जारी कर दी है। विद्यार्थी 28 अगस्त से 4 सितंबर तक बिना विलंब दंड के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। परीक्षा 18 सितंबर से 30 सितंबर तक ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिम्स में चिकित्सकों और कर्मियों की कमी दूर करने के लिए साल 2026 के अंत तक सभी आवश्यक टीचिंग पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कल रिम्स सेंट्रलाइजेशन कमेटी की बैठक में भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और रेशनलाइजेशन के आधार पर मानव संसाधन की आवश्यकता का आकलन करने के निर्देश दिए। बैठक में रिम्स में NMCI को 100% लागू करने, प्रोफेसर से असिस्टेंट प्रोफेसर तक के पदों पर भर्ती और पारदर्शी मानदंड तय कर नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार करने पर भी चर्चा हुई। राज्य में गंभीर और जटिल बीमारियों के कारणों की पहचान और अनुसंधान के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च की मॉडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट का शिलान्यास कल अनगढ़ा में किया गया। विधायक राजेश कच्छप और केंद्रीय स्वास्थ्य उप सचिव धरकत आर लुई कांग ने यूनिट की आधारशिला रखी, जो रिम्स रांची के साथ मिलकर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बीमारियों के वैज्ञानिक अध्ययन पर काम करेगी। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य स्तरीय कंसल्टेशन आयोजित कर स्टेट एक्शन फ्रेमवर्क फॉर ड्रोनिंग प्रिवेंशन तैयार करने का निर्णय लिया गया है। रांची में कल आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग और RRLI जैसी संस्थाओं के सहयोग से हुई बैठक में आपदा प्रबंधन, वन, पर्यावरण, शिक्षा और पंचायती राज विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि अगस्त 2025 के बीच राज्य में डूबने से 161 लोगों की मौत हुई है, जिसे देखते हुए जोखिम वाले स्थानों पर बैरियर लगाने, बचाव उपकरण लगाने और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण देने पर सहमति बनी। दुमका जिले रानेश्वर और दुमका सदर प्रखंड के किसानों ने मसानजोर पन बिजली केंद्र की दोनों इकाई को चालू करने और झारखंड क्षेत्र को भी यहां उत्पादित बिजली देने की मांग की है। मसानजोर डैम पन बिजली केंद्र की 2 इकाई में से फिलहाल 1 इकाई चालू है। देवघर जिले में फर्जी GST अधिकारी बनकर कारोबारी से 40,50,000 रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने बताया कि बिहार के जमुई और बांका जिले से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
3: एक राइस मिल ओनर, वो 40,50,000 अपने स्टाफ के साथ ले रहे थे। कुछ अभियुक्तों ने हमको रोका और खुद को GST के ऑफिसर्स बताते हुए इनसे पूछताछ करने लगे। तो इसमें

0: पांच अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तीन अभियुक्त अभी तक फरार चल रहे हैं। इस मामले के उद्भेदन से दो और कांडों का उद्भेदन हुआ है।
1: सिमडेगा में एएसआई को ट्रैक्टर से कुचलने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ डीडी पासवान ने बताया कि घायल एएसआई रांची में इलाजरत हैं।
2: पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसआईटी टीम का गठन किया गया था, के आधार पर सिमडेगा थाना प्रभारी द्वारा ट्रैक्टर के मालिक एवं ड्राइवर को विभिन्न जगहों से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के पश्चात चालक द्वारा बताया गया कि इसका मालिक द्वारा बताया गया था कि अगर कोई बीच में रास्ता में रोकता है तो उसको कुचल करके चल जाना है।
1: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,600 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में चल रही एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में देश भर के नामी तीरंदाज निशाना साध रहे हैं। 27 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में अर्जुन अवार्डी, वर्ल्ड चैंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में 2025 के वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट ऋषभ यादव भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया का बढ़ता बजट और खेल सुविधाओं में सुधार मिनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने में मदद कर रहा है।
3: हेलो, मेरा नाम ऋषभ यादव है। मैं वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2025 में। सरकार की तरफ से जो नीतियाँ है सब चीज है, पिछले 10 साल में हमने बहुत इम्प्रूव किया है। स्पोर्ट्स बजट अभी रिसेंटली में खेलो इंडिया का बढ़ा दिया गया है। कोई नया है उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है शुरू करने के लिए, कि 10 साल में जब क्या पता इंडिया ओलंपिक होस्ट करे तब तो वो तैयार हो।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन के बाहर नौकरी गंवाने वाले छात्रों का प्रदर्शन जारी। हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। पूर्व सिंहभूम जिले को बड़ी उपलब्धि, शिक्षा प्रदर्शन में झारखंड में हासिल किया प्रथम स्थान। झारखंड में डूबने से होने वाली मौतों पर लगेगी रोक, राज्य स्तरीय कार्यशाला में 90 दिनों की कार्य योजना पर बनी सहमति। संवेदनशील स्थान होंगे चिन्हित। देवघर में फर्जी जीएसटी अधिकारी बनकर लूट कांड का खुलासा, बिहार से 5 अपराधी गिरफ्तार। और बोकारो में शुरू हुई एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता, देश भर से जुटे तीरंदाज, जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तराशने में खेलो इंडिया की सराहना की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, ये आकाशवाणी रांची है। अगले कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

रांची है और अब वक्त है कार्यक्रम अनुरंजनी का, उपशास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम। आज की कलाकार है शोभा गुरटू और इसमें आप सुन सकेंगे मिश्र पहाड़ी ठुमरी और दादरा। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम अनुरंजनी।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार थी शोभा गोटू और इसमें आपने सुना मिश्र पहाड़ी में ठुमरी और दादरा। इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और 100.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत।

दोस्तों, गज़ल सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल के वो जज्बात हैं जो बिना कहे ही सब कुछ बयां कर देते हैं। और जब बात गज़ल गायकी की हो तो दो नाम जहन में सबसे पहले आते हैं, गज़लों के शहंशाह मेहदी हसन साहब और सुरीली तान के उस्ताद गुलाम अली साहब। तो पहली गज़ल जो अभी आपने सुनी वो थी मेहदी हसन की, और उनके लिए बस यही दो लाइनें याद आती हैं। गज़ल को जिसने बख्शी है इबादत की तरह रंगत, गज़ल को जिसने बख्शी है इबादत की तरह रंगत, वो आवाज़ कोई और नहीं मेहंदी हसन की है। तो इन्हीं लाइनों के साथ सुनते हैं अगली गज़ल जो हवा में मदहोशी घोल देगी। हवा में घुलती है जब उनकी तान का जादू, हवा में घुलती है जब उनकी तान का जादू, गुलाम अली की गज़ल हर दिल को छू जाती है।

शुरू का या नशा या रूहानी महफिल यहीं थमती है, लेकिन मेहंदी हसन और गुलाम अली साहब के नगमे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सुनते रहिए रेडियो, और तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: Singapore's aid of deposed Prime Minister Sheikh Hasina resigned last month on health grounds before completing his five-year tenure. Jagyasa Pandey from News Desk.
1: Russia launched an overnight missile barrage on Ukraine's capital Kiev, killing at least six people and injuring 33 others. Ukraine's emergency service said the strikes hit 12 locations across three districts, damaging residential buildings, a medical facility, and an educational institution. The attack comes as Russia intensifies ballistic missile strikes on Kiev, putting further pressure on Ukraine's limited air defense capabilities. Meanwhile, Ukraine has stepped up long-range strikes against military and strategic targets deep inside Russia. In Kerala, red alert has been declared in all coastal districts of the state until this evening. There are also warnings of high waves and the swell surge phenomenon. More from our Thiruvananthapuram correspondent.
2: The alert warns of potential waterlogging and sea attacks in coastal areas. Waves up to 1.8 meters high are expected until 5:30 p.m. today. It is also advised to completely avoid trips to beaches and recreational activities in the sea. Special caution has been advised in the areas of Chombala Ramanattukara, Vallapattanam Newmahi, Kunjathur Kottakunna, Kapil Podiyur, Chellanam Azhikil Jetty, Munambam Maruvakkad and Aattupuram Kodungallur. Midhi M. Palliruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
1: The Indian Meteorological Department has issued orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh and East Madhya Pradesh tomorrow. In badminton, India's women's doubles duo of Trisha Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat seven seeds Rin Iwanaga and Kei Nakanishi of Japan in straight games. In hockey, the Indian women's team will face England today in their final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wageningen Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Japan agree to deepen defense partnership, sign memorandum of arrangement on maritime security cooperation. Home Minister Amit Shah chairs 31st Southern Zonal Council meeting in Kovalam, Tamil Nadu to discuss interstate disputes, security and development issues. India-Singapore Ministerial Roundtable takes place in Singapore to strengthen bilateral cooperation in strategic areas including semiconductor and cyber security. Bangladesh to vote for the first time to elect its president today after a gap of 35 years. And Trisha Jolly and Gayatri Gopichand enter women's doubles quarterfinals of BWF World Championships. With that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanaklata. भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद बीडब्ल्यूएफ विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची अब समाचार विस्तार से भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने बैठक की अध्यक्षता की बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की
4: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है

0: हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
1: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
0: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है, इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
1: श्री कोइजुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देव भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
2: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70,00,000 पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
3: एक पेड़ मां के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50,00,000 पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है। हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी

0: ने कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिन वा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577, जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में।

जय हिंद वंदे मातरम कार्यक्रम है जय भारती। हमारे देश की शान, हमारी सुरक्षा की ढाल और हमारे सभी फौजी भाइयों को मैं प्रतीक्षा पांडे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सरहद पर ऋतुएं बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, पर जो एक चीज कभी नहीं बदलती वो है

आपकी आंखों में चमकता हुआ देश प्रेम और सीने में धड़कता हुआ भारत माता का अभिमान। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से तू अपनी लगा लेना ऐ भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। देश प्रेम से भरे इस लाइन के साथ आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

जी हाँ, तेरी याद साथ है और हर जवान के साथ उनकी घर की यादें होती हैं। फौजी भाई जब वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े होते हैं तो पूरा देश चैन की नींद सोता है। आपका ये त्याग ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। आइए इसी जज्बे को सलाम करते हैं और सुनते हैं ये जोशीला गाना।

है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो आन आन शान या की जान का

0: सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के।

0: दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या किशोर का चुनाव या कि हार का वो भाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या कि केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
1: वाकई जब भी यह धुन बजती है रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपकी शहादत आपका समर्पण इस माटी का असली चंदन है। लेकिन दोस्तों वर्दी के पीछे भी एक दिल धड़कता है, एक ऐसा दिल जो देश की रक्षा के साथ साथ गांव की मिट्टी, माँ के हाथ की रोटी, पत्नी के प्यार और बच्चों की तोतली बोली को भी याद करता है। तस्वीरें चाहे बटुए में रखी हों या मोबाइल की स्क्रीन पर, अपनों की याद हमेशा आपके साथ चलती है। कागज की कश्ती से फिर वो किनारा याद आता है, दूर सरहद पर बैठकर हर वो नजारा याद आता है। यूं तो मजबूत बहुत हैं फौजी भाइयों के इरादे, पर कभी कभी अपनों का वो दुलार याद आता है और इसी एहसास को जोड़ता है और ले चलते हैं सीधे आपके घर आंगन में।

मुझे पता है चिट्ठी का ज़माना अब व्हाट्सएप और वीडियो कॉल में बदल गया है, लेकिन नेटवर्क ढूंढने के लिए जब हमारे फौजी भाई पहाड़ों पर जाते हैं तो वो काम भी रोज़ का काम हो जाता है। चाहे दूरी कितने भी हो, हमेशा अपनों की दुआएं ढाल भरकर हमारे सीमा पर खड़े जवानों की रक्षा करती हैं। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गाना आपके लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय भारती। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:55 होने वाले हैं और ये वक्त होता है प्रादेशिक समाचार का। समाचार कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। झाबुमो ने केंद्र सरकार के खनिज और खनन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची के सोहराय भवन में पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में खनिज बिल के विरोध और खनिज परिवहन रोकने जैसे कड़े कदमों पर चर्चा की जा रही है। पार्टी की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी का आरोप है कि इस काले कानून से राज्य को भारी वित्तीय नुकसान होगा।
1: यहाँ से मिनरल्स को बाहर नहीं जाने की व्यवस्था की जाएगी ताकि केंद्र सरकार सुने और पुनर्विचार करके इस बिल को रद्द करे। और केंद्र की मंशा है राज्य के रिसोर्सेज को अपने हाथों में लेना। ये राज्यों के साथ घोर अन्याय है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी ये अधिकार दिया हुआ है कि अगर राज्य के पास मिनरल्स हैं जिससे पूरा देश समृद्ध हो रहा है तो उस मिनरल्स का लाभ यहाँ के राज्य सरकार को मिलना चाहिए।
0: इधर एमएमडीआर बिल विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 1956 का खनिज कानून नेहरू जी ने बनाया था। उन्होंने चेताया कि अत्यधिक सेस लगाने से राज्य का कोयला महंगा होगा और उद्योग अन्य राज्यों में चले जाएंगे जिससे झारखंड आर्थिक रूप से बदहाल हो जाएगा।
2: झारखंड के लोगों को विस्थापन और पलायन का शिकार नहीं होना, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कानून बनाया। अब गुलान कर लें या लड़ाई कर लें या झगड़ा कर लें तो इसके बाद क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा? रॉयल्टी भी बंद हो जाएगी और सेस भी बंद हो जाएगा। तो इनके पास जो है अपने गाड़ी में डीजल और पेट्रोल भराने के लिए भी पैसा नहीं, इसके बाद न रॉयल्टी मिलनी न सेस मिलना है। इसके बाद कंगाल होने के अलावा हेमंत सोरेन जी झारखंड वासियों को और क्या करें।
0: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड को मिनरल बेयरिंग लैंड पर सेस राशि लेने का अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को पत्र लिखकर कुछ निश्चित शर्तों के साथ यह अधिकार देने का आग्रह किया है ताकि इस राशि का उपयोग खनन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और युवाओं के विकास पर किया जा सके। सुदेश महतो ने राज्य सरकार पर अवैध खनन, नौकरी बेचने और डीएमएफटी फंड में भारी अनियमितता का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में शर्तों के साथ ही सेस राशि का उपयोग होना चाहिए।

0: राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल समेत कुल 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। आज अभ्यर्थियों ने रांची के प्रोजेक्ट भवन के मुख्य दरवाजे पर बैठकर जोरदार नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार ने बिना उनका पक्ष सुने भीड़ तंत्र के दबाव में यह फैसला लिया है। चयनित अभ्यर्थी आज शाम 5 बजे मोराबादी मैदान से अल्बर्ट एक्का चौक तक तिरंगा यात्रा भी निकालेंगे। दुमका के बासुकीनाथ में चल रहे श्रावणी मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अंजना रानी मिंज के नेतृत्व में हुई छापेमारी के दौरान दुकानों से 118 किलोग्राम फंगस लगा पेड़ा, एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स और केमिकल युक्त हल्दी जब्त कर नष्ट की गई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मिलावटखोर दुकानदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि दोबारा पकड़े जाने पर भारी जुर्माने के साथ सीधे जेल भेजा जाएगा।
1: खाद्य प्रतिष्ठान है उन पर जांच अभियान चलाया गया। जो भी उपयोग में आने वाले खाद्य सामग्री है उनकी ऑन द स्पॉट जांच की गई और जांच के क्रम में करीब 118 केजी पेड़ा जो मानक के अनुरूप नहीं था उनको हमने मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। किसी भी तरह का लापरवाही होती है या फिर मानक के विरुद्ध कार्य होती है तो उन पर हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और जुर्माना भी लगाएंगे।
0: झारखंड से अफीम तस्करी के मामले में दिल्ली पुलिस और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने राष्ट्रीय स्तर के पूर्व पहलवान अमित शोराण को दिल्ली के मधुबन चौक से गिरफ्तार किया है। हरियाणा निवासी 31 वर्षीय अमित वर्ष 2013 की राष्ट्रीय कैडेट कुश्ती का कांस्य पदक विजेता है। वह दिसंबर 2023 से फरार चल रहा था। राज्य में मॉनसूनी बारिश में सुधार होने से सूखे का संकट कम हुआ है और वर्षा की कुल कमी घटकर अब सिर्फ 10% रह गई है। 1 जून से 19 अगस्त तक राज्य में 633.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी सिंहभूम में सर्वाधिक 48% अधिक वर्षा हुई जबकि रांची और खूंटी सहित 7 जिलों में सामान्य से ज्यादा पानी बरसा है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। अगले कार्यक्रम के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का प्यार भरा नमस्कार
0: और अजीत का भी जोहार और नमस्कार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सूर्य बिना कुछ मांगे हमें प्रकाश देता है, नदी बिना भेदभाव जल देती है, वृक्ष पत्थर खाने पर भी फल देते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमने दिया, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है।
0: बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, वे बस देते हैं क्योंकि देना ही उनका स्वभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओं, इसी प्रकार प्रकृति भी हमें बस देती है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश

0: कुमार शर्मा जी का,
1: शेरी वर्नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
0: और केंद्र पाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, कुटकुटिया नायक, शुभम नायक और सत्यजीत नायक,
1: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है।
0: उन्होंने लिखा है, धैर्य रखें, कठिन समय भी सरल हो जाएगा।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन और ईशांत देवांगन।
0: आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, सच में आप हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। स्वागत एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला में हम लेकर आते हैं ज्ञान विज्ञान साहित्य भूगोल इतिहास और अनेकों ज्ञान की शाखाओं की मनोरंजक जानकारियाँ।
0: तो विमलेश जी, आज हमारी बातचीत का विषय क्या रहेगा?
1: अजीत जी, मैं सोच रही थी जानकारियाँ तो हम इस श्रृंखला में देते ही रहते हैं, लेकिन पिछले सप्ताह प्राप्त संदेशों से पता चलता है कि हमारे श्रोता प्रेरक प्रसंग भी बहुत पसंद करते हैं।
0: जी हाँ, ये तो है।
1: तो क्यों ना आज और कल कुछ प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किए जाएं?
0: नेकी और पूछ विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जीवन में प्रेरक प्रसंगों से भी हमें बहुत सहायता और संबल मिलता है। तो बताइए जरा श्रोताओं को कि हमारा आज का प्रेरक प्रसंग क्या रहेगा?
1: अजीत जी, आज बात करते हैं एक तितली के संघर्ष की।
0: वाह, क्या बात है, एक तितली के संघर्ष की।
1: श्रोताओं, आज हम आपको एक छोटी सी तितली की कहानी सुनाने जा रहे हैं।
0: जी हाँ श्रोताओं, ये कहानी लंदन की प्रसिद्ध बाल पत्रिका किड्स वर्ल्ड में छपी थी। शीर्षक था द बटरफ्लाई एंड द कुकून। ये कहानी केवल एक कीट की नहीं बल्कि हम सब के जीवन की कहानी है।
1: जी
0: श्रोताओं, कहानी कुछ इस प्रकार से है।
1: एक दिन एक व्यक्ति अपने बगीचे में टहल रहा था। उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर लटके एक छोटे से कुकून पर पड़ी, यानी रेशम के कोए पर पड़ी। उसने देखा कि कुकून के भीतर एक प्यूपा नुमा तितली बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी।
0: श्रोता, वो व्यक्ति बड़ी उत्सुकता से उसे देखने लगा।
1: जी
0: उसने देखा कि वो तितली एक बहुत छोटे से छेद से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार जोर लगाती और फिर रुक जाती। कुछ देर के बाद फिर पूरी ताकत से प्रयास करती। ये संघर्ष कई घंटों तक चलता रहा। विमलेश जी, आगे क्या हुआ?
1: जी अजीत जी, जो हुआ वो बहुत ही अजीब हुआ। उस व्यक्ति ने सोचा कि तितली थक गई है, वो बेचारी अब बाहर निकल ही नहीं पाएगी। उस व्यक्ति का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, बेचारी तितली कितना संघर्ष कर रही है, यदि मैं इसकी थोड़ी सी मदद कर दूं तो इसका कष्ट समाप्त हो जाएगा।
0: श्रोताओं, ऐसा सोचता हुआ वो अपने घर गया, एक छोटी सी कैंची लाया और बहुत सावधानी से कुकून का छेद थोड़ा सा बड़ा कर दिया।
1: जी
0: अब वो तितली बिना किसी कठिनाई के बाहर निकल आई। लेकिन जैसे ही वो बाहर आई, उस व्यक्ति ने देखा उसका शरीर फूला हुआ था और उसके पंख छोटे और सिकुड़े हुए और बहुत ही कमजोर थे।
1: उसे लगा कि बस कुछ देर की ही तो बात है, कुछ ही देर में पंख फैल जाएंगे और तितली उड़ जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तितली जमीन पर ही रेंगती रही, वो कभी उड़ न सकी और कुछ ही दिनों में उसकी जीवन लीला भी समाप्त हो गई।
0: जी हाँ श्रोताओं, उस व्यक्ति को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों के बाद उसने एक और कुकून देखा जिससे तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो बहुत मेहनत कर रही थी।
1: जी
0: बार बार प्रयास करती पर थक कर रुक जाती। अब की बार इस व्यक्ति ने सोच लिया था कि वो तितली की कोई मदद नहीं करेगा।
1: कई घंटों के बाद जब वो तितली बाहर आई तो उस व्यक्ति ने देखा कि वो शानदार रंगों वाली एक बेहद सुंदर तितली थी। वो थोड़ी देर रेंगी, फिर पंख फैलाकर उड़ गई।
0: श्रोताओं, उस व्यक्ति ने अपनी कहानी में लिखा, मुझे अध्ययन करने के बाद ये पता चला कि प्रकृति ने तितली के लिए यह संघर्ष जानबूझकर रखा था।
1: जी।
0: जब तितली उस छोटे से छेद से बाहर निकलने का प्रयास करती है तब मेहनत के कारण तो उसके शरीर का द्रव उसके सिकुड़े हुए पंखों में पहुंचता है। इस द्रव को हीमोलिम्फ कहते हैं
1: और यही द्रव पंखों को मजबूत और उड़ने योग्य बनाता है। यदि तितली संघर्ष न करे तो उसके पंख कभी विकसित ही नहीं हो सकते।
0: तो विमलेश जी, इस घटना का सारांश क्या बनता है?
1: अजीत जी, जिस दया को उस व्यक्ति ने सहायता समझा था वही तितली के जीवन की सबसे बड़ी बाधा बन गई। एक विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करता है तो रातों की मेहनत, असफलताओं का डर और लगातार अभ्यास, यही संघर्ष उसे सफल बनाता है।
0: और ठीक इसी प्रकार विमलेश जी, जब एक खिलाड़ी रोज घंटों पसीना बहाता है तो वही संघर्ष, वही अभ्यास उसे विजेता बनाता है।
1: एक किसान तपती धूप में खेत जोतता है तभी उसकी फसल लहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, खासकर अपने विद्यार्थी मित्रों, प्रकृति का नियम है, बिना संघर्ष के न शक्ति

0: मिलती है न सफलता। इतिहास गवाह है, जिन लोगों ने कठिनाइयों का सामना किया है वही महान बने हैं।
1: श्रोताओं, अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में जानते हैं। उन्होंने गरीबी देखी, संघर्ष किया, लेकिन हार नहीं मानी।
0: जी,
1: हेलेन केलर ने जीवन भर दिव्यांगता का सामना किया, लेकिन संघर्ष के कारण वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई।
0: हम सभी नेल्सन मंडेला के बारे में जानते हैं। उन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए, लेकिन उनका संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक बन गया।
1: जी हाँ विद्यार्थी मित्रों, यदि इन लोगों के जीवन से संघर्ष निकाल दिया जाए तो शायद दुनिया इन्हें कभी याद भी न रखे।
0: जी
1: तो प्रिय मित्रों, यदि आज आपके जीवन में कोई कठिनाई है, यदि आपको लगता है कि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, यदि लगता है कि बार बार असफलता मिल रही है,
0: तो निराश मत होइए। हो सकता है शायद जीवन आपको उड़ने के लिए तैयार कर रहा हो। याद रखिए, कोयला दबाव सहकर ही हीरा बनता है, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, और तितली संघर्ष करके ही उड़ना सीखती है।
1: तो मित्रों, ये थी हमारी आज की प्रेरक कहानी। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। श्रोताओ, हमारा आज का प्रश्न है, कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कुकून से बाहर निकलते समय तितली के शरीर से जो द्रव निकलता है उसे क्या कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT Books PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो प्रारूप में यानी ऑडियो बुक के रूप में सुनना चाहते हैं तो जाइए NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर, और इसी ऑफिशियल चैनल पर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों को सुन सकते हैं। श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी जल चक्र की कहानी।
0: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पारंपरिक भारतीय नट और नटी के तुकांत नाट्य प्रारूप में जल चक्र की कहानी को कविता और ताल वाद्य की मजेदार संगत से बताया गया है और बच्चों को जल संरक्षण की प्रेरणा दी गई है।
1: पानी रे पानी जल चक्र पर कविता।

0: सोनी, जल्दी उठ जा बेटी, भीड़ हो जाएगी।
1: मम्मी सोने दो ना, ये भी कोई समय है उठने का, अभी तो सुबह के 3:30 ही बजे हैं।
0: अरे बेटी, 2 दिनों से पानी नहीं आया है। हमारे सामुदायिक रेडियो पर मैसेज आया था कि मोहल्ले में आज सुबह 4 बजे टैंकर से पानी दिया जाएगा। चल तैयार हो जा, मैं भी बाल्टी ले लेती हूँ।
1: माँ, भैया को भी ले चलते हैं ना।
0: अरे उसे सोने दे, भैया थका हुआ है। इन दिनों स्कूल में फुटबॉल मैच चल रहे हैं ना, कसरत करने भी तो जाता है कितनी।
1: माँ मैं भी तो स्कूल जाती हूँ और आपके साथ साथ घर का सारा काम भी कराती हूँ, क्या भैया ही थकता है बस।
0: ओहो, अब चल भी, बहस मत कर।
2: नहीं माँ, इस बार मेरी बारी, अगली बार भैया की बारी, ठीक है?
0: ठीक है बाबा, ठीक है, अब चल भी, बहस मत कर।
1: ठीक है चलो।
0: अरे तू कहाँ से आ गई? हट हट, मेरी बारी है। हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट हट
3: तो साथियों, ऐसा दृश्य थोड़े बहुत अंतर के साथ दुनिया के बहुत से देशों में देखने को मिल जाएगा। आए दिन अलग अलग समाचार माध्यमों से सूचनाएं मिलती हैं कि जलाशय सूख रहे हैं, नदियां सूख रही हैं।
0: जी हाँ, इसी तरह सोनी के मोहल्ले और आसपास के क्षेत्रों में अक्सर पानी की समस्या बनी रहती थी और हर बार वही क्रम चलता रहता था। वही क्रम यानी

0: रानी शाम को रेडियो सुन रही थी।
1: नमस्ते, हमारे कम्युनिटी रेडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट गौहर परवेज। शनिवार को संध्या 7 बजे हरित नगर कम्युनिटी हॉल में आप सबका रहेगा इंतजार। हम लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए एक बेहद खास प्रोग्राम, पानी रे पानी। बेहद खास इसलिए कि उस दिन आप मिल पाएंगे अपने चहेते रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी से। तो आइएगा जरूर।
0: बच्चे बहुत उत्साहित थे क्योंकि प्रोग्राम में आ रहे थे उनके प्रिय रेडियो किरदार झुमरू और झुमकी।
2: इनका प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है।
3: अरे आ गए, देखो।

0: तो प्यारे प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी
1: और मैं हूँ झुमरू।
0: नमस्कार।
1: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
0: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे, किस पर?
1: किस पर?
0: पानी पर।
1: पानी पर? क्यों?
0: वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
1: हाँ, बड़ी तो है। अब देखो ना, इन बच्चों को सुबह सुबह 3-4 बजे पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है। क्यों बच्चों, है ना यही बात?
2: हाँ, ये बात तो है,
3: पानी की समस्या तो है, हम तो परेशान हो गए हैं।
1: तो बच्चों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जल चक्र।
4: जल चक्र?
1: हाँ, तो आज हम खेलेंगे भाषा का खेल, जिसमें आपको करना है शब्दों का मेल।
0: तो चलो शुरू करें।
1: चलो झुमकी।
0: ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ। सूरज निकला चमचमाया, धूप ने फिर जल को तपाया। आगे जोड़ो झुमरू जी, और वो भी ताल में।
1: हाँ हाँ, जोड़ता हूँ मैं, ये लो, बात ध्यान से मेरी सुन लो। नदियों तालों का जल उड़ाया, भाप बन जल ऊपर आया।
0: झुमरू जी ने तो कमाल कर दिया। अब ये भी लीजिए, जब भाप बनी तब बादल छाए, नील गगन में झूले खाए। जब लग गए बूंदों से बादल, भारी हो गए तब बादल।
1: रिम झिम रिम झिम वर्षा आई, चहू और हरियाली छाई। झरनों नदियों में बह पानी, जल चक्र की है ये कहानी।
0: इसके बाद क्या हुआ झुमरू जी?
1: बताते हैं, सुनिए। पानी फिर से सागर जाता, बार बार यही क्रम दोहराता।
0: क्या बात है। सूरज भाप बादल वर्षा का, जल चक्र यूं चलता जाता। सभी बोलेंगे जल चक्र।

0: तो बच्चों, कैसा लगा भाषा का ये खेल?
1: बहुत अच्छा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल चक्र की कहानी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वो बारिश का दिन।
3: ये कार्यक्रम एक रोचक नाटक के द्वारा वैज्ञानिक खोज की जानकारी देते हुए बताता है कि ज्वर मापी यंत्र थर्मामीटर का आविष्कार कैसे हुआ।
4: तनु माँ के साथ छुट्टियों में नाना जी के पास आई हुई है। तनु के नाना जी आजकल तनु के साथ छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं। वैसे वो शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, पर अब रिटायर हो चुके हैं और सुबह शाम कुछ समय के लिए घर पर ही मरीजों को देखते हैं। नाना जी के साथ तनु रोज सैर करने जाती है, पर आज बारिश के कारण दोनों घर में बैठकर कैरम खेल रहे हैं।
5: वैसे तनु, हाँ बारिश ने तो हम दोनों को घर पर ही रोक रखा है।
6: जी,
5: पर कैरम का खेल खूब जमा। न जाने कितने समय के बाद कैरम बोर्ड को हाथ लगाया आज मैंने, फिर भी एक खिलाड़ी को हरा दिया।
6: नाना जी, मैं तो हार कर भी जीत गई हूँ।
5: ये कैसी अजीब बात है?
6: देखिए ना, आप चाहे हारे या जीते, हर बार आपको मुझे कहानी सुनाने का इनाम तो देना ही पड़ता है।
5: ये बात तो है। अच्छा ठीक है, ये बताओ आज कौन सी कहानी सुनोगी, परियों की या जादूगर की?
6: ना परियों की ना जादू वाली, मुझे तो वैसी ही कहानी सुनाइए जैसे हर दिन सुनती हूँ मैं आपसे।
5: अच्छा बेटा तरु, तेरे डॉक्टर नाना के पास तो बीमारी, रोगी और उनके स्वस्थ होने की कहानियाँ ही है बस।
6: लेकिन एक बात तो है, आपकी कहानियाँ परियों की कहानी से अधिक रोचक और मजेदार होती हैं।
5: अच्छा?
6: हाँ और क्या, तो सुनाइए ना। जल्दी सुनाइए।
5: हाँ, बेटा सुनाता हूँ।
6: जल्दी सुनाइए।
5: अरे सोचने तो दो,
6: जल्दी सोचिए।
5: किसकी कहानी सुनाऊं देखो।
6: अरे जीवन काका।
5: अरे अरे आओ जीवन, क्या बात है भाई?
7: बाबूजी, आज सुबह से बुखार सा लग रहा है, सिर में भी दर्द है।
5: बुखार? अरे भाई बारिश में भीग तो नहीं गए कहीं? आओ आओ अभी देखता हूँ, आओ इधर आओ।
7: जी
5: यहाँ लेट जाओ
7: जी।
5: अरे बेटे तनु
6: जी,
5: जरा अंदर से थर्मामीटर तो ले आओ।
6: जी अभी लाई।
5: हाँ हाँ खांसी भी है तुम्हें, जरा जबान दिखाओ तो।
7: जी
5: पेट भी गड़बड़ है तुम्हारा तो। एक मिनट देखो, ये बारिश की वजह से हुआ है
7: जी।
5: पहली बारिश में थोड़ा सावधान रहा करो।
7: जी जी जी जी।
5: अरे बदलते मौसम का असर तो होता ही है ना भाई जीवन।
6: जी नाना जी।
5: हाँ ला बेटा ला। जीवन
7: जी
5: जरा मुंह खोलो, लो इसे जीभ के नीचे रख लो।

0: डॉक्टर साहब ने थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देखा तो हल्की हरारत थी। उन्होंने जीवन काका को दवा दी और आराम करने के लिए कह दिया। जीवन चला गया। नाना जी को लगा जब वो थर्मामीटर लगाकर जीवन का बुखार देख रहे थे तो तनु कभी उन्हें और कभी थर्मामीटर को ध्यान से देख रही थी।
1: अरे तनु
2: जी,
1: क्या बात है, कोई कहानी सोच रही है अपने नाना को सुनाने के लिए है?
2: नाना जी, मैं सोच रही थी जब पुराने समय में थर्मामीटर नहीं थे तो डॉक्टर मरीज का बुखार कैसे नापते थे?
1: बेटी तनु
2: जी,
1: ये समझ लो कि इसका उत्तर अपने आप में एक मजेदार कहानी है।
2: तो फिर आज वही

0: ये ना।
1: सुनो
0: जी,
1: जब थर्मामीटर नहीं था ना, तब डॉक्टर रोगी को छूकर ही उसके ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करते थे।
0: लेकिन अनुमान से शरीर में कितना डिग्री बुखार है ये पता लगाना तो कठिन होता होगा।
1: एकदम ठीक बात कही तूने बेटा।
0: दुनिया का सबसे पहला थर्मामीटर किसने बनाया था
1: ये जानने के लिए तो तुम्हें लगभग 400 वर्ष पीछे इतिहास में जाना होगा। और बिटिया वो भी अपने देश से दूर विदेश में।
0: तो चलिए ना, मैं तो तैयार हूँ इस इतिहास यात्रा के लिए।
1: चलो। ये यूरोप के एक देश इटली की घटना है बेटा। तब वहां एक चिकित्सक थे डॉक्टर सेक्टोरियस।
0: जी।
1: दुनिया का सबसे प्रथम थर्मामीटर बनाने का श्रेय उन्हीं को दिया गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, पहला थर्मामीटर देखने में इतना विचित्र था कि जब डॉक्टर इससे किसी रोगी का बुखार देखते तो हंसी आ जाती थी।
0: नाना जी, हंसना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे कैसा था उनका बनाया थर्मामीटर?
1: बेटे एकदम अलग आकार था।
0: अच्छा।
1: बिल्कुल अलग आकार का था ये पहला थर्मामीटर।
0: जी।
1: उससे बुखार देखने के लिए डॉक्टर को पानी में उड़ते बुलबुले गिनने पड़ते थे।
0: अच्छा।
1: अर्थात ज्यादा बुलबुलों का मतलब होता था तेज बुखार। कम बुलबुले हो तो थोड़ा बुखार।
0: लेकिन पानी में उठने वाले हवा के बुलबुलों का बुखार से क्या संबंध हो सकता है?
1: बिटिया रानी, वही मजेदार बात सुनो। वो थर्मामीटर भी शीशे की एक लंबी ट्यूब या नली के आकार का था जो बीच में कई जगह मुड़ी हुई थी।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, उसके एक छोर पर शीशे का एक छोटा सा ग्लोब था।
0: अच्छा।
1: हाँ, और नली का दूसरा छोर खुला हुआ था।
0: वाह, शीशे के ग्लोब वाला थर्मामीटर। लेकिन बुखार कैसे देखते थे उस थर्मामीटर से?
1: बताते हैं बेटा, बताते हैं। देखो
0: जी,
1: जिसे बुखार होता
0: जी,
1: डॉक्टर उसके मुंह में नली का ग्लोब वाला भाग रखते
0: जी।
1: उसके बाद नली का दूसरा छोर एक खुले बर्तन में भरे पानी के अंदर डाल दिया जाता।
0: फिर
1: मुंह में रखा ग्लोब शरीर के तापमान से गर्म होने लगता
0: जी।
1: अब ग्लोब गर्म होता तो उसमें मौजूद हवा भी गर्म होकर फैलने लगती।
0: अच्छा।
1: और नली के मुड़े हुए हिस्से में से होकर दूसरे छोर पर पानी से भरे बर्तन में पहुंचने लगती।
0: लेकिन बुखार?
1: ओहो बेटा, बताता हूँ, सांस लेने दे बूढ़ा आदमी। सुन ध्यान से
0: जी।
1: तो बेटा तुम तो जानती हो कि हवा पानी से हल्की होती है ना
0: जी,
1: इसीलिए वो बुलबुलों के रूप में पानी से बाहर निकलती जाती
0: जी।
1: शरीर का तापमान जितना अधिक होता उतने ही ज्यादा बुलबुले बनते, और डॉक्टर उन बुलबुलों को गिनते रहते।
0: अच्छा।
1: और बुखार का अनुमान लगा लेते। हाँ, लेकिन एक बात।
0: क्या?
1: देखो, पहले प्रयोग के समय देखा जा चुका था
0: जी,
1: कि सामान्य तापमान वाले व्यक्ति के मुंह में ग्लोब से पानी में कितने बुलबुले निकलते थे।
0: यानी बुलबुलों की संख्या जितनी अधिक होती रोगी का बुखार उतना ही तेज होता।
1: बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक।
0: लेकिन बात तो तब भी अनुमान पर ही टिकी होती ना।
1: हाँ बेटा, ये तो बात सही है, क्योंकि तापमान नापने का कोई तरीका तो तब था नहीं।
0: हाँ जी।
1: इस तरह ग्लोब और बुलबुलों वाला थर्मामीटर
0: जी
1: दुनिया का पहला थर्मामीटर माना गया।
0: अच्छा।
1: हाँ बेटा, आधुनिक थर्मामीटर जैसे आकार वाला थर्मामीटर फ्रांस में सन 1654 में बना
0: जी।
1: समझ गई ना
0: जी।
1: पर इसमें पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा होता था
0: जी,
1: और तापमान नापने

0: उस पर मोती लगे होते।
1: अच्छा,
0: आज ऐसे निशान नहीं होते थे बेटा।
1: वाह, मोतियों से जड़ा थर्मामीटर।
0: नहीं बेटा, वो सच्चे मोती नहीं होते थे, मोती जैसे होते थे।
1: अच्छा।
0: हाँ बेटा, और फिर 19वीं सदी के आते आते आज के उपयोग में आने वाला थर्मामीटर बना लिया गया।
1: अच्छा।
0: आजकल बिना पारे वाले थर्मामीटर बन गए हैं।
1: जी।
0: इसे डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: डिजिटल थर्मामीटर से बुखार कितना है ये जानने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती बेटा।
1: जी।
0: लगाते ही डिजिटल थर्मामीटर सही तापमान बता देता।
1: अरे वाह।
0: हाँ। पर बेटा, डिजिटल थर्मामीटर महंगे होने के कारण अभी भी ज्यादा चलन में नहीं है।
1: हाँ, और इस बार जब किसी को बुखार होगा तो हम डिजिटल थर्मामीटर से ही देखेंगे।
0: हाँ, क्यों नहीं बेटा। और बेटे, अब नेत्रहीन लोगों को बोलकर बुखार बताने वाला थर्मामीटर भी बन गया है।
1: वाह, क्योंकि नेत्रहीन तो थर्मामीटर पर आई रीडिंग को नहीं पढ़ सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये थर्मामीटर तापमान दिखाता नहीं।
1: जी।
0: बोलकर बतला देता है।
1: नाना जी।
0: हा?
1: मैंने देखा है कि छोटे बच्चों का बुखार देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो लगातार अपने हाथ पैर चलाते रहते हैं।
0: सही कह रहे बेटा, लेकिन एकदम छोटे शिशु का बुखार देखने के लिए भी विशेष प्रकार का थर्मामीटर बना लिया गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, इसे क्या करते हैं कि बच्चे के कान में लगाकर बुखार कितना है ये जान लिया जाता है।
1: अरे वाह।
0: हाँ, और शिशु को जरा भी परेशानी नहीं होती।
1: वाह, ये तो बड़ी मजेदार जानकारी दी आपने नाना जी।
0: है ना
1: जी।
0: अरे बेटा, नाना किसका हूँ।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम वो बारिश का दिन, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना
2: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम उमंग। ये आकाशवाणी रांची है। शाम के 3:30 हो चुके हैं और ये वक्त होता है कार्यक्रम रांची मेलोडीज का। रांची मेलोडीज आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी हम नवा प्रतीक्षा। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने शो रांची मेलोडीज में। जी हां दोस्तों, दिन भर की थकान के बाद अब वक्त है कड़क चाय और बेहतरीन गानों का। दोस्तों आज 20 अगस्त की तारीख है। 20 अगस्त की तारीख बॉलीवुड के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इसी दिन हरियाणा के रोहतक में जन्मे थे हमारे अपने रफ एंड टफ स्टार रणदीप हुड्डा। आज की पूरी महफिल हम उन्हीं के नाम समर्पित करते हैं। तो सबसे पहले हमारी पूरी टीम की तरफ से रणदीप हुड्डा को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए इस खास शाम का आगाज करते हैं उनकी ही फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के इस ऑल टाइम फेवरेट गाने के साथ।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: सैनिक पड़े भारतीय सेना।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रांची मेलोडीज और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। तो बिल्कुल वंस अपॉन ए टाइम मुंबई का ये गाना तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, ये गाना आज भी दिल को छू जाता है, आज भी दिल को तरोताजा कर देता है। दोस्तों, पर्दे पर आज जितने निडर और दमदार रणदीप हुड्डा दिखते हैं, उनकी शुरुआती जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। उच्च शिक्षा के लिए जब वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए गए तो उनको अपना खर्चा निकालने में भी बहुत मुश्किलें आई। उन्होंने बहुत जगह काम किया और 2 साल के बाद जब वो भारत लौटे तो यहाँ पर भी उन्होंने कुछ काम ढूंढा और साथ ही साथ थिएटर में एक्टिंग सीखने लगे। फिर 2001 में मीरा नायर की फिल्म मानसून वेडिंग से उन्हें पहला ब्रेक मिला, लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक उन्हें पहचान के लिए तरसना पड़ा। रणदीप की इस जद्दोजहद और कभी हार ना मानने वाले जज्बे पर बस यही कह सकते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रास्ते में आए लाख रुकावटें तो क्या, जो गिरकर उठता है उसी की असली पहचान होती है। जी हाँ दोस्तों, रणदीप ने ये साबित कर दिया है कि अगर इरादे पक्के हों तो हालात चाहे जो भी हों, इंसान अपनी मंजिल हासिल कर ही लेता है। और इसीलिए इसी मोटिवेशन के साथ सुनते हैं ये उन्हीं की फिल्म का एक और प्यारा सा गाना। और जिन्होंने अभी अभी इस कार्यक्रम को सुनना शुरू किया है उन्हें बता दें कि कार्यक्रम है रांची मेलोडीज और आज का हमारा रांची मेलोडीज समर्पित है हमारे रोहतक के छोरे रणदीप हुड्डा पर, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन। तो चलिए सुनते हैं रणदीप हुड्डा की ही फिल्म का एक और प्यारा सा गाना।

सुखविंदर सिंह की आवाज में यह गाना रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, जब रणदीप हुड्डा ने अपनी पहचान बना ली तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म सरबजीत के लिए उन्होंने महज 28 दिनों में 18 किलो वजन घटाया, जो किरदार के लिए उनकी दीवानगी को दर्शाता है। उनकी इस जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें लायंस गोल्ड अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर और स्टार डस्ट अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। हाल ही में फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में उनके अभिनय और डायरेक्शन को भी जबरदस्त सराहना मिली। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं उनकी ही फिल्म का ये अगला गाना, जो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा।

वाह, क्या लाजवाब बोल हैं। वैसे दोस्तों, रणदीप सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी बहुत खास हैं। वो एक नेशनल लेवल के पेशेवर हॉर्स राइडर हैं और उनके पास कई मेडल्स भी हैं। साथ ही वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और पर्यावरण के लिए भी काफ़ी काम करते हैं। फिल्म हाईवे में आलिया भट्ट के साथ उनका जो सफ़र था वो आज भी हमारे दिलों में बसा है। इम्तियाज़ अली का डायरेक्शन, एआर रहमान का म्यूज़िक और रणदीप हुड्डा की सादगी। अगर आप भी इस वक्त गाड़ी में घर लौट रहे हैं तो आराम से ड्राइव करें। रांची की सड़कों पर थोड़ा ट्रैफिक है तो पैनिक बिल्कुल भी ना करें और साथ ही सुनते रहें हमारे साथ रांची मेलोडीज़।

घड़ी की सुइयां हमें इशारा तो कर रही हैं कि अब समय हो चला है कि हम विदा लें, लेकिन हम आपको छोड़ जाते हैं इस आखिरी तराने के साथ, जो कि रणदीप हुड्डा के ही फिल्म का गाना है, और क्योंकि आज की रांची मेलोडीज उन्हीं पर समर्पित थी, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रांची मेलोडीज, जो कि समर्पित था कलाकार रणदीप हुड्डा पर। शाम के 4 बजने वाले हैं और ये वक्त होता है प्रादेशिक मुख्य समाचार का। समाचार कुछ ही पलों में प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षाएं रद्द होने से हजारों युवाओं के सामने बेरोजगारी का संकट खड़ा हो गया है। नौकरी और प्रशिक्षण गंवा चुके अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के सामने लगातार धरना दे रहे हैं। सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब अभ्यर्थियों ने न्यायालय का सहारा लेने का निर्णय लिया है। झामुमो ने केंद्र के खनिज और खनन संशोधन विधेयक का विरोध तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची के सोहराय भवन में पार्टी की विस्तारित केंद्रीय समिति की बैठक हो रही है। बैठक में खनिज बिल के विरोध और खनिज परिवहन रोकने जैसे कड़े कदमों पर चर्चा की जा रही है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड को मिनरल बेयरिंग लैंड पर सेस राशि लेने का अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को पत्र लिखकर कुछ निश्चित शर्तों के साथ यह अधिकार देने का आग्रह किया है, ताकि इस राशि का उपयोग खनन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और युवाओं के विकास पर किया जा सके। खूंटी पुलिस और एनसीबी के संयुक्त टीम ने आज कर्रा थाना क्षेत्र के लोधमा पुलिस पिकेट के पास से 2 क्विंटल 5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान एक वाहन से यह खेप पकड़ी गई। पुलिस ने मौके से हजारीबाग के बरही निवासी 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। लोहरदगा के कुड़ू वन क्षेत्र से वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर 1 लाख रुपए मूल्य की अवैध साल की लकड़ियों से लदा वाहन जब्त किया है। कालीपुर हेंजला मुख्य मार्ग पर हुई कार्रवाई के दौरान चालक अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। और दुमका में भारी बारिश से मसानजोर डैम का जलस्तर 384 फीट पहुंच गया है, हालांकि यह खतरे के निशान से 14 फीट नीचे है। एहतियात के तौर पर मयूराक्षी नहर और पश्चिम बंगाल की ओर पानी का बहाव रोक दिया गया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक मुख्य समाचार, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे विज्ञान जगत।

शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त है कार्यक्रम विज्ञान जगत का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान जगत। चर्चा होगी विश्व फोटोग्राफी दिवस, भेंट वार्ताकार है फोटो पत्रकारिता और उसके वैज्ञानिक पक्ष, भेंट वार्ताकार संजय बोस, भेंटकर्ता बसंत कुमार। जीवन परिचय होगा डॉक्टर कस्तूरी रंगन, खोज एवं आविष्कार

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित है हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह आज फिर से हम ढेर सारी नई जानकारी और रोचक तथ्यों के साथ उपस्थित हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। चर्चा करेंगे आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के बारे में और फिर इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें हम फोटो पत्रकारिता और उसके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में बातचीत करेंगे। इसके बाद बारी होगी वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन के बारे में। इसके बाद बारी होती है खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे कंपास के बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस के बारे में। एक तस्वीर कभी खुशी का एहसास कराती है, कभी पुरानी यादों को ताजा कर देती है, कभी समाज और इतिहास की ऐसी कहानी सामने रखती है जिसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है और ये दिन फोटोग्राफी की कला, तकनीक, इतिहास और समाज पर उसके प्रभाव को समझने का अवसर देता है। विश्व फोटोग्राफी दिवस की पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो इसके शुरुआती विकास से जुड़ी हुई कहानी है और 19 अगस्त सन 1839 को फ्रांस की सरकार ने डैग्यूरियोटाइप फोटोग्राफिक प्रक्रिया के विवरण को सार्वजनिक किया था। इस तकनीक को फ्रांसीसी आविष्कारक लुई डैग्यूरे ने विकसित करने का काम किया था और इसी ऐतिहासिक घटना की याद में हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। हालांकि फोटोग्राफी की तकनीक विकसित होने में कई वैज्ञानिकों और आविष्कारकों का योगदान रहा है, लेकिन शुरुआती प्रयोगों से लेकर आज के डिजिटल कैमरे और स्मार्टफोन कैमरों तक का ये जो सफर है काफी रोचक है। सरल शब्दों में कहें तो प्रकाश की मदद से किसी दृश्य, व्यक्ति, वस्तु या घटना की तस्वीर को रिकॉर्ड करना ही फोटोग्राफी है। लेकिन आज फोटोग्राफी के मायने जो है वो बदल चुके हैं। एक समय था जब तस्वीर खिंचवाना अपने आप में बहुत खास माना जाता था और कैमरे बड़े भारी और तस्वीर लेने की प्रक्रिया भी काफी जटिल हुआ करती थी। धीरे धीरे कैमरों में सुधार हुआ, फिल्म कैमरे आए, फिर रंगीन फोटोग्राफी लोकप्रिय हुई और उसके बाद डिजिटल कैमरों ने फोटोग्राफी की दुनिया को पूरी तरह बदलने का काम किया। आज हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन ही एक शक्तिशाली कैमरा बन चुका है। कुछ सेकंड में तस्वीर खिंच जाती है। दुनिया के किसी भी कोने में हम इसे अब सोशल मीडिया के थ्रू भेज सकते हैं। लेकिन पहले ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इसकी जो यात्रा है काफी रोचक है। अब अगर फोटोग्राफी की महत्व की बात करें तो फोटोग्राफी केवल सुंदर तस्वीर खींचने की कला नहीं है, बल्कि इसका महत्व हमारे जीवन के लगभग हर क्षेत्र में है। इतिहास के क्षेत्र में तस्वीरें पुराने समय को समझने में हमारी मदद करती है। किसी ऐतिहासिक घटना, व्यक्ति या स्थान की तस्वीर आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाती है। पत्रकारिता में तस्वीर किसी घटना की वास्तविकता को लोगों के सामने रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समाचारों में इस्तेमाल की गई एक प्रभावशाली तस्वीर कई बार पूरी घटना की गंभीरता को कुछ सेकंड में ही लोगों के सामने रख देती है। विज्ञान के क्षेत्र में अगर बात करें तो फोटोग्राफी का उपयोग अनुसंधान, अंतरिक्ष, चिकित्सा, वन्य जीव और अनेक वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड करने में किया जाता है। अच्छी तस्वीर केवल महंगे कैमरे से नहीं बनती, बल्कि एक अच्छी तस्वीर के लिए सही समय, सही प्रकाश, सही कोण और सही भाव महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कई वर्षों बाद जब हम कोई पुरानी तस्वीर देखते हैं तो केवल चेहरा या स्थान नहीं देखते, बल्कि उससे जुड़ी पुरानी कहानी और भावनाएं हमारे सामने आ जाती है। इसलिए कहा जाता है एक तस्वीर सिर्फ एक दृश्य नहीं होती, बल्कि वो एक याद होती है।

0: आगे बढ़ते हुए हम उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहाँ पर हम बात करते हैं भेंट वार्ता की। और आज का जो विषय है वो है फोटो पत्रकारिता और इसका वैज्ञानिक पक्ष। आज हमारे बीच में मौजूद है हमारे स्टूडियो में रांची के जाने माने फोटोग्राफर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर संजय बोस। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में।
1: धन्यवाद।
0: आप फोटोग्राफर हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फोटोग्राफी की जो शुरुआत है वो कैसे हुई और इससे पहले फोटोग्राफी कैसे होती थी, इसके बारे में हमें बताएं।
1: देखिए, तो फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई ये किसी एक दिन की या किसी एक साइंटिस्ट के इजाद की बात नहीं है। इस पे बहुत दुनिया भर में कई जगहों पर लोग लगे रहे और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोटोग्राफर्स तो थे नहीं, पेंटर्स को इनकी जरूरत महसूस हुई थी। उन्हें लगता था जो किसी बड़े से बिल्डिंग का या किसी खूबसूरत जगह का जो वो फोटो खींचना चाहते हैं उससे वो बहुत रियलिस्टिक तरीके से याद रखना और डिटेल्स को ड्रॉ करना, इसमें दिक्कत आती थी। तो सबसे पहले 500 BC या उससे भी पहले भी कई जगहों पर कोशिश होती थी। एक कैमरा ऑब्स्क्यूरा नाम से एक बड़े चेंबर का निर्माण हुआ और उसमें एक छोटा सा छेद होता था जिससे रोशनी अंदर आती थी और दीवार पर एक प्रोजेक्शन होता था। ये प्रोजेक्शन उल्टा होता था, यानी कि आपका सर पैर की जगह होगा और पैर सर की जगह, ये उल्टा प्रोजेक्शन होगा और लोग उसे देखकर एक ड्राइंग कर लेते थे ताकि उन्हें आगे इस पे डिटेल में काम करना आसान हो जाए। इसकी शुरुआत ऐसे हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि ये जो थोड़े देर के लिए रहता है, जितनी देर तक रोशनी है उसे कुछ देर और टिकाया जाए। तो लोगों ने ऐसे माध्यम के ऊपर काम करना शुरू किया कि ताकि वो जो प्रोजेक्शन रोशनी का बन रहा था दीवार पे वो कुछ ज्यादा समय तक टिके।
0: अच्छा।
1: लोग इस पे काम करते रहे और ये कुछ 1826 में 19 अगस्त अभी कुछ दिन पहले ही गुजरा
0: जी जी,
1: जिस दिन इसे फ्रांस की सरकार ने एक आविष्कार के तौर पे स्वीकार किया और ये आविष्कार था जोसेफ नाइसेफोर नियप्स का, जिन्होंने पहली बार ऐसा एक माध्यम बनाया जो उस पिन होल से जो अंदर जाती हुई रोशनी है उसे कुछ देर तक रिकॉर्ड कर सकता था और वो एक पहला दुनिया का परमानेंट इमेज हुआ पहली बार। तो ये शुरुआत हुई थी कुछ केमिकल प्रोसेसिंग से, जिसके बाद लोगों ने एक ऐसा फोटो खींचा जो देर तक रह जाए। पर इस फोटो को खींचने में आपको बता दूं 8 घंटे का वक्त लगा।
0: और ये फोटो कितनी देर तक मतलब स्थिर अवस्था में रहा था?
1: ये रहा, इसके बाद से इसे परमानेंट फोटो माना जाता
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो आज इसके इमेजेस आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। एक बरामदे की फोटो थी जिसमें कोई इंसान नहीं था, एक फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन था, क्योंकि 8 घंटे तक कोई भी इंसान या जानवर स्थिर नहीं रह सकता। तो ये शुरुआत हुई, पर लोगों को ये समझ में आया कि ऐसा माध्यम जिससे कि रोशनी को इतना देर समय लगता है स्टोर होने में, तो वो काफी नहीं है। लोगों ने इसको इवॉल्व करने की शुरुआत की और बेहतर माध्यम चुनने की शुरुआत की और इस पे काफी काम करते करते कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसे होता था कि जैकब डगवर थे, वो भी फ्रांस के ही थे, उन्होंने इजाद किया कुछ जो फोटो लगभग 15 मिनट में ही आ जाती थी। तो पेरिस शहर का एक फोटो खींचा गया जिस पूरे शहर में रास्ते थे, रास्ते के बाद चारों तरफ उसके मकान, लैंप पोस्ट सब कुछ नजर आ रहा था, पर पूरा शहर खाली दिख रहा था, सिर्फ 2 इंसान दिख रहे थे, एक जो बूट पॉलिश कर रहा था और एक वो बूट पॉलिश करा रहा था। यानी कि इस 15 मिनट के दौरान या 10 मिनट जो भी वक्त लगा रहा हो उस वक्त सिर्फ 2 ही इंसान स्थिर थे, इसलिए उनके तस्वीरें आई और जो पूरा चलता हुआ शहर था उसमें किसी इंसान का, किसी गाड़ी का, किसी घोड़े का
0: फोटो नहीं,
1: कोई फोटो नहीं आ पाया। और इसके बाद इस मीडियम को और इम्प्रूव किया जाता रहा। केमिकल प्रोसेसिंग थी उस वक्त, प्लेट्स लगा करते थे जो आज आपके सेंसर होते हैं आधुनिक कैमरों में, पहले रील हुआ करते थे, उस वक्त प्लेट्स लगते थे, उसमें कोटिंग होती थी और प्लेट को उस एक्सपोजर टाइम के बाद निकाल कर उसको फिर से केमिकल प्रोसेसिंग किया जाता था ताकि वो फोटो दिखे। ये प्रोसेस था, फिर 2 मिनट, फिर कुछ सेकंड, इस तरह से फोटोज के मीडियम में, यानी जो सेंसर आज हम जिसे कहते हैं, उस मीडियम में इम्प्रूवमेंट होता रहा।
0: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फोटो आज हम जिस लेवल में खींचते हैं चंद सेकंडों में, वो पहले घंटों लगा करते थे। तो ये मतलब फोटोग्राफी की जो जर्नी है वो इतनी लंबी है और इस तरह से ये शुरुआत हुई। पहले के जमाने में जब ये शुरुआत हुई थी तो बड़े बड़े कैमरे हुआ करते थे और उसमें बहुत बड़े बड़े सामान भी लगा करते। धीरे धीरे इसका जो साइज है वो छोटा होते चला गया और ये कैमरे अब अत्याधुनिक आकार में डेवलप्ड हो चुके। तो आप चूंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कैमरे के आविष्कार के बाद इस क्षेत्र में कितना परिवर्तन आया, यानी कि हम तकनीकी तौर पर कितना विकसित हो चुके हैं।
1: ये जर्नी ही अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, सभी को जानना चाहिए और अगर फोटोग्राफी सीखना हो और इसके पहलुओं को सीखना हो तो इस डेवलपमेंट को उसी तरह से समझना हो। मैकेनिकल शटर का इजाद जब हुआ तो लोगों ने ये समझ लिया कि एक फिक्स टाइम तक शटर को खुला रखना है, इतने देर तक

0: लाइट को अंदर आने देना है। फिर इसमें चेंज ये हुआ कि आप अलग अलग फोटो को अलग अलग ड्यूरेशन के हिसाब से भी शटर को सेट करने लगे। फिर ये भी शुरुआत हुई कि पहले सिर्फ एक पिन होल छोटा सा छेद हुआ करता था, लोगों ने लेंसेज इम्प्रूव करने शुरू किए। जिस लेंस का काम होता था कि वो कितने एरिया को कवर करेगा, वाइड लेंस, फिर लंबे फोकल लेंथ के लेंसेज भी शुरू हुए। जैसे हम लोगों को पता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसी जैसी जरूरत हो रही थी, लोग उसका इम्प्रूवमेंट करते जा रहे थे, नई चीजों के ईजाद कर रहे थे। पहले फोटोग्राफ्स वार फोटोग्राफी, तो लड़ाई के दौरान फोटोग्राफी जब हो रही थी तो लोगों को इतने बड़े बड़े कैमरे लेके जाने में काफी दिक्कत आती थी, जिसमें प्लेट्स लगते थे, प्लेट्स में केमिकल कोटिंग होती थी, वो भी वेट कोटिंग होती थी, भीगा हुआ कोटिंग होता था। तो लोगों ने ड्राई कोटिंग शुरू किया। फिर लोगों को ये लगा कि ऐसे कुछ प्लेट्स जो कुछ स्टोर कर सकें, इसकी शुरुआत हुई। और इसके बाद जब जंग में फोटोग्राफी की बात आती है, तो वहां पर ज्यादातर ऐसे फोटोग्राफ्स खींचे गए जिसमें डेड बॉडीज थी, क्योंकि बॉडीज हिलेंगी नहीं। और ये भी था कि जो सुनसान जगह था जिसमें गोले पड़े हुए हैं बड़े बड़े, वो सब आपको दिखेंगे, अभी भी नेट पे दिख जाएंगे। इस तरह की फोटोग्राफी की शुरुआत हुई। लेकिन जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता गया, लोग उस मीडियम को और बेहतर करते गए, रील का इजाद हो गया, नेगेटिव्स बनने लगे, उसकी भी साइज छोटी हो गई, तो 35 mm जो रील्स बनने लगे, तो वर्ल्ड वार 1 और 2 में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ फोटोग्राफी का। इसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए कि लोग आसानी से कैमरा लेकर कहीं भी जा सकते थे, दौड़ते भागते रह सकते थे।
1: जो रील की आप बात कर रहे हैं, इसको बनने में कितना समय लग गया, मतलब लोगों के पास ये बनकर आने में, क्योंकि उसके पहले तो कैमरे ले जाना, मूवमेंट करना बहुत मुश्किल था।
0: 1888 के आसपास में कोडैक कंपनी की स्थापना हुई, इसे जॉर्ज ईस्टमैन ने स्थापित किया था 1888 में, और उन्होंने पहली बार में कैमरे को आम लोगों के हाथ में देने का फैसला किया, और इसीलिए उन्होंने एक स्लोगन दिया, यू प्रेस द बटन, वी डू द रेस्ट। इतनी सारी केमिकल प्रोसेसिंग, इतने कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, आप हमसे ये कैमरा खरीद के ले जाइए, उसमें 100 मैगजीन्स हैं, आप इतने फोटो खींच सकते हैं, और फिर कैमरे को हमारे कंपनी में वापस कुरियर कर दीजिए, हम आपको फोटोज भेज देंगे। ये शुरुआत हुई उस समय की, जब से आम लोगों के हाथ में कैमरा आना शुरू हुआ, जिसमें लोगों को इतने सारे केमिकल प्रोसेसिंग की जानकारी ना भी हो तो वो अपने फैमिली की, अपने फैमिली हिस्ट्री की, आसपास की फोटोज खींच सकते हैं। और कुछ समय के बाद इन्होंने जो फ्लेक्सिबल नेगेटिव्स है, रील्स है, इसका भी डेवलपमेंट किया, और इसके बाद से कोडैक पूरे दुनिया में छाया रहा लंबे समय तक।
1: हम छोटे कैमरे और बड़े कैमरे, आज के समय में हर तरह के कैमरे देखते हैं, छोटे से लेकर बड़े लेंसेज का क्या इस्तेमाल और क्या रोल रहता है कैमरे में, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
0: जब हम लोग अच्छी फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं आपका कैमरा बड़ा अच्छा है। हम लोग मन ही मन हंसते हैं इस बात के लिए कि हो सकता है वो मार्केट में सबसे महंगा कैमरा नहीं हो
1: जी,
0: लेकिन अगर हमारी फोटोग्राफी आपको अच्छी लगती है, तो इसमें एक बड़ा हाथ उन लेंसेज का होता है, जिसे सही वक्त पे सही तरीके से यूज किया जाए। क्योंकि हम लोग सिर्फ कैमरा नहीं खरीदते, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स लेंसेज का भी एक प्रॉपर स्टॉक रखते हैं, उनकी जरूरतों के मुताबिक। हर फोटोग्राफी के लिए अलग अलग तरह के लेंसेज की जरूरत होती है। ऐसे जनरल लेंसेज हम लोग ले लेते हैं, कुछ जूम रेंज के होते हैं, जैसे क्रॉप्ड सेंसर, जो छोटे सेंसर्स होते हैं, उसमें 18-135 या 18-55 इस तरह के लेंसेज लेंगे, जिसमें कि आप काफी वाइड एरिया, अपने सामने के 8-10 लोगों का फोटो भी खींच सकते हैं, या एक अच्छा खासा लैंडस्केप खींच सकते हैं, पूरे पहाड़ी का फोटो खींच सकते हैं, और उसी को जूम करके आप आगे ले सकते हैं। तो इसका मतलब हर फोटोग्राफी के लिए लेंसेज की अलग अलग जरूरत हो सकती है।
1: अगर कोई नेचर फोटोग्राफी कर रहे हैं, वो किस तरह के लेंस का इस्तेमाल करते हैं कि उनकी फोटोज थोड़ी बहुत अलग आती है, डिफरेंट आती है, और जैसे किसी को नजदीक और दूर की चीजों को लेना हो, तो इसमें किस तरह के लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है?
0: जैसे देखिए, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुझसे 3 से 4 फीट की दूरी पे
1: जी।
0: थोड़ा सा मैं पीछे हट जाऊंगा, आपके लिए एक वाइड लेंस से भी मेरा फोटो आ सकता है, पर वाइड लेंस आप समझ लीजिए अगर 24 mm का लेंस है, तो आपकी फोटो तो दिख जाएगी, लेकिन हो सकता है आपके चेहरे के नजदीक से अगर मैं फोटो खींचूं, तो आपकी नाक थोड़ी बड़ी सी दिखेगी, आंखें उसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि मैं हायर फोकल लेंथ का अगर यूज करूं, तो इसमें पर्सपेक्टिव का फर्क हो जाएगा। मैं थोड़े पीछे से जाकर 85 mm के लेंस से अगर आपका फोटो खींचूंगा, तो आपका चेहरा बड़ा प्रॉपर सा दिखेगा।
1: यानी कि लेंस का इस्तेमाल आप सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं
0: हमेशा।
1: एक अच्छे फोटोग्राफर को फोटोग्राफी करने के लिए उनके पास किस तरह के लेंस होने बहुत आवश्यक है?
0: देखिए, अगर आप कई तरह की फोटोग्राफी करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके पास एक वाइड लेंस होना चाहिए कम से कम, जो 24 mm से थोड़ा वाइड भी हो, तो इसमें आप आर्किटेक्चर और बहुत सारे नेचर फोटोग्राफी में भी कई तरह से फोटोज आप खींच पाएं। एक ऐसा लेंस होना चाहिए जो मिड रेंज का हो, जैसे आप

0: 24-70 या 24-105 इस तरह का एक जूम लेंस आपके पास हो जिसमें आप कई सारे फोटोग्राफ्स को आप कवर कर पाएंगे, और एक लेंस आपके पास इससे हायर फोकल लेंथ का अगर हो तो जिससे आप दूर की चीजों का भी आसानी से अच्छे से कंपोजिशन के साथ फोटो खींच सकते हैं। तो ये तीन तरह के लेंसेज आपको चाहिए एटलीस्ट।
1: हम लेंस की बात करें तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये मिररलेस कैमरा क्या होता है।
0: पहले मिररलेस कैमरा समझने से पहले समझना पड़ेगा कि आखिर मिरर क्या है। तो जब फोटोग्राफी की शुरुआत की बात तो मैंने आपको बता ही दी, फिर धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा कि हम लोग जिस फोटो को खींचने से पहले देखते हैं और फिर खींचने के बाद देखते हैं, इसमें से थोड़ा सा फर्क होता था, क्योंकि जो पिन होल जिससे लाइट एंटर करता था और हम लोगों के देखने का व्यू फाइंडर उससे थोड़ा ऊपर हुआ करता था। तो इसे एक जैसा करने के लिए एक मिरर का इस्तेमाल हुआ, जो मिरर लाइट को ब्लॉक भी करता था, पीछे शटर भी होता था, और उस मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता था और ऊपर पेंटाप्रिज्म के थ्रू वो व्यू फाइंडर से लोग देखते थे। लेकिन जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होने लगा, ये SLR कैमरा हुआ करता था, इसे सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कहते हैं, जिसे आप DSLR के नाम से भी जानते हैं, डिजिटल होने के बाद वो DSLR, और वो लंबे समय तक चलता रहा, आज भी चल रहा है, बहुत अच्छी।
1: तो ये दोनों में क्या फर्क है, SLR और DSLR में?
0: बस डिजिटल हो जाने के बाद से DSLR हो गया, उससे पहले ये जब एनालॉग कैमरा हुआ करता था तो वो SLR हुआ करता था। अब इनमें से मिरर को हटाकर, पेंटाप्रिज्म को हटाकर डायरेक्ट शटर आ गया, आपका लाइट एंटर करता है सीधा शटर और शटर हटते ही सीधे सेंसर पे पहुंचता है। तो ये मिरर हट जाने से मिररलेस हो गया। आपका मोबाइल कैमरा भी मिररलेस कैमरा है, और ढेर सारे दूसरे एक्शन कैमरा देखते हैं वो सब भी मिररलेस कैमरा ही होते हैं।
1: चलता फिरता हुआ आदमी, हमें उसकी फोटो लेनी है और उस व्यक्ति की फोटो अच्छी आए, इसमें शटर का कितना रोल रहता है और शटर क्या है इसके बारे में बताएं।
0: इसका अगर मैं फोटोग्राफर दोस्तों को मैं कुछ सलाह देना चाहूं तो सबसे आसान तो यह है कि आप अपने शटर स्पीड को काफी तेज कर लें आपकी गति के मुताबिक। अगर आप आमतौर पर चल के जा रहे हैं तो एक स्पीड होगा 120 या इस तरह का। अगर आप तेजी से दौड़ रहे हैं, आपका हाथ भी मूव कर रहा है, पैर भी मूव कर रहा है, गर्दन भी इसके साथ हिल रहा है, तो आपकी शटर स्पीड और तेज होनी चाहिए, 500 के आसपास इस तरह का हो जाएगा। उड़ती हुई चिड़िया का फोटो खींचना चाहे तो हम लोग अक्सर 1000 का शटर स्पीड रखते हैं। अब ये जो 1000, 500, 100, ये मैं क्या कह रहा हूं, अगर कुछ दोस्तों को ये ना पता चले तो उन्हें मैं बता दूं, एक सेकंड का इतना फ्रैक्शन होता है। एक सेकंड को अगर 100 हिस्से में तोड़ते हैं तो 1/100 का वो शटर स्पीड होता है, और एक सेकंड को 1/1000 का मतलब होता है एक सेकंड का 1000वां हिस्सा। इतने कम समय के लिए आपका शटर खुलता है और सेंसर में लाइट एंटर करता है। ये तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग और भी कुछ करते हैं, अक्सर मजे के लिए काम करते हैं, अगर चलती हुई बाइक है, हम लोग रास्ते के किनारे खड़े हैं तो थोड़ा लोअर शटर स्पीड में हम लोग रखते हैं, 30 में, कभी 60 में, और बाइक वाले के स्पीड के साथ अपने कैमरे को भी मूव करते हैं। इसे पैनिंग फोटोग्राफी कहा जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, उसमें बाइक बिल्कुल रुका हुआ दिखेगा और उसके पीछे का मोशन ब्लर दिखेगा। ये भी बहुत सारे लोग बहुत शौक से इस तरह की फोटोग्राफी करते हैं।
1: यानी कि इन सभी चीजों का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन फोटो को तैयार किया जाता है। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है फोटोग्राफी और इसके वैज्ञानिक पक्ष के बारे में, और हमारे जितने भी सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें इस बात से बहुत सारा ज्ञान और फायदा जरूर होने वाला है। आप इतना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखें।

0: तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और
1: आज हम जिस महान वैज्ञानिक की बात करने वाले हैं, भारत के वो एक ऐसे महान वैज्ञानिक और दूरदर्शी व्यक्ति हैं जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन के बारे में। हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन का जन्म 24 अक्टूबर सन 1940 को केरल राज्य में हुआ। बचपन से ही ये अत्यंत मेधावी और जिज्ञासु छात्र रहा करते हैं। विज्ञान और गणित में इनकी विशेष रुचि थी। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद भौतिकी विषय में स्नातक के बाद परा स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने खगोल भौतिकी में कुछ शोध किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया। इनका करियर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से गहराई से जुड़ा रहा। इन्होंने इसरो में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और सन 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष भी रहे। इनके नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की और विश्व के सामने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। डॉक्टर कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण उपग्रह मिशन सफलतापूर्वक पूरे हुए। इन्होंने विशेष रूप से रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इन उपग्रहों के माध्यम से कृषि, जल प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में भारत को अत्यधिक लाभ मिला है। आज भारत प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और आपदाओं से बचाव में जो सफलता हासिल कर चुका है, उसमें इनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने भारतीय संचार उपग्रह कार्यक्रम को भी मजबूती प्रदान की। दूर दराज क्षेत्रों में संचार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में उपग्रह तकनीक का उपयोग इनके कार्यकाल में काफी प्रभावी रहा। इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान को आम जनता के जीवन से जोड़ने पर विशेष बल दिया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नीति निर्माता भी बनकर कार्य करते थे। ये भारत के संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे और इन्होंने देश के विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। नई शिक्षा नीति की बात करें तो नई शिक्षा नीति के निर्माण में इनकी अध्यक्षता वाली समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे जिनसे शिक्षा प्रणाली को आधुनिक और समावेशी बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनके कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित भी किया। डॉक्टर कस्तूरी रंगन का जीवन हमें ये सिखाता है कि यदि हमारे भीतर दृढ़ निश्चय, मेहनत और देश

0: प्रति समर्पण हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो अब बारी है खोज और आविष्कार की। तो चलिए खोज और आविष्कार में हम आपको आज बताते हैं कंपास के बारे में और ये काम कैसे करता है इसके बारे में। तो कंपास की कहानी बहुत पुरानी है और कंपास प्राचीन चीन में लगभग 200 ईसा पूर्व के हान राजवंश के समय से कार्य करता आ रहा है। उस दौर में चीनी वैज्ञानिकों ने एक अनोखा यंत्र बनाया जिसे सीनान कहा जाता था। यह एक तरह का प्रारंभिक कंपास के रूप में जाना जाता था जो चुंबकत्व के सिद्धांत पर काम करता था। सीनान एक चम्मच के आकार का यंत्र था जो चुंबकीय लोहे के ऑक्साइड से बनाया गया था। इसे एक चिकने तांबे के आधार पर रखा जाता था जहां यह स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। इसकी खासियत थी कि चम्मच हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती थी क्योंकि यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित हुआ करती थी। लेकिन उस समय इसका उपयोग जहाजों के लिए नहीं किया जाता था बल्कि फेंगशुई, भू वास्तु और ज्योतिषीय गणनाओं के लिए किया जाता था। यह एक तरह से प्रकृति और मानव के बीच संबंध को समझने का प्रतीक भी माना जाता था। इसके बाद के वर्षों में बात करें तो कंपास का असली विकास तब हुआ जब चीनी नाविकों ने इसे समुद्री यात्राओं के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। कंपास किसी एक व्यक्ति का आविष्कार नहीं माना जाता है बल्कि कई संस्कृतियों और वैज्ञानिकों ने सामूहिक प्रयास करके इसे बनाया है। कंपास का प्रभाव केवल नौवहन तक सीमित नहीं रहा, इसने 15वीं और 16वीं शताब्दी के महान खोज युग को जन्म दिया। क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन जैसे खोजकर्ताओं ने कंपास की मदद से समुद्र पार किए और नए महाद्वीपों को और व्यापारिक मार्गों की खोज की। इसने वैश्विक व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वैज्ञानिक प्रगति को भी गति देने का काम किया। आज के दौर में भले ही हमारे पास जीपीएस और अत्याधुनिक नौवहन तकनीकें हो गई हैं लेकिन कंपास की सादगी और विश्वसनीयता आज भी इसे खास बनाती है। यह बिना बिजली, बिना बैटरी के काम करने वाला यंत्र है और आपातकालीन परिस्थितियों में आज भी लोग इस पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। आज कंपास जितना सरल माध्यम से हमारे बीच में मौजूद है उतनी ही सटीकता से ये रास्ता बताने का और आज बहुत सारे क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आज हमने ढेर सारी बातें आपसे कर ली, ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा कर ली और अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है। तो जाते जाते बस हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि बरसात का सीजन है, आप घर से बाहर जब भी निकले तो अपने साथ पूरी सुरक्षा के साथ बाहर निकले और खुद को सुरक्षित रखें। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा, अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत, वाचन एवं सहयोग था बसंत कुमार का और प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं, आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे शाम 5:00 और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। औद्योगिक प्रसारण आप सुनेंगे कार्यक्रम श्रमिक लोक शाम 5:30 पर, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, हुनर से पहचान, कारीगर को सम्मान, पर्यावरण बचाओ भविष्य सजाओ और लखपति दीदी योजना। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। और शाम 6:00 एक बार फिर से आप सुन सकेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

शाम 6:02 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसके अंतर्गत आज चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे। आज की बात में आप सुनेंगे धान में संतुलित उर्वरक एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों का उपयोग। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विजय पाल भदाना, और कुछ कृषि गीत भी हम आपको आज सुनवाएंगे। और नई उम्र की नई फसल में आज आप महिला किसान से बातचीत सुनेंगे। किसान वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगे प्रभु शरण।

0: 6:30 पर कार्यक्रम हमारी दुनिया, जिसमें आज चर्चा होगी छोटा परिवार विकास का आधार। हिंदी वार्ता भी आज आप सुनेंगे। वार्ता का विषय होगा बच्चों को स्वावलंबी बनाए। वार्ताकार होंगी सुगंधा विहगम और प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा शाम 7 बजे और 7:11 पर जिले में आजकल। आदिवासी अखड़ा, ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे 7:15 से। आज का ये कार्यक्रम होगा संताली भाषा में, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व मच्छर दिवस और धान की फसल में लगने वाली बीमारियां और बचाओ। कार्यक्रम आदिवासी अखड़ा के प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे। श्रोताओं, आज गुरुवार है और आज के दिन आप सुनते हैं संस्कृत कार्यक्रम सुर भारती, जिसमें आज आप सुनेंगे संस्कृत वार्ता। वार्ता का विषय होगा विज्ञान और आध्यात्म। वार्ताकार होंगे दिव्य शानु पांडे। समय रहेगा 7:45। रात 8 बजे हम आपको ले चलेंगे फिल्मी गीतों की दुनिया में। कार्यक्रम होगा रजनीगंधा और 8:30 पर कार्यक्रम सुर्खियों में। समाचारों का समय होगा 8:45 से। पहले आप सुनेंगे समाचार संध्या, 9 बजे News@9 और 9:15 पर उर्दू में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10 बजे आप सुनेंगे यादों से भरे चंद खूबसूरत गाने। कार्यक्रम होगा सुनहरी यादें। इस कार्यक्रम में आज आपके साथ होंगी रौनक जहां। और 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। कलाकार होंगे शैलेंद्र कुमार पाठक। इनसे आज आप सुनेंगे राग जोग में आलाप और धमार गायन। और 11 बजे से आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और 11:10 पर हमारी आज की सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। तो ये थे कार्यक्रम विवरण। आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम।
1: स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
2: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी सुनने वालों को मेरा यानी रौनक जहां का प्यार भरा नमस्कार।

और अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, संजीव दर्शन के संगीत निर्देशन में। गीत आनंद बख्शी का फिल्म है कितने दूर कितने पास, और इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दयावान इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसे लिखा था अजीज कैसी ने और संगीत बद किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत में आवाजें आपने सुनी पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की। और अब सुनिए आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश इतिहास फिल्म से, गायक कलाकार कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल, गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन।

0: इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब संपन्न होता है। नमस्कार, ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। शाम के 5 बज चुके हैं, आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत वापस काम पर लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 15 सितंबर तक जवाब मांगा है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने वंदे मातरम और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। श्री सेठ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा महत्वपूर्ण बहसों से भागती रही है और राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा बिना किसी तर्क के हंगामा खड़ा करना और झूठ फैलाना है। रामगढ़ पुलिस ने आपराधिक कांडों की त्वरित और पारदर्शी जांच के लिए आज प्रिज्म नामक एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में शुरू की गई इस डिजिटल पहल के जरिए एफआईआर दर्ज होने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने तक अनुसंधान के हर चरण की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। धनबाद स्थित झरिया के पथरडीह कोल वॉशरी में आज काम के दौरान वेल्डिंग मशीन फटने से 3 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर है। आरके कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन कार्य के दौरान हुए इस हादसे के गंभीर घायलों को धनबाद के SNMMCH रेफर किया गया है। नीति आयोग के सलाहकार अनुराग सिंह ने आज साहिबगंज में आकांक्षी प्रखंड और जिला कार्यक्रम के तहत संचालित विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य मुख्य निष्पादन संकेतकों की समीक्षा की। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:03 हो चुके हैं। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारी आज की इस संध्याकालीन सभा में। आज की इस संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोता दोस्तों की हम सफर हूँ मैं संगीता। आइए श्रोताओं करते हैं आज के संध्याकालीन सभा की शुरुआत और आप सभी को देते हैं जानकारी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा दे दें। अब से कुछ ही देर बाद श्रोताओं, यानी कि संध्या के 5:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता को हमने आपके लिए सजाया है युगल गीतों से। संध्या के 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। संध्या 6 बजे का प्रसारण समय रहेगा आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचारों का, और संध्या के 6:02 पर हम आपके साथ होंगे बांग्ला कार्यक्रम सात रंग के साथ। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे संथाली अखड़ा।

संध्या के 7 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार। यहीं से प्रसारित जिले में आजकल का प्रसारण होगा संध्या 7:10 पर। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का प्रसारण होगा संध्या 7:15 पर। संध्या के 7:30 पर हम आपके साथ होंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। रात्रि के 8 बजे आप आनंद लेंगे फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। 8:45 पर प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को जो कि प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। गजलों के कार्यक्रम महफिल का आनंद आप ले सकेंगे रात्रि के 10 बजे और 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 बजे आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और रात्रि के 11:10 पर हमारे आज के सभा समापन की उद्घोषणा होगी। तो श्रोताओं, ये थी हमारे यहाँ से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:06 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। कार्यक्रम गुलदस्ता सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार जोहार। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में श्रोताओं, हम आपको सुनवाने जा रहे हैं युगल गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला युगल गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। आवाजें गायक कलाकार लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की।

श्रोताओं, गीतकार देव कोहली के लिखे हुए और राम लक्ष्मण की धुन से सजे हुए इस गीत को आपने सुना गायक कलाकार लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वरों में फिल्म मैंने प्यार किया से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

क्या आप तनाव, चिंता, उदासी, मानसिक परेशानी या आत्महत्या के विचारों से जूझ रहे हैं? याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। मदद के लिए संपर्क करें रिनपास कांके रांची।

0: जी। पिछले 100 वर्षों से मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान, जहां अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श और नशा मुक्ति का निशुल्क उपचार उपलब्ध है। डायल करें 24/7 हेल्पलाइन नंबर 9471136697, टोल फ्री नंबर 1449 या 1800345406 पर।
1: समय पर मदद लें, स्वस्थ मन बेहतर जीवन पाएं। रिंपास एवं झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इस छोटे से विराम के बाद। आकाशवाणी चायबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गुलदस्ता का। आज के कार्यक्रम गुलदस्ता में हम आपको सुनवा रहे हैं युगल गीत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला युगल गीत फिल्म खामोशी से। आवाज़ी हैं गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की। बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत की धुन दी है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, फिल्म खामोशी के इस गीत के बाद आइए कार्यक्रम को अंजाम की ओर लिए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी युगल गीत। गायक कलाकार एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक के युगल स्वरों में फिल्म साजन से। इस गीत को लिखा है समीर ने और धुन है नदीम श्रवण की।

श्रोताओं, गायक कलाकार लता मंगेशकर और माफ़ कीजिएगा गायक कलाकार अलका याग्निक और एस पी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वरों में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म साजन से। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं समाप्त होता है। आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए युगल गीत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये पहला गीत हमने लिया है फिल्म सौदागर से। आवाजें हैं गायक कलाकार कविता कृष्णमूर्ति, मनहर दास, सुखविंदर सिंह और साथियों की। बोल लिखे हैं आनंद बक्सी ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

गायक कलाकार कुमार सानू, सुदेश भोसले, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में ये गीत आपने सुना फिल्म आंखें से। इस गीत के बोल लिखे थे बापी लहरी ने और धुन थी इंदिवर की। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के से। आवाजें हैं गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो की। इस गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और धुन है जतिन ललित की।

कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं आइए सुनते हैं गायक कलाकार अलका याग्निक और उदित नारायण के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म कसूर से। बोल समीर के हैं और धुन है नदीम श्रवण की।

श्रोताओं, फिल्म कसूर के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का चायपासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6 बजने ही वाले हैं। वक्त है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित मुख्य समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत वापस काम पर लेने का निर्देश दिया है। झारखंड विधानसभा की याचिका समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज लातेहार परिसदन में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बगोदर विधायक नागेंद्र महतो और मांडू विधायक निर्मल महतो ने संयुक्त रूप से की। इस दौरान समिति ने स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास

0: विद्युत, पेयजल, राजस्व और खनन सहित विभिन्न सरकारी विभागों के तहत चल रही योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के तेलोडीह पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में तेलोडीह पेट्रोल पंप से फॉरेस्ट कॉलोनी तक पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। जमशेदपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंदगांव थाना प्रभारी मनीष कुमार को 15,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बंदगांव क्षेत्र में अफीम तस्करी से जुड़े एनडीपीएस मामले में एक आरोपी का नाम हटाने की एवज में यह रिश्वत मांगी थी। पलामू में बाढ़ से किताबें गंवा चुकी पांचवी की छात्रा कृतिका कुमारी की पढ़ाई अब नहीं रुकेगी। उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने 24 घंटे के भीतर कृतिका को नई किताबें, कॉपियां और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए हैं ताकि उसका नवोदय में पढ़ने का सपना पूरा हो सके। और मौसम विभाग ने राज्य में 23 और 24 अगस्त को गरज चमक के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची से प्रसारित मुख्य समाचार। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:02 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं बांग्ला कार्यक्रम सात रंग।

अभी आपने सुना बांग्ला कार्यक्रम सात रंग। आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 6:30 होने वाले हैं। वक्त है संथाली कार्यक्रम का, तो आइए सुनते हैं संथाली कार्यक्रम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम संथाली अखड़ा। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी के रांची केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: जन जन तक पहुंचे पैगाम। डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
6: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई रोक। अभ्यर्थियों को तुरंत काम पर वापस लेने का निर्देश। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेपीएससी के सफल उम्मीदवारों ने मनाया जश्न। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों में भी जगी न्याय की उम्मीद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक और कानूनी स्तर पर लड़ेंगे लड़ाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। नीति आयोग के सलाहकार ने साहिबगंज में आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की समीक्षा की। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। और राज्य में वर्षा की कुल कमी घटकर मात्र 10% रही। पश्चिमी सिंहभूम और रांची समेत 7 जिलों में सामान्य से अधिक पानी बरसा। 23 और 24 अगस्त को वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत वापस काम पर लेने का निर्देश दिया है। जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सफल अभ्यर्थियों में जश्न का माहौल है। इस ऐतिहासिक फैसले को उन्होंने न्याय की जीत बताया है। इस आदेश के बाद रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन के बाहर आंदोलन कर रहे जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों में भी न्याय की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं।
1: हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं और न्यायालय से न्याय की पूरी उम्मीद है कि हम लोगों को भी न्याय मिलेगी। 11-13 जेपीएससी वालों को जैसे मिला है तो हम लोगों को भी जरूर मिलेगी। तब तक हम लोग अपना जो अभी प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के खनिज और खनन संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी स्तर पर लड़ाई शुरू करने की घोषणा की है। रांची के हरमो स्थित सोहराय भवन में झामुमो की विस्तारित बैठक की अध्यक्षता करने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों से बिना किसी सलाह मशविरा के ये निर्णय लिया है, जिसका सीधा असर झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम जनता पर पड़ेगा।
2: केंद्र सरकार जो विकसित राज्य है, जो सक्षम वर्ग है, उन्हीं के प्रति इनका जवाबदेही ज्यादा बनता है। आदिवासी, दलित, पिछड़े के प्रति इनकी संवेदनाएं कहीं से भी नहीं झलकती। आज जब एक पिछड़ा राज्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर के एक अहम भूमिका निभाता है, आज उसी राज्य का हक अधिकार समाप्त कर अपनी जेबें भरने की प्रयास में।
0: इधर एमएमडीआर बिल विवाद पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 1956 का खनिज कानून नेहरू जी ने बनाया था। उन्होंने चेताया कि अत्यधिक सेस लगाने से राज्य का कोयला महंगा होगा और उद्योग अन्य राज्यों में चले जाएंगे, जिससे झारखंड आर्थिक रूप से बदहाल हो जाएगा।
3: झारखंड के लोगों को विस्थापन और पलायन का शिकार नहीं होना, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कानून बनाया। अब गुलान कर लें या लड़ाई कर लें या झगड़ा कर लें तो इसके बाद क्या होने वाला है, क्या फर्क पड़ेगा? रॉयल्टी भी बंद हो जाएगी और सेस भी बंद हो जाएगा। तो इनके पास जो है अपने गाड़ी में डीजल और पेट्रोल भराने के लिए भी पैसा नहीं, इसके बाद न रॉयल्टी मिलनी न सेस मिलना है। इसके बाद कंगाल होने के अलावा हेमंत सोरेन जी झारखंड वासियों को और क्या करें।
0: आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने झारखंड को मिनरल बैरिंग लैंड पर सेस राशि लेने का अधिकार देने की मांग की है। उन्होंने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को पत्र लिखकर कुछ निश्चित शर्तों के साथ यह अधिकार देने का आग्रह किया है, ताकि इस राशि का उपयोग खनन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और युवाओं के विकास पर किया जा सके।
4: केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम के तहत संशोधन लाया है। भारत सरकार से अनुरोध है कि सिर्फ खनिज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए राशि का विशेष योजनाओं चलाने का शर्त के साथ राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करें, तो निश्चित रूप से यह संसाधन हमारे जीवन में अंतर लाएंगे।
0: नीति आयोग के सलाहकार अनुराग सिंह ने आज साहिबगंज में आकांक्षी प्रखंड और जिला कार्यक्रम के तहत संचालित विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य मुख्य निष्पादन संकेतकों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने वंदे मातरम और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। श्री सेठ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा महत्वपूर्ण बहस से भागती रही है और राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा बिना किसी तर्क के हंगामा खड़ा करना और झूठ फैलाना है।
1: जब देश में कानून बन गया है, और हद तो तब हो गई जब राष्ट्रगीत बज रहा हो और सोनिया गांधी आग बुलबुला, कैसे कैसे क्या एक्ट था, क्या देशद्रोह नहीं है, क्या देश के खिलाफ नहीं है, क्या उनको देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्यों भाई, आप संविधान से ऊपर हो? हाँ, आप तो समझते ही हो कि देश से ऊपर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी से ऊपर मैं, यही तो चरित्र है राहुल गांधी का। न किसी संविधानिक एजेंसी को मानते हैं, न चुनाव आयोग।
0: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा के साथ मनाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रामगढ़ पुलिस ने आपराधिक कांडों की त्वरित और पारदर्शी जांच के लिए आज प्रिज्म नामक एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के नेतृत्व में शुरू की गई इस डिजिटल पहल के जरिए FIR दर्ज होने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने तक अनुसंधान के हर चरण की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी।
2: हमें डिजिटल रिमाइंडर का भी एक मैकेनिज्म है जो हम इस समय समय पे बताएगा कि किस कांड में कितना अवधि अभी तक चार्जशीट का हमें बचा है। इसके अलावा जो पुराने लंबित कांड भी है, जो मान लेते हैं 2 साल पुराने लंबित कांड है, 3 साल पुराने लंबित कांड है, उन कांडों की भी प्रभावी समीक्षा इसके माध्यम से जाएगी और ताकि लंबित कांडों में भी आने वाले दिनों में कमी आएगी।
0: गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र की तेलोडी पंचायत में जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। सड़क निर्माण की मांग को लेकर पंचायत वासियों ने मुखिया शब्बीर आलम के नेतृत्व में तेलोडी पेट्रोल पंप से फॉरेस्ट कॉलोनी तक पैदल मार्च निकाला और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। धनबाद स्थित झरिया के पाथरडीह कोल वॉशरी में आज काम के दौरान वेल्डिंग मशीन फटने से 3 मजदूर घायल हो गए, जिनमें 2 की स्थिति गंभीर है। RK कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधीन कार्य के दौरान हुए इस हादसे के गंभीर घायलों को धनबाद के SNMMCH रेफर किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य में 23 और 24 अगस्त को गरज चमक के साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। 23 अगस्त को पलामू, गढ़वा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम सहित 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 19 अगस्त तक राज्य में 633.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। JPSC और फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने के सरकारी आदेश पर झारखंड हाई कोर्ट ने लगाई रोक। अभ्यर्थियों को तुरंत काम पर वापस लेने का निर्देश। हाई कोर्ट के आदेश के बाद JPSC के सफल उम्मीदवारों ने मनाया जश्न। JSSC CGL अभ्यर्थियों में भी जगी न्याय की उम्मीद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, खनिज संशोधन विधेयक के खिलाफ लोकतांत्रिक और कानूनी स्तर पर लड़ेंगे लड़ाई। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पलटवार। नीति आयोग के सलाहकार ने साहिबगंज में आकांक्षी जिला कार्यक्रमों की समीक्षा की। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। और राज्य में वर्षा की कुल कमी घटकर मात्र 10% रही। पश्चिमी सिंहभूम और रांची समेत 7 जिलों में सामान्य से अधिक पानी बरसा। 23 और 24 अगस्त को वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला खरसावां जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता।
1: सरायकेला खरसावां जिले में करीब 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसल के तहत धान की खेती हो रही है। इस वर्ष किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद है। आत्मा परियोजना के सहायक निदेशक विजय कुमार सिंह ने बताया कि जुलाई के बाद अगस्त में भी अच्छी बारिश हो रही है, इससे धान की फसल को काफी फायदा हो रहा है। आत्मा परियोजना के सहायक निदेशक विजय कुमार सिंह ने कहा कि
2: इस वर्ष जो हम लोग का कवरेज है वो तकरीबन 90% तक कवर कर चुके हैं। 10% ही बचा हुआ है कुछ क्षेत्रों में जहाँ की रोपा हम लोग का धान का बचा हुआ है। और रेनफॉल का स्टेटस तकरीबन जुलाई में भी हम लोग को सरप्लस रेनफॉल मिला, जिसके कारण ये हम लोग अचीवमेंट कर पाए हैं। और अगस्त में भी जो रेनफॉल अभी तक का स्टेटस है वो तकरीबन बिल्कुल अनुकूल है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारा खरीफ है इस बार वो अच्छा होगा, किसानों के लिए भी अच्छा है और इस जिले के लिए अच्छा ही होगा।
1: ईचागढ़ प्रखंड के गोरांग कोचा में जिला परिषद के तहत बस स्टैंड का निर्माण चल रहा है। निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत मिली है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में कई खामियां पाई। उपाध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में विभागीय अभियंता से 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने कहा कि
3: निरीक्षण करने गए हम, देखे गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा है।

0: मैंने जिला परिषद के जो जिला अभियंता है उसको लिखित रूप से वो अवगत किया है कि ये जांच करके हम लोग को कैसे कार्य हो रहा है, वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जांच रिपोर्ट 7 दिन के अंदर मांगे है।
1: बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने कहा कि बारिश के दौरान लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। इस मौसम में मलेरिया, टाइफाइड समेत कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से आसपास साफ सफाई रखने, दूषित पानी से बचने और बुखार या अन्य लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने कहा कि
2: बरसात का मौसम है और लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते बीमारियां भी बढ़ती है। सामान्य रूप से जो बीमारी बढ़ती है उसमें मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है और इंटेरिक फीवर जिसको कि टाइफाइड कहते हैं वो भी ज्यादा बढ़ता है। सर्दी खांसी तो कॉमन है ही और इस मौसम में सर्दस की घटना भी बहुत ज्यादा होती है। इन सारे चीजों से बचाव बहुत जरूरी है। कम से कम खान पान का ही देखभाल करना होगा कि बासी खाना नहीं खाएं, ताजा ही खाएं, मसाला तेल का कम उपयोग करें, खाना को ढक करके रखें, स्वच्छ पानी का उपयोग करें।
1: सरायकला खरसावां जिले में मलेरिया की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। राज्य स्तर से जिले को पर्याप्त मात्रा में मलेरिया जांच किट उपलब्ध कराई जा रही है। सिविल सर्जन ने सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को मलेरिया की जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकला खरसावां।
3: अभी आप सुन रहे थे सरायकेला खरसावां जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। करते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है रेलवे रोड गंजू डबरा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख और अब्दुल सत्तार अंसारी ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है लालपुर मारो से, और हमें खत लिखा है कीर्ति कुमार ध्रुव, सतीश विनय ध्रुव, निम्मी पम्मी ध्रुव और रितेंद्र कुमार ध्रुव ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रेलवे कॉलोनी बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार के सभी लोग। इचलकरण जी महाराष्ट्र से अपनी फरमाइश हम तक भेजने वाले श्रोता हैं बसंत जी हजारे, प्रमोद हजारे, महेश हजारे, आदित्य हजारे और मितांशु हजारे। बठिंडा रोड डबावली के राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। दादरी गेट भिवानी के कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म आंधी का ये गीत, जिसे आवाज़ें दी हैं गायक कलाकार किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन है राहुल देव वर्मन की। और फिल्म आंधी के इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं ग्राम पोंडा काटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती सुरेन, सुहानी देवी, संजय सुरेन, पातुर बांकीरा, डोली बांकीरा और रघुनाथ चरहट। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है सरायकिला पाड़ापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से, और हमें खत लिखा है शिवम, शिवाजी मुंडरे, सुरामणि मुंडरे, हीरामणि मुंडरे, हेमांती मुंडरे, डोबरो मुंडरे, साजन मुंडरे, सिद्धेश्वर मुंडरे, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरे, जानम सिंह मुंडरे, सिद्धिबोस, सोना बाबू और FM शिवा मुंडरे ने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब के हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जितेक बिरक और मीका बिरक की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। खमरिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, मानस साहू और प्रतीक कुमार। एकता कॉलोनी रोहतक के संगीत सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित कांगड़ा और साहिल कांगड़ा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बड़विल ओडिशा से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है सुरजीत भाटिया, प्रीतपाल कौर और जीत प्रीत। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत फिल्म आंधी से। आनंद लीजिए आपके पसंद के इस गीत का।

कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है ग्राम उघड़िया बड़ा बाम्बो से, और हमें खत लिखा है नायडू महतो, उषा महतो, प्रियो महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज महतो, राहुल बोद्रा और अर्जुन बोद्रा ने। ग्राम धुराबांदा भाटापाड़ा के प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत्राम और भूपेंद्र साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। आरती टाउन गोदनी नागपुर महाराष्ट्र से हमें ये खत लिखा है ज़ियार अब्राहम, उज़ैनी अब्राहम, एलन अब्राहम, ग्लोरी अब्राहम, एलेक्स अब्राहम।

सरदार, कमल सिंह सरदार, सुकमती सरदार, रमेश, अंशु और बीरू सरदार। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत फिल्म साजन की बाहों में से।

श्रोताओं, फिल्म साजन की बाहों में से इसी गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं समाप्त होता है। FM के 101.7 MHz पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज का अगला कार्यक्रम, प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: किसान वाणी।
1: एहो पिना तेहेंया चासबास अखड़ा किसान वाणी कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम आजो में सनाम चसी बुहा मिसी को अलिन ठाकुर चंद्र मुर्मू
2: और अलिन सुनीता हांसदा दिकिना
1: जोहार। चसी बुहा मिसी को नवा कार्यक्रम बोन आजो में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार होते थे और तेहेन हो अलिन चला मई सुनीता तिकिन मिना किना और आपे हो मिना आकर पे नेतो रेडियो सुर रे एड्रेस के बुझो कना चसी बुहा मिसी को जाओगे नवा कार्यक्रम रे किसान वाणी कार्यक्रम रे अड़ी लेकाना गपाल मराव चर्चा और बखान भेंट वार्ता लेकाते अड़ी गान जानकारी को बोन न्यामा और इन साव साव तो अलेहों चेष्टा है चे आपे नापाय से जानकारी ले इमापिया मेंते। तो तेहेन हो सुनीता मई उनका दिन कना जहाँ अब बोन मितागा 20 अगस्त कना तेहेन और तेहेन दो मिन हिसाब दे दो अब सद्भावना दिवस मेंते हो बोन मना दा
2: सारी कथा
1: सद्भावना दिवस में लिखन दो चसी बया मिसी को नुआ दो मिट्टांग अब भारत दिसम रिन जहाँ गे आदिम जाति मिना बोन इमान जान जाति मिना बोन इमान होड़ को मिना बोन जो तो गे सुलूक सगे बोन दो दड़िया मेंते और इन साव सावते अब एकता बेस तहन मा इन साव सावते अब मिठेन जुमित तब जुमित दड़े तहन मा और सावते भाईचारा जहाँ बोन मिता कना अब परिवार रे अब आसपास रे अब रिन अतु दिसम रे जो तो होड़ सला सुलूक सगे चेत लेकाते बोन दो दड़िया चेकते उनको सला नपाय बो तहन दड़िया बोन मिता सद्भावना दो सद्भावना में लेखन दो मिट्टांग सुलूक गे कना चे जो तो मनमी जहाँ गे मिना आकर बोना अब नपाय रे बोन तहन मा दुलड़ ते बोन तहन मा होड़ा गोड़ो गोपोड़ो तहन मा इन इनांग अब दो मणा चेत बोन लहा दड़िया
2: सारी कथा गे दादा और बोहे मिसिको अब जहाँ लेका बोन आंजोम कि तेहन सद्भावना दिवस कना और नुआ सद्भावना दिवस दो अब पहले तहन कान प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनकिन नुआ सद्भावना दिवस रे किन नुआ दिन किन मना हो चोल एहोब ले
1: होय किना जन्मदिन इदी कते नुआ दुना सद्भावना दिवस में तो प्रत्येक शहर मा बन
2: मनावे और नुआ रिया मुख्य उद्देश्य दो जहाँ कना अबोआ दिसोम रे माने शांति तहन मा जहाँ तिना अबो जाति धर्म रिन होड़ को मेना बोना अबोआ बीच रे राष्ट्रीय एकता तहन मा जहाँ भाईचारा को मेना बोहा लेका बोन तहन मा और सुलूक हो तहन मा उनागे नुआ रिया उद्देश्य दो तहन कना और जहाँ लेका अब नितो बोन नेल बड़ाए गया कि जाति धर्म इदी कते होड़ को बीच रे तपाम को लड़ाई को हुयु कना ओना को अलो हुयु मा ओना इदी कते गे नोआ सद्भावना दिवस दो को मनावेया कि अब अबो बीच रे अब बोहा लेका बोन तहन मा आपसी संबंध बोन बिना मा और शांति बोन दोहो दाढ़
1: नुका के जुदी बोन चेस्टाया अब हो जो तो सला सुलूक सगे बो दोहोया जो तो सला भाईचारा बोन दोहोया इनखान अब चासवास कमी रहो नुका के कुरुमुटू हुई दाढ़
2: सारी कथा के दादा अभी अड़ी बेस कथा बिन मेन किया चल का से अब नितो हम बोन येलेट गया चासवास रहो मने इनका के मिना हिस्सा को हिस्सा को मिना गया तो जुदी अब बेस ठीक बोन तहे ना तो मतलब जेते होड़ गे चासवास कमी को हो मने अड़ी बेस तक ये दाढ़ है
1: सारी कथा कान गया सुनी तो मैं तेहेन अलिंग अलिंग कमिया गपार हो अभी ना कमिया आर हो मिन होड़ा गपा बो कमिया और नवार देश चिका मिट्टांग अब वो जहाँ सरामदान हुई करा भी तादो उजर लिखा तो और पुष्य हो तो वो बंचा करना चिका तो मजदूरी बाप बंगे हम कहते गोड़ो गोपड़ो ते के वो कमी
2: गोड़ो गोपड़ोगे हैं
1: तो नौका वो चेस्टा है खान दो अब हम वहाँ से मुन लहा दाड़े और इन साव सावते अब सुलूक से गए नौका के तहना तो जैसे वो हम इसी को बिस्ती घड़ी के बलिंग गपल मरा कन आपे सलाते चिकाते आपे होने तो रिड्यूसर पे दुड़ू पकना और आपे हम रस्क सनाए पिया तेहें चिला रस्क हो चुका सुनीता मैं
2: तेहें लंग आजम हो चुका राम किस्कु और सावतेन को सपड़ा होकर नुआ संथाली लोकगीत
1: इनखान दिला बन आजम लगे नुआ संथाली लोकगीत राम किस्कु और सावतेन को सपड़ा होता।

0: हुआ हूँ। साथ साथ में मैंने देखा कि गांव में मेरे बहुत सारे तालाब हैं, तो उन पे हर साल मछली हम लोग छोड़ते हैं, लेकिन केवल खाने भर के लिए होते थे। तो किसी तरह से मैं मत्स्य विभाग से जुड़ा। उसके बाद कुछ जानकारी हासिल करने बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये अच्छा व्यापार या तो इससे अच्छा आमदनी किया जा सकता है। उसको देखते हुए मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ करना चाहिए।
1: दीपक जी, आपका हमारे कार्यक्रम में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने मछली पालन को कैसे मतलब किस तरह आपको लगा कि ये

0: बाद मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो कह रहे हैं वो सही है। इसको देखते हुए मैंने सोचा चलो मैं मछली पालन करता हूँ। चूंकि ये एक ऐसा व्यापार है जिसमें आपका मेहनत कम है, एक बार मछली छोड़ देना है उसके बाद आपको उनको बढ़ने के लिए कुछ चारा देना होता है और ये अपने आप बढ़ जाते हैं और करीब 6 महीने से साल भर में आप इसका उत्पादन ले सकते हैं।
1: तो जैसे आपने कहा कि हम लोग मछली छोड़ देते हैं, किस प्रकार आप इसके लिए बीज तैयार करते हैं?
0: ये भी एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, साथ साथ में इसका एक बहुत जरूरी जानकारी देना भी चाहूँगा मैं इसमें। अधिकतर किसान लोग या जितने मछली पालक हैं आज के डेट पे, हम लोग मछली खरीदते हैं, छोटी मछलियाँ जो होती है जिनको फिंगरलिंग्स भी बोलते हैं, उंगली के साइज के होते हैं, उनको खरीदते हैं। और कुछ किसान लोग मत्स्य विभाग से स्पॉन जो मछली के अंडे से तुरंत पैदा हुए बच्चों को लेते हैं। तो दोनों में फ़र्क यह है कि दोनों में कॉस्टिंग जो आता है काफ़ी डिफरेंस होता है। जो मछली जो फिंगरलिंग्स होते हैं उनका कॉस्टिंग एक मछली में 5 रुपये के आसपास आता है, और जहाँ से भी आप खरीदते हैं करीब 100 या 150 मछलियाँ का दाम कम से कम 500 रुपये के आसपास चला जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर आप स्पॉन से करते हैं, मछली को अंडा से, जो कि मत्स्य विभाग की तरफ से मिलती है और भी बहुत सारे जगह पे हैचरी जहाँ पे मछली स्पॉन क्रिएट किया जाता है वहाँ से मिलते हैं, वहाँ आपको 30 रुपये के दर पे करीब 1 लाख अंडे मिलेंगे, अंडे से जो तुरंत निकले हुए मछलियाँ मिलेंगी। दोनों में अंतर ये है कि जो मछलियाँ आप फिंगरलिंग्स या तो उंगली का साइज की मछली खरीदते हैं वे उनका जिंदा होने की संभावना ऑलमोस्ट 100% रहता है, बहुत ही कम मछलियाँ मरती हैं। लेकिन जब स्पॉन लेते हैं तो उसमें 1 लाख मछलियों में से 30% के आसपास ही बचते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 30% यानी कि 1 लाख में 30,000 मछलियाँ आपके पास है, और 30,000 को भी आप माइनस कर देते हैं, 10,000 भी अगर आपके पास बचते हैं तो आप 30 रुपये में 10,000 मछलियाँ को जिंदा रख के उसको बड़ा कर सकते हैं। ये तो फर्क है दोनों में।
1: बहुत ही अच्छा आपने कैलकुलेशन बताया। और जैसे इतने सारे मछली जब आप पालते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि उनके खान पान का भी आप ख्याल रखते हैं, तो मछलियों को किस प्रकार का चारा आप देते हैं या फिर उनके लिए कुछ आप अलग से भोजन तैयार करवाते हैं?
0: मछलियाँ पालने में सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप उनको सही खाना खिलाएं और सही समय पर भोजन दें। किसी भी इंसान या तो किसी भी जानवर को अगर आप अच्छा ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उन्हें अच्छा भोजन और समय पर भोजन खिलाना उचित होता है। उसी प्रकार से मछलियों जब वो छोटे होते हैं, अंडे से जैसे निकलते हैं, उस समय से काफ़ी उनका देख रेख करना होता है। शुरुआती दौर में क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं उस समय खाने पर बहुत ध्यान देना होता है, और स्पॉन को रख रखाव भी काफ़ी ध्यानपूर्वक देना होता है। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक छोटा सा तालाब जहाँ पे अच्छा साफ सफाई हो किया गया हो वहाँ उन्हें रखें। उसके तुरंत बाद जैसे आप स्पॉन छोड़ते हैं उन्हें जो मत्स्य विभाग की तरफ से जो नियमानुसार कुछ खाना खिलाना उसका नियम बना हुआ है उन्हें उपलब्ध कराना होता है। कम से कम 21 दिन आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्हें खाना रोज खिलाना पड़ता है, कम से कम 2 समय, उसको फीडिंग बोलते हैं। अगर वो करते हैं और 21 दिन के बाद आपने अगर बढ़िया से फीडिंग किया तो ऑलमोस्ट जो 1 लाख मछलियों में से मिनिमम आपका 10,000 मछलियाँ जरूर से बच जाती हैं। और उनका ग्रोथ के लिए जो भी फीडिंग्स है उसका या तो आप खुद तैयार कर सकते हैं या तो विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। आजकल बहुत सारे कंपनियाँ या तो बहुत सारे जो फीडिंग बेचते हैं वहाँ से भी लिया जा सकता है, लेकिन सस्ते दर पर करना हो तो आपको मत्स्य विभाग से कांटेक्ट करना होगा, वहाँ से संपर्क करना होगा ताकि वो आपको चारा दिलाएं। एक शुरू में पाउडर के रूप में चारा मिलता है, उसके बाद उसके साइज के अनुसार से अलग अलग साइज के 1 mm से लेकर 4 mm तक के चारा का साइज मिलता है। उनका कॉस्टिंग थोड़ा सा अधिक है, जैसे 30 रुपये पर केजी है, 30 या 35 रुपये पर केजी है, वो ले सकते हैं या तो आप खुद से घर पर चारा तैयार कर सकते हैं। चारा जो स्पॉन को खिलाने के लिए जो विधि है, यानी जो बहुत छोटे मछली हैं तो उनको खिलाने के लिए जो विधि है, उसमें आपको बेसन लेना पड़ता है, साथ साथ में धान का छिलका जो निकलता है पीसने के बाद उसका जो पाउडर फॉर्म में हो जाता है उसको मिलाना होता है, साथ साथ सरसों की खली मिला सकते हैं और उसमें कुछ मात्रा में तेल है और उसके बाद कुछ मात्रा आपका गुड़ मिलाना पड़ता है। इसको बनाने की एक अलग से प्रक्रिया होती है जिसका सही मात्रा मिलाने से मछलियों का जो आहार में जितना पौष्टिक आहार मिलना चाहिए वो उनको मिल

0: जाता है।
1: जी
0: उसके बाद आगे जब बड़े मछली मंडलियाँ जो बड़ी होती हैं तो इसी को जो पाउडर फॉर्म में है, इसमें ज़्यादातर हम लोग जो सरसों की खली थी उसको लेते हुए प्लस जो धान की भूसी है इन सबको मिला के हम लोग एक और भोजन तैयार कर सकते हैं। साथ साथ में अगर मुर्गी पालन कर रहे हैं या तो बतख पालन कर रहे हैं तो उनका जो मल निकलता है उसको अगर आप उसको भी अगर जाके तालाब में डाल देते हैं तो उससे भी उनका चारा तैयार होता है। साथ साथ में अगर आपके पास जहाँ तालाब पानी बहती हुई जाती है उस एरिया में अगर आपने गोबर हम लोग जमा करते हैं गांव में उसका अगर उचित जगह पे अगर बना हुआ है तो उससे पानी बहते हुए जाएगा तो आप चारा उत्पन्न होता है। ये सारी विधियां हैं जिससे मछलियों को चारा खिला सकते हैं। साथ साथ में आज के डेट पे मैं अपने तरफ से उजाला की खेती कर रहा हूँ जो कि एक छोटा सा किस्म के पौधे होते हैं। इसको अगर आप खेती करते हैं तो इससे भी मछलियों को चारा तैयार कर सकते हैं।
1: तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया दीपक जी। जानना चाहूंगी कि मछली को जब आप डालते हो तालाब में चारा डालते हो तो उसे फसल तैयार होने में कितना समय लगता है, मतलब हमारी मछलियों को बढ़ने में कितना समय लगता है?
0: अच्छा, अगर आप रोज चारा खिलाते हैं सुबह और शाम तो आपका 3 से 4 6 महीने के अंदर में कम से कम जो मछलियाँ जो अंडे से जो निकले हैं उन लोग करीब करीब आधा केजी के आसपास हो जाते हैं अगर रेगुलर खिलाते हैं। और अगर आप नहीं खिला पाएंगे और नहीं खिलाते समय पर तो उन्हें काफ़ी समय लग जाता है, उनको 1 साल से 2 साल के बीच भी लग हो जाता है आधा केजी से 1 केजी होने में। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना पर्याप्त मात्रा में चारा खिला रहे हैं और किस किस्म का चारा खिला रहे हैं उसके अनुसार से उनका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है। जितना बढ़िया चारा खिलाएंगे उतना बढ़िया ग्रोथ होता है। और मैं अपने तालाब में, मेरे पास भी 2 किस्म के तालाब हैं जिसमें एक में चारा कम खिलाता हूँ तो साल भर लग जाते हैं अधिक पानी होने के चलते, और जिसमें मैंने जो लोकल विधि या तो जो गांव में विधि कर सकते हैं उसके हिसाब से मैं वहाँ करता हूँ, उसमें 3 महीने से लेकर 6 महीने में आधा केजी से लेकर 1 केजी के आसपास मछली बढ़ जाते हैं,
1: मतलब वो बेचने के लिए फसल तैयार हो जाता है।
0: तैयार हो जाते हैं
1: उसे। ये बताइए कि जब आपका मछली तैयार हो जाता है बेचने के लिए या फिर आपका फसल कंप्लीट तैयार हो जाता है, आप उसको जब बेचते हो तो लगभग कितना इनकम आप उससे अर्न करते हैं?
0: इसका अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि आपके पास 10,000 मछलियाँ हैं, अगर सारे सारे मछलियाँ 1 केजी के आसपास हो जाती तो आप समझ सकते हैं उससे काफ़ी अच्छा इनकम हो जाएगा। तो उसमें अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करते हैं जैसे कि इसमें 10,000 मछलियाँ हैं, 10,000 को अगर आप 200 से इंटू करते हैं तो करीब करीब 20 लाख का इनकम हो सकता है। लेकिन क्योंकि सारी मछलियाँ 1 केजी हो नहीं पाती हैं तो अगर आप 1,000 मछलियाँ भी करते हैं तो उसमें भी आपका 2 लाख का आसपास इनकम हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा व्यापार के रूप में या तो रोजगार के रूप में इसको हम लोग ले सकते हैं क्योंकि इनका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होता है। बस हमें ध्यान देना होता है उन्हें समय पर चारा खिलाएं और उन्नत किस्म को चारा खिलाएं।
1: मछलियों से संबंधित या मछली पालन को लेकर के आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी है, आप हमारे किसान भाइयों को क्या क्या सलाह आप देंगे?
0: किसान भाइयों से तो मैं यही कहूँगा कि आपके पास अगर घर के आसपास तालाब है तो आप बिना सोचे आप मछली पालन में लग जाइए, और अगर तालाब नहीं भी है तो छोटे छोटे तालाब अपने से खोद के या तो जो भी है छोटे मोटे मशीन लगा के तालाब तैयार कीजिए। और उसमें जो विधि या तो जो जानकारी मैंने दिया है कि स्पॉन को लेते हुए प्लस जो चारा की तैयार करने की विधि है उसको अगर आप उपयोग में लाते हैं उसके अनुसार से आप नियम अनुसार से जाते हैं कुछ ट्रेनिंग लेते हुए तो ये बहुत ही बड़ा बढ़िया रोजगार का अवसर है क्योंकि इसमें लागत नहीं के बराबर है। ओवरऑल देखा जाए तो आप अगर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं सालाना तो कम से कम 1 से 2 लाख आराम से कमा सकते हैं। उसमें आपको किसी प्रकार मेहनत भी नहीं करना पड़ती है अगर आप मुर्गी या तो बतख पालन भी साथ में करते हैं, बकरियां हैं तो गाय भी अगर घर में है तो उनका, क्योंकि जो उनका मल है उसी का उसका उपयोग भी चारा के रूप में किया जा सकता है। और थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं आप मत्स्य विभाग से तो ये रोजगार का बहुत अच्छा साधन हो जाता है और काफ़ी अच्छा इनकम या तो आमदनी आप ले सकते हैं।
1: दीपक जी, आपने मत्स्य पालन को लेकर के बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और एक मौका देने के लिए, किसानों को जानकारी दिलाने के लिए। थैंक यू।
2: चाषी बया मछली को नितों बन आजमे गपालमाराव मछली पालन की नई तकनीक विषय इदी कते नवा की लेन दीपक तुबिट तिकिन नियतम दिला

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 8 सालों में कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साल 2013-14 में जहां कृषि बजट केवल 21,933 करोड़ रुपए था, वहीं साल 2022-23 में इसे बढ़ाकर 1,24,000 करोड़ कर दिया गया। तभी तो साल 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265.05 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 के तीसरे अग्रिम अनुमान में ये बढ़कर रिकॉर्ड 314.51 मिलियन टन हो गया। वहीं साल 2013-14 में बागवानी फसलों का उत्पादन जहां 280 मिलियन टन था, वहीं साल 2021-22 में ये बढ़कर 333.25 मिलियन टन हो गया। किसानों की कृषि संबंधी जरूरतों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई।
4: प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि आती है ना, वो डायरेक्ट खाते में आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई व्यवधान नहीं। और फिर उसको निकाल के हम बाजरा को बीज ले आते हैं, गेहूं को बीज ले आते हैं, सरसों को बीज ले आते हैं। बातें हमारे जो खेल चल तो बढ़िया।
3: अब तक 11.37 करोड़ से भी ज्यादा पात्र किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसानों को प्राकृतिक आपदा और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई।
5: हमने 1,800 रुपए प्रीमियम भरा था, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई थी। उसका हमने इंश्योरेंस कंपनी को उनको सूचना दी और उनके प्रतिनिधि आके हमारे खेतों का निरीक्षण किया उन्होंने, और उसके बाद में फिर हमारा बीमा 2022 में 76,000 रुपए मुझे प्राप्त हुआ।
3: अब तक 10.69 करोड़ से ज्यादा आवेदक किसानों को 1,18,195 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है। साल 2014 के मुकाबले अब किसानों को दलहन, तिलहन और धान की उत्पादन लागत से 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। इस बढ़े हुए एमएसपी दर पर साल 2020-21 में 991,00,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं व धान की खरीद हुई। 2,44,159 करोड़ रुपए मूल्य की गेहूं व धान की फसलों की रिकॉर्ड खरीदी हुई, जिससे 1.75 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा हुआ। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की मदद से कृषि और इससे संबंधित बुनियादी ढांचों को विकसित किया जा रहा है।
6: AIF के थ्रू हमको लोन मिला, जिससे ये मील चल रही है। इस क्षेत्र में ऐसी और भी मिलें, और भी प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं। ये सरकार का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे गांव में खुशहाली आ रही है।
3: 313.58 लाख से भी ज्यादा नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। मिट्टी में पोषक तत्वों के अधिकतम उपयोग करने के लिए किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। विभिन्न चरणों में अब तक 23 करोड़ से भी ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड्स जारी किए जा चुके हैं। किसान की आय में बढ़ोतरी करने और पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना को बढ़ावा दिया गया।
7: ये गंगा के किनारे जैविक खेती करना ये बहुत ही जरूरी जो सरकार का उपक्रम है। प्रदूषण फैलता है, उससे भी उसको राहत मिलती है, और इस तरह से फसल भी अच्छी होती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है।
3: खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई के प्रोत्साहन हेतु प्रति बूंद अधिक फसल योजना क्रियान्वित की जा रही है। 10,000 से ज्यादा नए FPO का गठन और उसका संवर्धन किया जा रहा है।
8: मैं APO का डायरेक्टर हूँ। मेरा APO पूरा हो गया है। 3,02,000 रुपया किसान का है शेयर होल्डर, और 3,02,000 रुपया सरकार दी है। उससे हम लोग खाद बीज का दुकान किया।
3: किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए देश भर की मंडियों को आपस में ई नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है। ग्रामीण

0: स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत की गई। देश को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत 11,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि आवंटित की गई है। संवेदनशील कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए किसान रेल चलाई जा रही है। बहुत शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियों एवं अन्य बागवानी उत्पादों की आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए किसान रेल का संचालन होने से किसानों को लाभ हो रहा है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए स्मार्ट उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा सिंचाई, कीटनाशकों और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को भी अपनाया जा रहा है।
1: हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है, लगातार एक के बाद एक नए कदम उठाती जा रही है।
0: कृषि में रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के 8 साल शानदार प्रदर्शन से उपलब्धियां बेमिसाल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समंदर और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
7: बुहमसी को नुआ जरूरी संदेश सांतगे तेहेन्या अबुआ चासबास अखड़ा नोडेगे केचोदो करना।
8: मान खान मुचेत रे अलिंग ठाकुर चंद्र मुर्मू
7: आर अलिंग सुनीता हाजदा दिकिना
8: जोहार। चसी बुहमसी को नुआ कार्यक्रम बनाजे में तहन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार होते थे।

आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

चाय भाषा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चला है आप सभी श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम आपके फरमाइशी खतों पर आधारित हिंदी फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में मैं संगीता तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों को मेरा नमस्कार, चौहार।

आइए श्रोताओं, करते हैं आज के कार्यक्रम रजनीगंधा की शुरुआत और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है ग्राम हारूडी चांडिल से। और हमें खत लिखा है तुलसीदास महतो, कल्पना, मनोरमा, दीनबंधु महतो और मनमोहनी महतो ने। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें प्राप्त हुआ है चंदा रेडियो श्रोता संघ, चंदा चौक, अंधरा ठाड़ी, मधुबनी, बिहार से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं सोभी कांचा सज्जन, हेमलता सज्जन, मनोज सज्जन, लक्की सज्जन, मोहित सज्जन, परी सज्जन, सरोज सज्जन, स्तुति सज्जन, नैतिक सज्जन, सोनाक्षी सज्जन, अर्चना सज्जन, विवेक सज्जन और एस के सज्जन ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है सहावर टाउन, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश से। और हमें फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक और सुशांत नायक। चाईबासा से सोनू शर्मा, ऋषिकेश और नंदू शर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से लिखा है कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। मलोट कैंप पंजाब के सीमा, अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, किशन, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरुचरण ग्रोवर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से। और हमें खत लिखा है श्रीमती प्रमिला श्याम कुमार, अनुश्री श्याम कुमार, अशोक श्याम कुमार और दीपक श्याम कुमार ने। मैं रेडियो श्रोता संघ नावागढ़ कटई के नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा सारदा और दामिनी वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में गाया हुआ ये गीत फिल्म देश परदेश से। और इस गीत के लिए हमें, इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला फरमाइशी गीत।

फिल्म देश परदेश के इस गीत के बाद आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है खरसवा पतिसाई से। और हमें खत लिखा है सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक ने। सोनवा गांव पोड़ाहाट के मिथुन नायक, मुकेश नायक, राकेश नायक, मुखरू आचार्य और सुखराम नायक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें भेजा है शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ के दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। पेपरपाड़ा पालचुआ मुंगेली से अपनी फरमाई सब तक भेजी उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर और योगिता दिवाकर ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब के राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। गांधीग्राम से हमें खत लिखने वाले श्रोता है प्रवीण सोनी और जगदीश सोनी। टावर चौक गुमला के एस एम जावेद, सगुफ्ता अंजुम और चेनिस जौहरी ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। गांव चौहलदा बागपत के संजय ढींगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है गायक कलाकार किशोर कुमार के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म मशाल से। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से। और हमें खत लिखा है चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नुमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल ने। ऊपरकोट मोहल्ला चकुंडली बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनबाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और

महबूबा कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से। आवाज़ें हैं गायक कलाकार लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और धुन है आरडी वर्मन की। और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं गांव के तासराय किला से राधा कृष्णा गोप, अमित गोप, अंकित, अभिषेक, आशीष, सुमित, अनामिका, सुनीता गोप, गीता गोप, रीता गोप, सुलेखा गोप, आराध्या गोप, माहिर गोप, खुशी गोप और राहुल गोप। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें इसी गीत के लिए मिली जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया की। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिया नेवादा गाजीपुर के प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली। शेरपुर कलाम गाजीपुर से हमें खत लिखा अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। छत्तीसगढ़ भाटापाड़ा दतरंगी के द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। बोर्डसरा नैला से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू। बुलढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र के सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, कुमारी साधना, सुमित कुमार दामोदर और बड़सिंगी बुलढाणा से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली ने भी फिल्म महबूबा के इसी गीत को सुनना चाहा। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से और हमें खत लिखा है पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू, रीतु सिंह और ऋषभ सिंह ने। ग्राम नवागांव मुढ़ही पार राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के सोहन साहू, श्रीमती रुक्मणी साहू, संतोष साहू, श्रीमती शांति साहू, तेजेश्वर टाकेश्वर कुसाल और तुलेश साहू की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। ग्राम बन बघेरा राजनांदगांव के योगेश सारवा, श्रीमती आशा सारवा, नीरज, नीलेश और कुमारी अंजलि सारवा ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। बिलासपुर देवरी खुर्द से कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है और हमें खत लिखा है संतोष तलरेजा, आरती अर्चना, सोनू तलरेजा, कुंवर सिंह गुड्डू भाई और रामदास ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला के रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, प्रियंका, जयप्रकाश राहुल, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत, गुरशब्द और राहुल ने भी हमें अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजी है। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी गीत खास खास और खास आप सभी श्रोताओं की फरमाइश।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से। और हमें खत लिखा है देवेंद्र ताती, राकेश ताती, निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान और देवेन जी ने। ग्राम गेलिया लोहार से कोमल बेसरा, बसंती, अनु बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है जरूर वरुण महाराष्ट्र से। और हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं बाबा साहब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। पुणे से अपनी फरमाइश हमें भेजने वाले श्रोता हैं पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, बीटी वाड़ोदे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है जिला खंडावा ग्राम लोहारी से। और हमें खत लिखा है राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे।

विशाल कुमार धनजे, सीला धनजे और गायत्री धनजे ने खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई है। पाकुड़ झारखंड से हमें कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत लिखा है। उत्तम कुमार भगत, यशु और तासु ने खरसावा दलाई किला के लक्ष्मण सोए, मांगू सोए, गीता सोए और अनीता सोए की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें लिखा है ग्राम जामठी वरुड़ अमरावती महाराष्ट्र के मुकेश दिनकर कासलेकर और विमल विशाखा कासलेकर ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म राजपूत से ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार किशोर कुमार ने। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हमारे श्रोता हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से राजेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, खेड़ियाघर प्रखंड मंझारी के बसंत बेंकुरा, सुलोचना बेंकुरा, हेमंत पात्रो, कौशिक कुमार पान, दीपक कुमार, रिंकी कुमारी, रूपाली कुमारी, झिम्पी कुमारी, जैमिनी और जयंती ने भी इसी गीत के लिए अपनी फरमाइश हमें भेजी। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है आम खोंडरा रिंगाखार से और हमें खत लिखा है राजेंद्र कृष्ण नेताम, देवी संदीपा नेताम और चंद्रदीप दक्षप्रिया नेताम ने। छत्रपति संभाजी नगर से हमें अपनी फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी के मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। बहादुरगंज गातीपुर उत्तर प्रदेश के आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद ने भी हमें खत लिखा है। कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत हमें मिला है महुलडिया सोनवा से और हमें खत लिखा है नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, बंदनी, दीपक, संतोष, राहुल, बिट्टू, आयुष, गितेश, अनु, तनु, डिस्को महतो और भाई नंदू महतो ने। मेन रोड सोनवा के गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, प्रियंका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, पिनाक पाणी प्रधान, तनुश्री प्रधान, नील पाणी प्रधान और नीक पाणी प्रधान ने भी हमें अपनी फरमाइश इसी गीत के लिए भेजी। बड़ी बाजार चायबासा के मौसम बिहारी, समीमा खानम, जिम्मी, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा इलाही की फरमाइश भी हमें फिल्म राजपूत के इसी गीत के लिए प्राप्त हुई। तो हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को पूरा करते हुए यह आ गया आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत फिल्म राजपूत से।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुक

0: बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 870-001-4242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
2: क्या
3: इन जरूरी संदेशों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम रजनीगंधा में। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम का ये अगला फरमाइशी खत, जो कि हमें लिखा है बेरेडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोम ने, वैष्णवी ढोम ने, चंचल ढोम ने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे ने। कार्यक्रम की ये अगली फरमाइश हमें मिली है वसुंधरा कॉलोनी सेंट ओला चाईबासा से, और हमें खत लिखा है भोला राम मधुर, अंबर कुमार मधुर, विशाल मधुर, प्रशांत मधुर, नीला मधुर, करुणा मधुर, रिंकी मधुर, अनिष्का मधुर, आस्था मधुर, श्रेष्ठा मधुर और सनी मधुर ने। लुधियाना पंजाब से अपनी फरमाइश हम तक भेजी अमरजीत सोनम कौर और परमजीत आदिबा कौर ने। बिहारी कॉलोनी महासमुंद के वलीउल्लट फ़कीर, डब्लूल्ला फ़कीर और परवीन आसमा फ़कीर की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। बुलंदशहर से इसी हमें खत लिखने वाले श्रोता हैं वद्रवली अंसारी, फर्जी वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। सनी इनक्लैब मोहाली के बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी है। डोंगरगांव राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से हमें खत लिखा है राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ के रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन ने भी अपनी फरमाइश हमें खत के माध्यम से भेजी। शास्त्री नगर बीड शहर से हमें फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं किशन सपकाल और आशा सपकाल, दुर्गाई सेलू के चंदू कुलकर्णी, हेमलता और परवणी से सी आर कुलकर्णी के ने भी हमें खत लिखा है। छोटा निमड़ी चाईबासा के बापू राम, शांति देवी, ऋतिक कुमार, कोमल कुमारी और रोहन कुमार ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार के अकरम हुसैन, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, आबिहा नाज, साजिया साहिन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू सैक और चीना सैक की फरमाइश भी हमें प्राप्त हुई। कोकिलवाड़ा उराई मुजफ्फरपुर के मोहम्मद फैसल सैक, नुसरत जहां नाज ने भी हमें अपनी फरमाइश भेजी। भाटापाड़ा से खत लिखा है सोहन जोशी, हरविंदर चावला, पुरेंद्र लहरे ने। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है फिल्म राम तेरी गंगा मैली का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है गायक कलाकार लता मंगेशकर और साथियों ने। इस गीत को संगीत से सजाया है रविंद्र जैन ने और धुन है हर्षरत जयपुरी की। और इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है बलराम गेट कासगंज के एम असलम सैफी, जुबेनिशा बेगम, अक्रम सैफी, जाहिद सैफी और आवाद खां। ग्राम अमलेश्वर के डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर की फरमाइश भी हमें इसी गीत के लिए मिली है। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता है प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा, प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश को करते हैं पूरा और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी फरमाइशी गीत फिल्म राम तेरी गंगा मैली से।

श्रोताओं, फिल्म राम तेरी गंगा मैली के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम रजनीगंधा अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चायबासा केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने जा रहे हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली।

सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है ये समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोप

0: आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। एक रिपोर्ट।
2: न्यायालय ने निर्देश दिया कि चुने गए उम्मीदवारों को बहाल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि उचित प्रक्रिया और न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना उन्हें हटाया नहीं जा सकता। न्यायालय ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। दो याचिकाएं 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देती है, जबकि तीसरी याचिका खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा से संबंधित। याचिकाकर्ताओं के अनुसार 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के जरिए चुने गए 342 उम्मीदवार अभी नौकरी कर रहे हैं। झारखंड सरकार ने 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 परीक्षा प्रक्रियाओं को रोकने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने की अधिसूचना जारी की थी। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में देश के विकास में दक्षिण भारत के योगदान की सराहना की है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि दक्षिण भारत ने देश के सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स और अवसंरचना विकास के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि दक्षिण में भारी मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आया है।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दक्षिण भारत की संपूर्ण विकास यात्रा तीन स्तंभ, उच्च साक्षरता दर, प्रशिक्षित मानव संसाधन और गहरे समुद्र के उपयोग में तकनीकी विशेषज्ञता पर टिकी है। इन्हीं तीन स्तंभों ने दक्षिण भारत को देश के विकास में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से क्षेत्रीय परिषद को एक सार्थक मंच में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री शाह ने बताया कि उत्तर भारत में नदी जल बंटवारे से संबंधित 8 मुद्दों में से 5 मुद्दे ब्रिटिश काल से पहले से ही चले आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र से लेकर कावेरी और गोदावरी तक प्रमुख नदियों को जोड़ने से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भारत को अगले 100 वर्षों तक पानी की कमी का सामना न करना पड़े। चेन्नई से आर चिदम्बर नाथन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को अनुमति दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने आज जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। ये फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद ये निर्णय लिया गया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। सरकार ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल और समावेशी राजधानी बनाने के लिए दीर्घकालिक ढांचा प्रदान करता है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप दिल्ली मास्टर प्लान का उद्देश्य राजधानी को विश्व स्तरीय, समावेशी और आर्थिक रूप से जीवंत शहर

0: बनाना है।
1: दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में दो तरीके अपनाए गए हैं, मौजूदा विकसित क्षेत्रों के लिए क्षेत्र आधारित पुनर्विकास और नए विकसित होने वाले क्षेत्रों के लिए सड़क मार्ग आधारित योजना। मौजूदा क्षेत्रों में परिवहन केंद्रित विकास, मिश्रित उपयोग वाली जगहों और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं नए क्षेत्रों में जुड़े हुए सड़क नेटवर्क विकसित किए जाएंगे। इसके लिए लैंड पूलिंग और कम घनत्व वाले क्षेत्रों का उपयोग किया जाएगा। इन दोनों तरीकों से जमीन का बेहतर उपयोग, शहर के अंदर और दूसरे शहरों से बेहतर संपर्क तथा टिकाऊ और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस योजना में लोगों को शहरी विकास के केंद्र में रखा गया है। इसमें खास तौर पर युवाओं, महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 का आज अनावरण किया। ये प्लान दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए तैयार किया गया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 30 से 40 लाख नए फ्लैट जोड़े जाएंगे। इसका उद्देश्य शहर की विशाल आबादी की आवास मांग पूरा करना है। भारत और जापान ने रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी की बैठक में यह निर्णय लिया गया। दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के कुमामोतो में आए भीषण भूकंप पर भारत की संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
2: दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री कोइज़ुमी ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन का एक मजबूत तंत्र बनाना है और भारत को इसके उत्पादन तथा निर्यात के लिए एक संभावित ग्लोबल हब के तौर पर स्थापित करना है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2023 में स्वीकृति दी थी। इसके लिए 2029-30 तक की अवधि के लिए शुरुआती तौर पर 19,744 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एनटीपीसी नवीकरणीय ऊर्जा के कार्यकारी निदेशक डीएमआर पांडा ने बताया कि अभी हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसों में हाइड्रोजन ईंधन भरा जा रहा है और हर बस एक बार फुल टैंक भरने पर 720 किलोमीटर तक चल सकती है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बनाने में भूजल यानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं होता।
3: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है एंड इस के लिए पानी चाहिए बहुत ज्यादा। वाटर रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमने जो ट्रीटेड सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निकलता है पानी, उसी को फर्दर ट्रीटमेंट करके उसी हाइड्रोजन से बसेस चला रहे हैं। बनाने का टाइम में कोई प्रदूषण नहीं, वाटर कंजर्व कर रहे हैं और जो बसेस चलते हैं एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि वाटर वेपर निकलता है।
0: भारत कल पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन आईसीटी है। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर आज बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 78 वर्षीय नेता ने देश की संसद जाति संसद में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 255 वोट हासिल किए। उन्होंने पूर्व सेना अधिकारी ओली अहमद को हराया। ओली दक्षिणपंथी बांग्लादेश जमाते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के नेतृत्व वाले 11 दलीय विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार थे। ओली अहमद को 88 वोट मिले। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे पाकिस्तान का ये दावा झूठा साबित हो रहा है कि अशांति केवल रावलकोट तक ही सीमित है। संयुक्त आवामी कार्रवाई समिति JAAC ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि विरोध प्रदर्शन अब पूरे अधिकृत क्षेत्र में फैल चुके हैं। कोलंबिया ने 10 अगस्त को आए भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में 30 दिन के लिए आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति अलबर्टो डे ला एस्प्रियला ने बोगोटा में कैबिनेट बैठक के बाद इस आदेश पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया की राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने बताया कि आज सवेरे तक 7.4 तीव्रता के भूकंप में 319 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4,469 लोग घायल हैं और 260 लोग लापता हैं। भारत में नेपाली गोरखा समुदाय ने आज नेपाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिलने की 35वीं वर्षगांठ मनाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोरखा समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का बंधन हर भारतीय को मजबूती से जोड़ता है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पहाड़ तथा तराई डुवर्स में आज 100 से अधिक स्थानों पर नेपाली भाषा मान्यता दिवस भव्य रूप से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हजारों युवा, दोनों पुरुष महिला तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने पारंपरिक परिधानों में शोभा यात्रा, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। रोशनी क्षेत्री, आकाशवाणी समाचार, कश्यप।
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: एमिस्टल फेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबर रहा। इस ड्रॉ के साथ भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। और दिल्ली में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने महिला डबल्स के अंतिम आठ में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया, मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों के दौरान हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित की। झारखंड उच्च न्यायालय ने 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षाएं रद्द करने के राज्य सरकार के निर्णय पर रोक लगाई। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को वर्ष 2047 तक समावेशी और विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए मास्टर प्लान जारी किया। और महिला हॉकी विश्व कप में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलने के बाद भारत ने दूसरे दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protest across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. And now the news in detail. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of the High Court of Jammu and Kashmir in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah today announced this, sharing a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensure constitutional safeguards. The Supreme Court has constituted a 5-member high-powered inquiry committee headed by former top court judge Justice R. Subhash Reddy to independently examine allegations of violence during the student demonstrations held at Jantar Mantar.

0: 1,538. The Nifty surged 154 points to settle at 24,232. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for very heavy rainfall over Madhya Pradesh for tomorrow. Heavy rainfall is also expected over Uttarakhand, western Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, sub-Himalayan West Bengal and parts of northeast India tomorrow. The Met Department predicted thunderstorm accompanied by lightning and gusty winds over Andhra Pradesh, Karnataka, Rajasthan, Jharkhand, Tamil Nadu, Puducherry and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. For Delhi, IMD has forecast a generally cloudy sky with one or two spells of light rainfall at many places during early morning tomorrow. On to sports. In hockey, the Indian women's team has advanced to the second round of the AFIH World Cup after playing out a goalless draw against England in their final Pool D match at Amstelveen in Netherlands. Both teams created opportunities but failed to find the back of the net, with India's defence holding firm throughout the contest. India stopped multiple penalty corners from England, especially during a tense second half. The draw helped India, led by Salima Tete, sealing a vital second-place finish in Pool D. The Indian team will now look to build on its strong defensive performance as it enters the second phase of the World Cup, with tougher challenges ahead in the knockout stage. In badminton, India's women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian pair produced a commanding performance to defeat 7 seeds Rin Iwanaga and Kei Nakanishi of Japan in straight games 21-16, 21-12. Former world champion PV Sindhu lost to 3rd seed Wang Zhiyi of China in the women's singles pre-quarterfinal match 11-21, 21-15, 17-21. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet decides to set up a bench of Jammu and Kashmir High Court at Ladakh, announces Home Minister Amit Shah. Supreme Court forms 5-member panel to investigate violence during student protests across the country. Jharkhand High Court stays state government's decision to cancel 11th to 13th JPSC and food safety officer examinations. Government allows duty-free imports of 10 lakh tons of raw sugar until 31st of October. Centre unveils Delhi Master Plan 2047 to transform national capital into inclusive and world-class city. Bangladesh Nationalist Party leader Mirza Fakhrul Islam Alamgir elected as country's 23rd president. And in hockey, Indian women's team qualifies for second round after a goalless draw with England in Pool D match of World Cup in the Netherlands. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर दाखला अमित शाह ने ऐलान किया है कि मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच तश्कील देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में तलबा के एहतजाज के दौरान तशद्दुद की तहकीकात के लिए 5 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने 11वें से 13वें जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर इम्तिहानात को मनसूख करने के रियासती सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन खाम शकर की ड्यूटी फ्री दरामद की मंजूरी दी है। मरकज ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 जारी किया है ताकि कौमी राजधानी की सबकी शमूलियत वाले और आलमी दर्जे के एक शहर के तौर पर काया पलट की जा सके। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी लीडर मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को मुल्क का 23वां सदर मुंतखब किया गया है। और हॉकी में भारतीय ख्वातीन की टीम ने नीदरलैंड में आलमी कप के पूल डी के एक मैच में इंग्लैंड के साथ बिना गोल के मैच ड्रा होने के बाद दूसरे राउंड में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की एक बेंच कायम करने की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लद्दाख के दूर दराज इलाकों में रहने वाले शहरियों के लिए इंसाफ तक रसाई में नुमाया बेहतरी आएगी और उन्हें कानूनी खिदमात हासिल करने के लिए दरकार वक्त कम होगा। जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि हुकूमत लद्दाख की हमजहत तरक्की और वहां के शहरियों के लिए आईनी तहफ्फुज़ात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और मुल्क के दीगर

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: अरविंद जी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू वेरी मच।
1: अरविंद जी, भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकरण और कृषि क्षेत्र में पानी की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जल सुरक्षा हमारे लिए एक बड़ी चुनौती भी है और स्वच्छ जल होना एक समस्या भी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं। तो आपके अनुसार आने वाले जो वर्ष हैं, एक या दो दशक की हम बात करते हैं, तो भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता किस तरह की होनी चाहिए?
2: मेरी दृष्टि में अगले 10 से 20 साल के वर्षों के बीच भारत की राष्ट्रीय जल रणनीति की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कृषि क्षेत्र में मांग पक्ष प्रबंधन, सिस्कर सिंचाई दक्षता में सुधार। कारण स्पष्ट है, भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल दोहन करता है और कुल जल खपत का लगभग 80% कृषि में होता है, जिसका अधिकांश भाग परंपरागत बाढ़ सिंचाई में नष्ट हो जाता है। पंजाब हरियाणा राज्यों में धान जैसी जल गहन फसलें उगाना भूजल स्तर को खतरनाक स्थिति से गिरा रहा है। यह आपूर्ति की समस्या में कहीं अधिक रचनात्मक असंतुलन का मामला है। इसलिए ड्रिप इरिगेशन को प्रोत्साहन है, फसल विविधीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति में सुधार तथा भूजल दोहन का पर सख्त विनियमन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही शहरी औद्योगिक क्षेत्र में अवशिष्ट पुनर्चक्रण यानी कि जो दोबारा यूज करना होता पानी को, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, अंतर राज्य नदी जल विवादों के लिए एक सशस्त्र कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थागत ढांचे की अवस्था, आपूर्ति को बढ़ाने के बजाय मांग को तर्क संगत बनाना ही दीर्घकालीन

0: जल सुरक्षा की वास्तविक कुंजी है।
1: अरविंद जी, भारत के कई हिस्सों में देखा गया है कि भूजल का स्तर गिरा है और कृषि और जो घरेलू जरूरतों के लिए जल की आवश्यकता होती है, वो जाहिर सी बात है कि भूजल पर भी उसकी निर्भरता हमारी अधिकतर रहती है। तो क्या भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त है या फिर हमें भूजल के दोहन और खपत को नियंत्रित करने के लिए भी नीतिगत बदलाव करने आवश्यक है?
0: नहीं, केवल भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम पर्याप्त नहीं है। पुनर्भरण आपूर्ति पक्ष का समाधान नहीं है, जबकि असली समस्या मांग पक्ष के अनियंत्रित दोहन में निहित है। जब तक निकासी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक बनी रहेगी, कोई भी वाटरस्टेट कार्यक्रम दीर्घकालीन संतुलन नहीं ला सकता। इसलिए बड़े नीतिगत बदलाव अनिवार्य हैं। इसका केंद्र बिंदु होना चाहिए भौगोलिक परिस्थिति आधारित कृषि, यानी जियोग्राफी बेस्ड एग्रीकल्चर। पंजाब, हरियाणा, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में धान जैसी गहन फसल उगाना पारिस्थितिक दृष्टि से भूल है, जबकि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद नीति द्वारा कृत्रिम रूप से प्रोत्साहित होती रहनी चाहिए। अतः आवश्यक तीन स्तर पर बदलाव होना चाहिए। पहला, फसल विविधीकरण, धान से मक्का, बाजरा, दलहन, तिलहन जैसी कम जल गहन फसलों को बढ़ाना, विशेषकर मोटे अनाज मिलेट्स को बढ़ावा देना, जल दक्षता भी है और पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी है। दूसरा, क्षेत्र विशिष्ट फसल योजना, एग्रो क्लाइमेटिक जोनिंग, यानी हर क्षेत्र की मिट्टी जल उपलब्धता के अनुसार फसल पैटर्न तय करना, न कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान नीति थोपना। तीसरा, मूल्य और सब्सिडी नीति में सुधार, मुफ्त एवं अत्यंत सस्ती बिजली जैसी व्यवस्थाएं जो भूजल दोहन को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करती है, उन्हें फसल विशिष्ट प्रोत्साहन ढांचे से बदलना चाहिए। पुनर्वरण आवश्यक है परंतु पर्याप्त नहीं। असली समाधान यह कि हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं बल्कि उसके अनुरूप खेती करें।
1: अरविंद जी, भारत की हम बात करें या फिर कहीं दुनिया भर के किसी भी हिस्से की बात करते हैं, तो पाइपलाइनों में रिसाव होना और नलों से जो पानी बर्बाद होता है, ये एक बड़ी समस्या है। इससे जल की बहुत हानि होती है। जल वितरण का जो हमारा एक ढांचा है, उसमें भी कहीं ना कहीं रिसाव होने के कारण बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारा अच्छा पानी बर्बाद होता है। तो किसी भी नए जल स्रोत को विकसित करना अधिक जरूरी हो जाता है या फिर जो हमारी पहले से ही मौजूदा वितरण दक्षता है उसे और हम बेहतर कर सकते हैं, किस की चीज को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए?
0: नए जल स्रोत विकसित करने से पहले मौजूदा वितरण दक्षता सुधारना कहीं अधिक तर्कसंगत और लागत प्रभावी प्राथमिकता है। तर्क सीधा है, जब घर पहुंचने से पहले आधा पानी बर्बाद हो रहा हो तो नए स्रोत जोड़ना केवल उसी टपकते बर्तन में पानी भरने जैसा है। नवीनतम आंकड़े इस समस्या की गंभीर समस्या को स्पष्ट करते हैं कि भारत की शहरी जल आपूर्ति कंपनियां औसतन करीब 38% पेयजल को गैर राजस्व जल के रूप में गंवा देती हैं, जो वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य 15-20% से लगभग दुना है। नीति आयोग के अनुसार जो स्थिति चिंताजनक है, शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का लगभग 40-50% हिस्सा बर्बाद हो जाता है, जबकि सिंचाई क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता मात्र 30-38% के बीच में है। ये आंकड़ा दो बड़े निर्धारित रखता है। मतलब पहला तर्क है कि आप पानी यानी जिस पहले ऊर्जा और लागत को खो चुके होते हैं, जल का 40% अधिक रिसाव में नष्ट हो रहा हो, तो नए जलाशय नदी जोड़ो परियोजना में निवेश करने से पहले इस अदृश्य हानि को रोकना कहीं सस्ता पड़ता है। दूसरा, नए स्रोत विकसित करने का अर्थ है प्राय अधिक भूजल दोहन या नई नदी घाटी परियोजनाएं होता है, जो पहले से तनावग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्र पर अतिरिक्त बोझ डालती है। इसके बजाय जिला मीटर्ड क्षेत्रों के माध्यम से नॉन रेवेन्यू वाटर बजट का प्रतिकरण करके राज्य वित्त आयोग की नीतियों को सत्यापन आयोग जल हानि की कमी से जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि निवेश परिणाम आधारित हो।
1: अरविंद जी, अभी जो दिल्ली में सम्मेलन चल रहा है, इंटरनेशनल समिट ऑन स्मार्ट एंड सस्टेनेबल वाटर सिस्टम, तो इस सम्मेलन की विषय वस्तु रखी गई है तकनीकी और पहुंच के बीच से। तो हम स्मार्ट जल तकनीकों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन देश के जो छोटे शहर हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उन तक इन तकनीकों की कैसे पहुंच सुनिश्चित की जा सकती, ताकि जो भी हम योजनाएं बनाते हैं उनका लाभ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित ना रहे, उसका लाभ सभी तक पहुंचे।
0: जो टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं, एक्चुअली वो उन लोगों के लिए, हम दो तरह की योजना पर बात करें, टॉप डाउन और बॉटम अप। यानी कि किसी भी प्रबंधन का मेन तरीका है कि हम बायलॉज हैं और रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, उनका उपयोग किस तरह से जमीन स्तर पर पहुंच पाए। अब उस क्षेत्र तक किस तरह से पहुंच पाएगी, उसके लिए हमें पहले दो स्तर पर काम करना पड़ेगा। पहले हमें ऊपर स्तर पर योजनाएं इस तरह की बनानी पड़ेंगी कि ताकि हर चीज को हम कवर कर पाए। दूसरा, हमें इस तरह से करना पड़ेगा ताकि जो योजनाओं का लाभ है वो जिले स्तर से, गांव स्तर से पहुंच पाए, तक पहुंच पाए, और वो भी उसमें शामिल हो।
1: अरविंद जी, जैसे भी देश में मॉनसून का समय चल रहा है, लगातार बारिश की स्थिति हम देख रहे हैं, और ये भी सरकार की तरफ से कहा जाता है कि बारिश का जो जल है उसे संचित करना आवश्यक है, इसके लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए और तमाम इसके लिए प्रयास भी किए गए, अमृत सरोवर बनाए गए और भी सरकार की तरफ से प्रयास किए गए। ऐसे में जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जल तो काफी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन उसका वास्तविक रूप से हम ना तो उसे इकट्ठा कर पाते हैं, ना ही उसका ठीक से दोहन कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक आम नागरिक के तौर पर लोगों को किस तरह की चीजें करनी चाहिए, कैसे उनकी योजनाएं होनी चाहिए, किस तरह से वो काम करें कि जल की बर्बादी कम से कम हो।
0: अगर हम बात करें आज से 30-35 साल पहले, तो एक प्रति व्यक्ति जो जरूरत थी वो 150 लीटर के करीब होती थी। अब जल तो उतना ही रहा, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती रही और डिपेंडेंस बढ़ती रही, जिस तरह से आप जानते हैं कि हमारी टोटल जनसंख्या का जो है, अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए 16% है, केवल हमें 4% पानी मिलता है। ज्यादातर पानी, चूंकि इस पिछले 10-20 सालों में आपने देखा होगा कि शहरीकरण बहुत तेजी से हुआ है, लोग ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जल्दी विस्थापित होकर शहर की तरफ आए हैं, तो उनकी आवश्यकताएं जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले थे उनसे अलग तरह की हो गई हैं। तो अब गांव में भी जल की आवश्यकता है, तो किसी तरह से हमें कहीं ना कहीं हमारे जो स्रोत थे, यानी कि आपने सुना होगा कि हमारी अमृत सरोवर योजना बनी, तो उसका पर्पस ये था कि हर गांव में शहर में कई तरह के तालाब हों, ताकि वो आपकी रोज की जरूरतों को जो है, जो आपकी रोज की जरूरत है उनको पूरा करते रहे। अब रोज की जरूरत आपकी खाद्यान्न से रिलेटेड भी हो सकती है, उनकी फिशरीज है, जैसे पानी से पोर्टेबल नॉन पोर्टेबल भी है, तो वो भी पूरी होती रही, और इसके अलावा आप किसी तरह से अपनी जिंदगी को, मतलब आपका सबसे बड़ा गांव में रहने वाले को, जैसे पहले बताया था कि हम ज्यादा जरूरतें जो हमारी हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, यानी कि 40-80% पानी एग्रीकल्चर में चला जाता, तो किस तरह से हम कौन से पानी को कहां इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे लिए ज्यादा विषय का रहेगा।
1: अरविंद जी, शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन जैसी तकनीकें उद्योगों में पानी की खपत और अपशिष्ट जल बहाव को कम करने में मदद कर सकती हैं, लेकिन इन तकनीकों की लागत अधिक मानी जाती है, तो ऐसे में जो छोटे और मध्यम उद्यम है या एक बहुत ही छोटे स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है, वो किस तरह की गतिविधियों को अपनाए जिससे कि उसको वित्तीय लागत भी उस पर कम आए और जो अपशिष्ट जल निकलता है उसका अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा सके ताकि बर्बादी कम हो?
0: एक बेहद चिंता का विषय है, मतलब ये कि हम किस तरह से कर पाए। तो शून्य तरल अपशिष्ट उत्सर्जन के, क्योंकि जलजी जैसी तकनीकों की ऊंची पूंजीगत लागत छोटे मध्यम उद्योग एमएसएमई के लिए स्वाभाविक रूप से बड़ी बाधा है। बड़े कॉर्पोरेट इसे वाहन कर सकते हैं, पर एमएसएमई इसके लिए नीति का आकार बनाने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। तो हमें एक तो आम आदमी के लिए और हमारे उद्योग धंधे किस तरह हम कर पाएंगे, मेरी राय में तीन स्तर पर संजीवित होनी चाहिए। पहला, पूंजीगत सब्सिडी ब्याज सहायता, जैसे एमएसएमई मंत्रालय की मौजूदा ZLD इफेक्टिव जो योजना है वो हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम कहीं ना कहीं 30-40% सीधा अनुदान दे के इसको हम रियायती करके हम लोगों को उससे सीधा जोड़ सकते हैं।
1: अरविंद जी, आज के दौर की अगर हम बात करते तो हमने देखा कि हमारे पास जल की उपलब्धता तो आसानी से हो जाती है, शायद यही कारण है कि उसकी इम्पोर्टेंस को एक सामान्य व्यक्ति उतनी ज्यादा नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं गलतियां सभी से हो जाती है कि जल की बर्बादी बढ़ती जा रही है, इसे न्यूनतम करने के लिए हम किस तरह के उपाय कर सकते हैं?
0: पानी जो है वो पोर्टेबल, जिसे आप बोल रहे हो पोर्टेबल नीड के हिसाब से जो हमें करना है, तो हम अपने व्यक्तिगत जो हमारे यूज में पानी आता है उसको कम से कम हम उस पर लाएं चीजों पे, तो उससे हम बर्बादी बचा पाएंगे। और जैसे अभी सुना सिंगापुर में कई जगह पे रिसाइकल वाटर का यूज हो रहा है, अभी हमारे लिए वो चीजें उतनी उपयोगी नहीं बन पाई, लेकिन एक आम आदमी में केवल मतलब कुछ तकनीकी का सुधार करके हम या उनको समझा के किसी तरह से पानी के मामले में जागरूक बना सकते हैं।
1: अरविंद जी, कृषि का जो क्षेत्र है, भारत में पानी का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता क्षेत्र, मतलब सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे यहाँ पर जो शुद्ध जल है, पेयजल के रूप में भी हम पानी का काफी इस्तेमाल कृषि में करते हैं, और सिंचाई की दक्षता बढ़ाने के भी हमारे देश में काफी संभावनाएं हैं, तो क्या सूक्ष्म सिंचाई, स्मार्ट सिंचाई और मिट्टी की नमी की वास्तविक समय निगरानी जैसी जो तकनीकें हैं वे व्यापक स्तर पर अपनाई जा सकती हैं और कृषि क्षेत्र में पानी की खपत को कम कर सकती हैं?
0: हाँ, संभावना बहुत बड़ी है, पर व्यापक अपनाना अभी बाकी है। कृषि भारत में जल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, और जलवायु समिति के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई मतलब ड्रिप इरिगेशन से 40% तक जल बचत, 45% उत्पादन वृद्धि, 50% आय वृद्धि संभव है। वाल सिंचाई की तुलना में इससे औसतन 30-50% औसतन करीब करीब 32.3 जल की बचत होती है, साथ ही बिजली और उर्वरक की खपत भी घटती है। अब इसमें क्या चैलेंज है, क्षमता बनाम वास्तविकता। तो भारत का माइक्रो इरिगेशन कवरेज 70 एमएचए की संभावना के मुकाबले केवल 17 एमएचए है, यानी कि क्षमता का एक चौथाई है। कारण है ऊंची शुरुआती लागत, जागरूकता की कमी और मुफ्त सस्ती बिजली जो ड्रिप अपनाने का आर्थिक तर्क कमजोर करती है। नीतिगत सहारा है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उद्यम योजनाएं हैं, सोलर पंप है, प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना है, पर ड्रॉप पर क्रॉप के तहत उपकरणों पर 55% तक अनुदान और नाबार्ड का 5,000 करोड़ का सूक्ष्म सिंचाई कोष विस्तार में मदद कर रहे हैं। स्मार्ट एग्रिक सिंचाई, मृदा नमी सेंसर इसे अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। रियल टाइम डेटा से पानी सिर्फ जरूरत पर दिया जाता है, न कि निश्चित शेड्यूल पर, जिससे बचत संभावना

0: हेडक्वार्टर जिससे बोलते हैं कि समस्या का हल कर सकता है, क्योंकि यहाँ तकनीक और आवश्यकता के बीच तालमेल सबसे स्पष्ट है। इसका कारण यह है कि भारत में भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित पाइपलाइन मानचित्र यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन मीटर क्षेत्र की अनुपस्थिति सक्रिय जल प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण जल उपयोगिता संस्थाएं प्रायः रिसाव एवं पाइपलाइन विफलता के बाद भी प्रतिक्रिया देती है। ये एक ऐसी समस्या है जिसे AI आधारित प्रिडिक्टिव मॉडल द्वारा तुरंत हल कर सकते हैं। रिसाव होने के इंतजार के बजाय पैटर्न समझ के पहले से चेतावनी, व्यावहारिक उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु जल आपूर्ति जो मल निकासी बोर्ड ने पानी की चोरी, रिसाव, गैर राजस्व, वाटर कम करने के उद्देश्य से स्मार्ट टेरा एम सोलिनस जैसी स्टार्टअप के साथ AI व रोबोटिक तकनीक पर संयुक्त अध्ययन शुरू किया है। इसी तरह 2026 के राष्ट्रीय AI समिट ऑन वाटर में गैर राजस्व वाटर घटाने, डेटा संचालित नागरिक केंद्रित उपयोगिताओं के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। मांग पूर्ण मांग यानी कि कैसे पता लगा लें, भूजल प्रबंधन दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परंतु रिसाव नियंत्रण में AI का तुरंत प्रभाव, मापन योग और आर्थिक रूप से स्वतः वित्तीय पोषण तक यानी कि जानकारी देना, क्योंकि बचाया गया हर लीटर पानी सीधे राजस्व में बदलता है, इससे निवेश जल्दी वसूल हो जाता है। यही कारण है कि पहला सबसे व्यावहारिक मोर्चा बनानी चाहिए।
1: अरविंद जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत में जल सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पर्यावरणविद डॉक्टर अरविंद कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों को, जो कि प्रसारित किए जा रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:01 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए करते हैं गजलों के कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की ये पहली गजल फनकार छाया गांगुली के स्वर में।

फनकार स्वाति नाटेकर के स्वर में ये गजल आपने सुनी। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल, फनकार छाया गांगुली और उस्ताद मोइन खां के स्वर में।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चाईबासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं गजलों के कार्यक्रम महफिल का। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल फनकार सुखविंदर सिंह के स्वर में।

श्रोताओं, फनकार सुखविंदर सिंह के स्वर में गाई हुई इस गजल के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम महफिल अब यहीं समाप्त होता है। तो अब इस कार्यक्रम से हमें विदा दें। नमस्कार। आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिल। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है, FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारा आज का अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग।

कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले हमारे तमाम श्रोता दोस्तों का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है। श्रोताओं, आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम का ये पहला गीत, गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वरों में फिल्म धर्मा से। बोल लिखे हैं वर्मा मल्लिक ने और धुन है सोनिक ओम प्रकाश की।

0: मैं चंदन हूँ बहू हूँ।
1: फिल्म धर्मा के इस गीत के बाद श्रोताओं आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। गायक कलाकार भूपेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में फिल्म परिचय से। बोल लिखे हैं गुलजार ने और धुन है आरडी वर्मन की।

फिल्म परिचय के इस गीत के बाद श्रोताओं, आइए सुनते हैं गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी के स्वर में गाया हुआ ये गीत फिल्म संगम से। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और धुन है शंकर जयकिशन की।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: आकाशवाणी चायपासा से हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुरों के रंग का। आइए कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवाते हैं, जो कि लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और आवाज़ है गायक कलाकार किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

आंखें। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला नगमा इसी फिल्म से। आवाज का एक कलाकार लता मंगेशकर की है, बोल लिखे हैं शाहिर लुधियानवी ने और धुन है संगीतकार रवि की।

कार्यक्रम के आखिर में आइए अब हम आपको सुनवाते हैं गीतकार शैलेंद्र के लेखनी से निकला हुआ, शंकर जयकिशन की धुन से सजा हुआ ये गीत फिल्म दिल एक मंदिर से, आवाज गायक कलाकार लता मंगेशकर की।

फिल्म दिल एक मंदिर है के इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम सुरों के रंग अभी यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चायबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचारों का। तो आइए समाचारों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्यबागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने